सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के सावन माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन

0: और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एसआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन अलौकिक पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है। आज चारों तरफ गूंज रहा है बम बम भोले का जयकारा। प्रकृति का कण कण आज शिवमय हो गया है। शिव जो आदि हैं, शिव जो अनंत हैं, और शिव जो साक्षात वैराग्य और आनंद का रूप हैं।

आइए आज के इस विशेष सफर की शुरुआत सीधे कैलाश मानसरोवर की पावन वादियों से करते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को बयां करता साधना सरगम की मधुर आवाज से सजा यह खूबसूरत भजन। आइए मिलकर डूब जाते हैं शिव की भक्ति में।

राम के ईश्वर शिव हैं और शिव के ईश्वर राम। जीवन के हर मोड़ पर बस उस प्रभु का नाम लेते रहिए, सारे कष्ट मिट जाएंगे। मीना चटर्जी और दीप्ति पंडित की सुरीली आवाजों में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा राम भजन।

राम राम कहते रहो। श्रोताओं, जब मन में धीरज हो और जुबान पर मालिक का नाम, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डगमगा नहीं सकती। जब भी उस अकाल पुरख से कुछ मांगना हो तो सिर्फ उसकी भक्ति मांगिए। इसी सुंदर भाव को समेटे हुए गुरबाणी का ये पवित्र शब्द आइए सुनते हैं गजल सम्राट पंकज उदास की मखमली और रूहानी आवाज़ में।

मांगो राम ते एक दानी। पंकज उदास की आवाज़ वाकई रूह को तृप्त कर देती है। हमारी ये वंदना हर उस शक्ति को नमन करती है जो मानवता को जोड़ती है। आइए इसी रूहानी सफ़र में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत नात, सखावत हुसैन खान साहब की पुरसर आवाज़ में पेश है।

श्रोताओं, इस रूहानी सुकून के बाद आइए अब रुख करते हैं बाबा बजरंग बली के श्री चरणों की ओर, जो शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। आज शिवरात्रि के इस पावन मौके पर हनुमान जी की आराधना इस सुबह को और भी कल्याणकारी बना देगी। आइए आज के इस विशेष भक्ति संगीत के सिलसिले को विश्राम देते हैं और हरिओम शरण और नंदिनी शरण की दिव्य आवाजों में सुनते हैं ये पावन आरती।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर हैं श्रीकांत पारगांवकर के और संगीत सतीश भाटिया का है।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्रीराम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्रीराम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्रीराम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्रीराम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूं जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहां आया हूं। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना गया है। इसका मौलिक कारण मानवता है। मानवता से आशय मनुष्य के ऐसे गुणों से है जो मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। मसलन प्रेम, शांति, उदारता, सहिष्णुता, सत्यप्रियता, समरसता आदि। भारतीय चिंतन परंपरा में आदिकाल से मानवता की महिमा की गई है। ऋग्वेद को समूचे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद में सत्य बोलने, अहिंसा का पालन करने, सभी जीवों के साथ दया करने, उदारता का व्यवहार करने जैसे मूलभूत मानवता के सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की गई है। यद्यपि प्रत्येक धर्म के अनुसार आचरण करने का रंग ढंग अलग है, लेकिन उसका केंद्रीय सार मानवता ही है। आज समूचे विश्व में करीब 200 से भी अधिक देश हैं, लेकिन मानवता ही वह धागा है जो समूचे देशों को प्रेम, शांति और शील के सूत्र में बांधता है। वसुधैव कुटुंबकम मानवता का ही उद्घोष है जो समूचे विश्व को

0: एक ही परिवार माने जाने की वकालत करता आया है। मानवता सर्वोपरि धर्म है, परंतु मानवता पर समय समय पर संकट मंडराता रहा है। आतंकवाद, युद्ध, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, पर्यावरण संकट ऐसे मुद्दे हैं जो मानवता के समक्ष गंभीर संकट रहे हैं। आतंकवाद आज समूचे विश्व में मानवता के समक्ष पैदा हुआ बड़ा संकट है। विवेकशीलता और तर्कशीलता मानवता का सबसे बड़ा उपहार है, परंतु विचार विशेष के प्रति कट्टरता एक अत्यंत ही घातक प्रवृत्ति है। विचार के प्रति कट्टरता को प्रेरित और पोषित करता है। यह कट्टरता धर्म, राष्ट्र या किसी विचारधारा से संबंधित हो सकती है। आज समूचे विश्व में पनपता आतंकवाद एक ऐसी कट्टरता है जो हिंसा, भय और घृणा से समस्त विश्व को डस रही है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा जहर है। आतंकवाद के साथ युद्ध भी मनुष्य के इतिहास में मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित हुआ है। युद्ध की स्थिति अत्यंत भयावह होती है। यह समूचे विश्व को संकटग्रस्त कर देती है। इतिहास के झरोखों में विश्व युद्ध हो या राष्ट्रों के मध्य हुआ युद्ध, इसे मानवता की भावना को सदैव ही नुकसान पहुंचता है। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी भी मानवता का कलंक है। कोई भी मनुष्य हो, अगर उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी न हो तो वह मनुष्य की गरिमा और महिमा के अनुकूल जीवन यापन नहीं कर सकता। वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी विसंगति आर्थिक असमानता है। आंकड़ों के अनुसार समूचे विश्व के 1% लोगों का 80% संसाधनों पर नियंत्रण है, अर्थात करीब 80% लोग आज भी जीवन के बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं। यह मानवता का गंभीर रोग है। इसके परिणाम स्वरूप मानवता में एकता और समरसता का संगीत बाधित और प्रभावित होता है। वर्तमान समय में पर्यावरण संकट भी मानवता का नवीन संकट बन चुका है। समुद्र तल में बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित मौसम चक्र जैसे कारण मनुष्य के अस्तित्व का संकट बन चुके हैं, जो अंततः मानवता का ही संकट है। आश्चर्य का विषय यह है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश का क्यों न हो, वह मानवता के संकट को महसूस करता है। लेकिन विडंबना यह है कि मानवता के संकट को दूर करने में जो साझे प्रयास की जरूरत है, उसमें हम एकजुट नहीं हैं। मानवता के इन संकटों के साथ साथ इसका दूसरा पक्ष भी है जो अत्यंत उज्ज्वल है। विज्ञान में क्रांति, संचार माध्यमों का विकास और परिवहन संसाधनों की सुगमता ऐसे कारण हैं जो मानवता की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। विज्ञान मानवता की सेवा का सबसे बड़ा अवतार बनकर उभरा है। विज्ञान के विकास ने समूचे विश्व को जोड़ने का काम किया है। इन माध्यमों से मानवता की भावना प्रबल हुई है। विश्व के किसी भी भाग का संकट हो, संचार माध्यमों की बदौलत यह समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचता है। विज्ञान के माध्यम से जो परिवहन की सुविधाएं हुई हैं, उसके परिणाम स्वरूप मानवता मजबूत हुई है। मानवता की भावना को धर्म, साहित्य, कला, संगीत आदि ने भी प्रभावित किया है। ये मनुष्य को जोड़ने का महान कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य मानवता के लिए अपनी भूमिका को समझे। मानवता का आरंभ और अंत भी मनुष्य से ही होता है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। काव्यधारा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए नीमा शर्मा का ये काव्य पाठ।
2: तो मैं कुछ दोहे सुना रही हूँ। तुम ही

0: परिवार कि ना हो नफरत की दीवार, आओ बनाए ऐसा परिवार। ना हो नफरत की दीवार, आओ बनाए ऐसा परिवार। मिलजुल कर हम साथ रहें, ना हो आपस में तकरार। मिलजुल कर हम साथ रहें, ना हो आपस में तकरार, ना हो नफरत की दीवार। दादा दादी ताऊ ताई, दादा दादी ताऊ ताई, चाचा चाची सारे भाई। दादा दादी ताऊ ताई, चाचा चाची सारे भाई। आओ मिलकर एक साथ रहें, आओ मिलकर एक साथ रहें। सभी मिलकर करें विचार, सभी मिलकर करें विचार। ना हो नफरत की दीवार, आओ बनाएं ऐसा परिवार। कि दादी के हाथों का अचार, दादी के हाथों का अचार। दादा की बातों में विचार, दादा की बातों में विचार। कि बुआ की मीठी सी थपकी, कि बुआ की मीठी सी थपकी, कहाँ गया वो परिवार।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नीमा शर्मा का काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता हर्षोयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा कर विषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकं 20-26 इति पारितम्। राज्यसभया ह्यः चर्चानन्तरम् एतत् लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् विधेयकं पूर्वमेव पारितमासीत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण विधेयकं प्रस्तुतवती आसीत्। विधेयकेन धनप्रदान परिशोधन व्यवस्थाधिनियमः 27-2000 आयकराधिनियमः 20-25 तथा वित्ताधिनियमः 20-26 चेत्येषु संशोधनं प्रस्ताव्यते। अनेन अधिनियमेन आयकर संशोधन अध्यादेशः 20-26 इति प्रभावहीनः भविष्यति, यः अस्य वर्षस्य जून मासस्य 5 दिनाङ्के प्रख्यापितः आसीत्। चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददति केन्द्रीय वित्तमन्त्री अवदत् यत् विधेयकस्य उद्देश्यं भारतस्य विनिर्माण परितन्त्रस्य सुदृढीकरणम्, अतिरिक्त निवेशस्य आकर्षणम्, आजीविकायाः सृजनम् तथा विनिर्माण गतिविधीनां प्रोत्साहनं वर्तते। सा अवदत् यत् द्वितीयः प्रमुखः संशोधनः भारतस्य निर्दिष्टेभ्यः दत्तांशकेन्द्रेभ्यः दत्तांशसेवाः प्राप्नुवतीनां वैदेशिक संस्थानां करमुक्ति प्रदानेन अथ व्यवसाय संचालनस्य च सुगमतायाः वर्धनेन सम्बन्धितः अस्ति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विधेयकेन UPI इति प्रयोक्तृभ्यः कश्चन करः उत वा व्यवहारशुल्कं न आरोप्यते। संसदा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 अपि पारितम्। राज्यसभया तत् ह्यः अनुमोदितम् आसीत्, एवञ्च लोकसभया तत् पूर्वमेव पारितमासीत्। प्रशासनेन 11 नूतनानि अन्ताराष्ट्रिय पत्तनानि अधिसूचितानि, येन ई वीजा धारकानां वैदेशिक नागरिकाणां भारत प्रवेशः सुलभः भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु 9 भूपत्तनानि, 2 च विमानपत्तने सम्मिलिते स्तः। एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते। मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 2 सप्ततिहोरातः न्यूनसमये निस्तारयति। नूतन पत्तनानां समावेशेन ई वीजा धारकाणां वैदेशिक नागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रिय पत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता। एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदम् उच्चगुणवत्तायुक्तस्य उचितमूल्येन उचितसमये उचितोत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति। नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मन्त्री उक्तवान्। श्रीगोयलः स्मारितं यत् जैम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिक धनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जैम इत्यनेन पटलेन त्रिकोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके

0: आज पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। विषय है, बच्चों के लिए घातक हैं पेट के कीड़े।
3: आमाशय और अंतड़ियों में बहुत से विकार पाए जाते हैं, उनमें से कृमि रोग भी बच्चे को परेशान करता है। ये कृमि लगभग 20 प्रकार के होते हैं जो अंतड़ियों में घाव पैदा कर देते हैं और रोगी बेचैन हो जाता है। ये पेट में वायु को बढ़ा देते हैं जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कृमि रोग में रोगी को उबकाई आती रहती है, कई बार भोजन के प्रति अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और प्यास अधिक लगती है। ये रोग गंदगी के कारण होता है। मक्खियों द्वारा गंदा भोजन, जल, दूध आदि के सेवन से इसका प्रसार तेजी से होता है। रोगी की आंतों से कृमि के अंडे मल के साथ निकलकर बाहर आ जाते हैं और धरती पर फैल जाते हैं। फिर ये लार्वा रेंगते रेंगते बड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति सड़क, घास आदि पर चलता है तो ये उसके पैरों में चिपट जाते हैं और त्वचा भेद कर शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। बच्चों द्वारा मिट्टी खाने, दूषित भोजन

0: ग्रहण करने, गंदे कपड़े पहनने, शरीर की उचित सफाई न करने, मांस, मछली, गुड़, दही, सिरका आदि अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। बच्चों को बदहजमी, पेट में दर्द, बुखार आदि की शिकायत हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, दस्त लग जाते हैं और भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। इनसे बचने के लिए कुछ देसी नुस्खे इस प्रकार हैं। 1 चम्मच करेले का रस, 1 चम्मच नीम की पत्तियों का रस, 1 चम्मच पालक का रस और जरा सा सेंधा नमक, सबको मिलाकर 2 खुराक बनाएं। सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन करें। इन रसों से कीड़े मरकर मल के साथ बाहर निकल जाएंगे। छाछ में काला नमक और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। गर्म पानी में 1/2 चम्मच हल्दी डालकर 1 सप्ताह तक रोज इसका सेवन करने से भी आराम होता है। 1 चम्मच नीम की पत्तियों के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करने से भी आराम होता है। अनार के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी आराम होता है। ग्राम बाई बिड़ंग का चूर्ण और 8-10 पत्ते तुलसी दोनों की चटनी बनाकर सुबह शाम खाएं। नारंगी के छिलके 10 ग्राम, बाई बिड़ंग 10 ग्राम दोनों को पीसकर चूर्ण बना लें। 3-3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम खाकर ऊपर से गर्म पानी पी लें। थोड़े से अनार के छिलके सूखा पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से 3 ग्राम चूर्ण छाछ के साथ सेवन करें। 3 ग्राम अजवाइन, 3 ग्राम बाई बिड़ंग तथा 1 ग्राम कपूर, इन सबको पीसकर उसमें जरा सा गुड़ मिलाएं। 3 ग्राम दवा भोजन के बाद लें। करेले के रस में 1 चुटकी हींग डालकर पीने से पेट के कृमि मल के साथ निकल जाते हैं। आम की गुठली की पुतली या गिरी निकालकर चूर्ण बना लें। फिर 5 ग्राम चूर्ण में जरा सा नमक डालकर सेवन करें। कच्चे केले की सब्जी लगातार 4 दिनों तक खाने से कृमि मर जाते हैं। गाजर का रस रोज 1 कप की मात्रा में 1 सप्ताह तक रोज पीने से कृमि रोग नष्ट हो जाता है। प्याज के रस में जरा सा नमक मिलाएं और बच्चों को पीने के लिए दें तो इससे कीड़े बाहर निकल जाते हैं। शहतूत का शरबत पेट के कीड़े मारने के लिए बहुत उपयोगी पाया गया है। 5 ग्राम बथुए के बीज पीसकर शहद मिलाकर सेवन करने से भी आराम होता है और पपीते के बीजों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लें और 1 चुटकी चूर्ण दिन में 3 बार शहद के साथ लें। अजवाइन का चूर्ण 1 चुटकी की मात्रा में दिन में 2 बार गुड़ के साथ देने से भी आराम होता है। 1 चम्मच बथुए का रस सुबह बिना कुछ खिलाए पिला दें। केसर तथा कपूर दोनों 1-1 रत्ती की मात्रा में पीसकर दूध के साथ 4-5 दिन लेने से आराम होता है और कीड़े मल के साथ निकल जाते हैं। पत्थर धोड़ी का चूर्ण 2 रत्ती की मात्रा में शहद से चटाएं। 1/4 चम्मच बाई बिड़ंग का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से भी आराम होता है। 1 चम्मच तुलसी का रस गर्म करके बच्चे को पिलाएं। बच्चे को सुबह शाम 1-1 रत्ती की मात्रा में हींग भूनकर दे सकते हैं। शहद में 1/2 चम्मच पारिजात के पत्तों का रस मिलाकर पिलाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है सीताफल की खेती। किसान भाइयों, सीताफल जिसे कई क्षेत्रों में शरीफा भी कहा जाता है, भारत का एक अत्यंत लोकप्रिय एवं पौष्टिक फल है। यह फल अपने मीठे स्वाद, सुगंधित गूदे तथा उष्ण पोषण मूल्य के कारण देश भर में पसंद किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु में भी इसकी सफलतापूर्वक वैज्ञानिक खेती की जा सकती है। विशेष रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में यदि अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपलब्ध हो और वैज्ञानिक तकनीकों का पालन किया जाए तो किसान इससे अच्छा उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कम सिंचाई में सफल उत्पादन देने की क्षमता तथा बदलती जलवायु परिस्थितियों में इसकी अनुकूलता इसे किसानों के लिए एक लाभकारी फसल बनाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय है, जहां गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच

0: किसान भाइयों, सीताफल की खेती के लिए बलुई दोमट दोमट अथवा हल्की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच होना चाहिए। यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलाकर उसकी उर्वरता और संरचना में सुधार किया जा सकता है। किसान भाइयों, बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच कराकर उसमें उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जा सकता है और उत्पादन लागत भी कम होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ग्राफ्टेड पौधों की खेती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, पौध रोपण का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त तक का मानसून काल है। इस समय पर्याप्त नमी मिलने से पौधों की स्थापना अच्छी होती है। पौध रोपण से पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए तथा 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर खेत को भुरभुरा कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत को समतल करके 60x60x60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढों को कम से कम 20 से 30 दिन पहले खोदकर धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए ताकि हानिकारक कीट एवं रोगजनक नष्ट हो जाएं। बाद में प्रत्येक गड्ढे में 20 से 25 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 से 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और लगभग 500 ग्राम नीम खली तथा आवश्यकता अनुसार फास्फोरस युक्त उर्वरक मिलाकर भर देना चाहिए। किसान भाइयों, सीताफल के पौधों को रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। पहले वर्ष पौधों को नियमित नमी की आवश्यकता होती है। गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई पर्याप्त रहती है। वर्षा ऋतु में आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करें। किसान भाइयों, पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंधन अधिक उत्पादन प्राप्त करने का आधार है। पहले वर्ष प्रत्येक पौधे को लगभग 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस तथा 50 ग्राम पोटाश देना चाहिए। पौधे की आयु बढ़ने के साथ खाद एवं उर्वरकों की मात्रा भी बढ़ाई जाती है। यदि मिट्टी में जिंक, बोरॉन और आयरन की कमी हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए वर्ष में 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पौधों के चारों ओर सूखी घास, पुआल या पॉली मल्च बिछाने से खरपतवार कम उगते हैं तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब हमें कल तक के लिए अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संसद समीक्षा रात 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मुलाकात क्रम में रात 9:30 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री नेहा दक्ष से शोभित शर्मा की पूर्व प्रसारित बातचीत। शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजलें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:50 पर। कृषि जगत कार्यक्रम हमारे किसान भाई सुनेंगे शाम 6:05 पर और युववाणी कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 5:15 पर। मेरा सपना उन्नत भारत इस कार्यक्रम में शाम 5 बजे आपको जानकारी दी जाएगी उज्ज्वला योजना और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराह

1:45 पर सुनिएगा हरीश सिंह मेहरा के गाए कुमारनी लोकगीत। लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे सत्यवीरा हांडा के गाए शिवरात्रि विशेष शिव भजन। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगी कहानी पाठ, इसका शीर्षक होगा बलबीरी। कहानीकार होंगे डॉक्टर पारुल त्यागी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रातः 9:15 पर। और प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं प्रातः 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। प्रातः 10:00 फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। चित्रपट संगीत के अंतर्गत पूर्वाहन 11:00। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए के अंतर्गत मिड डे मेलोडी में। दिन में 12:30 पर। दिन में 2:30 पर एक ही कला कार्यक्रम में गीत संध्या कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 8:15 पर। और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: करने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया।
3: राज्यसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद कल लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने

0: स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: संसद ने कल ही बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। इस विधेयक को कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
3: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने कल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। विधेयक और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से रविवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में प्रदेश के खिलाड़ी गुलवीर सिंह और अस्मिता डे भी शामिल हैं। इस अवसर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
5: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
5: वाराणसी में खेल की तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
6: जी सर। बहुत
5: कैसा बना है स्टेडियम?
6: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
5: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
1: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें प्रदेश से जुड़ी अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत एवं कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कल गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है।
7: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांति

0: जानकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
1: मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
0: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में तिरंगा लहराया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
2: मुख्यमंत्री गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में एसटीपी के समीप स्थित मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए इन्फोटेनमेंट आधारित फिल्म संगीत का कार्य।

0: गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं भी अब इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज्यादा चेहरों पर लिखा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो साथी राजवीर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, ये पंक्तियां ये बयां कर रही हैं कि जिंदगी में ठोकरें लगना कितना जरूरी है। जब हम अपनी जिंदगी की डायरी खोलकर देखते हैं तो उसमें कुछ पन्ने ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें हम शायद फाड़ देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पन्ने हमारी गलतियों के होते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें फाड़ना नहीं है श्रोताओ। जानते हो क्यों? जरा सोचिए, अगर आपसे वो गलतियां ना हुई होती तो आज आप जितने समझदार हैं क्या होते? साथियों, थॉमस एडिसन ने भी बल्ब बनाने से पहले हजारों गलतियां की थी और बावजूद उसके भी एडिसन ने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो जनाब, गलती करना गुनाह नहीं है, बल्कि गलती से कुछ ना सीखना बहुत बड़ा नुकसान है। श्रोताओं, हम सब इंसान हैं और इंसानों का तो स्वभाव ही गलतियां करना है। वो बचपन याद है ना, जब हम चलना सीख रहे थे, 100 बार गिरे होंगे, घुटने भी छिले होंगे और खूब आंसू भी बहाए होंगे, पर क्या चलना छोड़ा? नहीं ना, क्योंकि हर गिरना हमें संतुलन बनाना सिखा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गलतियों से डरने क्यों लगते हैं। तमाम लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत फैसला ले लिया, कोई इंटरव्यू खराब कर लिया या किसी रिश्ते में कोई चूक कर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, सच तो यह है साथियों कि असफलता या फिर गलतियां सिर्फ एक फीडबैक है, फुल स्टॉप नहीं। ये जिंदगी का वो GPS है जो रीरूट करता है। जब आप रास्ता भटकते हैं तो GPS चिल्लाता नहीं है, वो बस एक नया रास्ता दिखा देता है। हमें भी बस खुद के साथ यही करना है। गलतियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाना है। अब सवाल आता है कि अपनी गलतियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। तो श्रोताओं, इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हमेशा याद रखिए। पहला तो ये कि स्वीकार करना सीखें। मुझसे गलती हुई है, इसे मानना सीखें। बहाना बनाना या फिर दूसरों पर दोष मढ़ना बंद करें। फिर आता है कि एनालाइज करें, यानी विश्लेषण करें। खुद से पूछें कि चूक कहाँ हुई है, क्या तैयारी कम थी या फिर फैसला जो है वो जल्दबाजी में लिया गया है। और फिर सुधार करें। अगली बार जब वैसी परिस्थिति आए तो अपनी पुरानी गलती से सीखते हुए उसमें सुधार करें। श्रोताओं, याद रखिए, एक ही गलती को बार बार दोहराना गलत होगा और हर बार एक नई गलती करना इस बात का सबूत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मुस्कुराइए, अपनी पुरानी गलतियों को गले लगाइए, उनसे कहिए थैंक यू मुझे बेहतर बनाने के लिए और आज के दिन की एक शानदार शुरुआत कीजिए। श्रोताओं, बातें भी बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424

0: जादू।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में, और मैं हूं आपका रेडियो साथी राजवीर। श्रोताओं, आज है 11 अगस्त और आज हम मना रहे हैं विश्व स्टील पैन दिवस। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये स्टील पैन है क्या, तो जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको सैर कराने वाले हैं कैरिबियन द्वीपों के उस म्यूजिकल सफर की जिसने कचरों के डिब्बे को दुनिया का सबसे सुरीला साज बना दिया। श्रोताओं, स्टील पैन कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। ये 20वीं सदी में ट्रिनिडाड और टोबैगो में इजाद किया गया इकलौता ऐसा एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे औद्योगिक कचरे जैसे कि तेल के ड्रमों और धातु के बर्तनों से बनाया गया था। 1930 के दशक में जब वहां के स्थानीय लोगों पर पारंपरिक ड्रम बजाने पर पाबंदी लगा दी, तो उन्होंने अपनी कला को दबने नहीं दिया। उन्होंने खाली पड़े स्टील के ड्रमों को ठोक पीट कर उन्हें एक बेहतरीन म्यूजिकल स्केल में बदल दिया। है ना कमाल की बात। जिसे दुनिया कबाड़ समझती थी, उससे कैरिबियन लोगों ने संगीत का एक नया समंदर पैदा कर दिया। और श्रोताओं, आज का ये वाद्य यंत्र सिर्फ ट्रिनिडाड या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को पहचानते हुए 11 अगस्त को आधिकारिक तौर पर विश्व स्टील पैन दिवस के रूप में घोषित किया है। ये साज हमें सिखाता है कि जब इंसान के पास कला और जज्बा दोनों हों, तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी सुरीली धुनें बिखेर सकता है। आज ये संगीत दुनिया भर में एकता, समावेश और रचनात्मकता का प्रतीक बन चुका है। तो साथियों, आज आप कोई कैरिबियन धुन जरूर सुने, और याद रखो कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, कला कहीं से भी जन्म ले सकती है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अमिताभ बच्चन का ये ऑल टाइम सुपरहिट गाना, जो सीधे तौर पर कैरिबियन के मशहूर संगीतकार सुंदर पोपो के चटनी म्यूजिक स्टाइल से प्रभावित है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज तारीख है 11 अगस्त और कैलेंडर का ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत कहानियों का गवाह है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को बदला है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या क्या खास हुआ था। पुर्तगाली गुलामी से आज़ाद होने के बाद आज की तारीख को 1959 में दादर और नगर हवेली का आधिकारिक तौर पर भारत में विलय हुआ था और इसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। 11 अगस्त सन 1919 को जर्मनी में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। वैश्विक मंच पर इसी दिन जर्मनी में वीमर संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने वहां पहले संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के बाद आज ही के दिन यानी 11 अगस्त सन 1948 को लंदन में ओलंपिक खेलों की भव्य शुरुआत हुई थी। संगीत प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में डीजे कूल हर्क ने एक पार्टी में पहली बार रैपिंग और हिप हॉप शैली की शुरुआत की थी सन 1973 में। 20वीं सदी का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में आज की तिथि को 1999 में देखा गया था। आज की तिथि को सन 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी सहित 8 मुद्दों पर इस्लामाबाद में वार्ता संपन्न हुई थी। 11 अगस्त 2004 को ही संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को पाकिस्तान द्वारा परमाणु मदद दिए जाने की पुष्टि की थी। और आज के दिन यानी 11 अगस्त 2007 को मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। और अब बात करते हैं आज की तिथि को जन्मे कुछ प्रसिद्ध भारतीयों के बारे में। तो श्रोताओं, लालमणि मिश्र भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। उनका जन्म 11 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। संगीत की हर विधा में पारंगत लालमणि मिश्र ने अपनी साधना और शोध के बल पर एक अलग शैली विकसित की जिसे मिश्र वाणी के नाम से स्वीकार किया गया। और आज जन्मदिन है भारतीय महिला क्रिकेटर अंजू जैन का। आपका जन्म 11 अगस्त सन 1974 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर एम वी नरसिम्हा राव का भी आज जन्मदिन है। सन 1954 में आपका जन्म हुआ था। आज जन्मदिन है प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का, भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर रहे डी सुब्बा राव का, और आपका जन्म हुआ था सन 1949 में। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी की। राहत इंदौरी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक

अध्यापक भी रहे, वे उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और चित्रकार भी रहे। चलिए यहां पर आपको सुनाते हैं उनका बेहद लोकप्रिय एक शेर। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकाद में रहे। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार वीएस नायपॉल का निधन भी आज की तिथि को सन 2018 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक और संपादक नंद दुलारे वाजपेयी का निधन भी 11 अगस्त को ही सन 1967 में हुआ था। श्रोताओं, पी जयराज हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मूक फिल्मों के दौर से लेकर वर्तमान दौर तक की तमाम फिल्मों में काम किया। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और श्रोताओं, कैलेंडर के पन्ने में आज की तारीख आते ही हर सच्चे भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है, लेकिन साथ ही दुख से आंखें भी नम हो जाती हैं। आज भारत माँ के उस सबसे लाडले और सबसे युवा क्रांतिकारी का शहादत दिवस है जिसने उम्र के उस पड़ाव पर फांसी के फंदे को चूम लिया था जिस उम्र में बच्चे जिंदगी के सपने देखना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमर शहीद खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस की वीरता को नमन करते हुए किसी कवि ने क्या खूब कहा है, लटका था जो हंसकर फांसी पर, वो कोई बूढ़ा ना था, थी उम्र महज 18 उसकी, पर जज्बा कोई छोटा ना था। लिख दी जिसने अपनी कीर्ति मां के चरणों में लहू बहाकर, उस खुदीराम के जैसा दूजा भारत में कोई जन्मा ना था। श्रोताओं, 3 दिसंबर 1889 को जन्मा यह बालक जब महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन का हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा सुना दी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका अपराध क्या था। तो उसका अपराध यह था कि वो भारत माँ की आजादी के लिए लड़ रहा था। उसने अत्याचारी अंग्रेज जज किंग्स फोर्ड को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। बात 30 अप्रैल 1908 की है। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। निशाना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड की जगह दो यूरोपियन महिलाएं बैठी थी जिनकी मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और मातृभूमि पर खुद को न्यौछावर कर दिया था और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अदालत में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई तो जानते हो क्या हुआ? जज हैरान रह गया क्योंकि उस 18 साल के लड़के के चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी, बल्कि एक जादुई मुस्कान थी। जज ने पूछा, क्या तुम जानते हो इस सजा का मतलब क्या है? तो तब खुदीराम ने मुस्कुराकर कहा था, हाँ मैं जानता हूं, अगर मुझे थोड़ा समय और मिले तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। श्रोताओं, 11 अगस्त 1908 की वो सुबह, मुजफ्फरपुर जेल का वो फांसी का फंदा। इतिहास गवाह है कि जब खुदीराम बोस को फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था तब उनके हाथ में पवित्र भगवत गीता थी। उन्होंने बड़े ही लाड़ से फांसी के फंदे को चूमा और हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। उनकी शहादत पर पूरा देश रो पड़ा था। और तब बंगाल के जुलाहों ने एक खास धोती बुनना शुरू किया था जिसके किनारों पर लिखा होता था खुदीराम। उनकी इसी विदाई के दर्द को बयां करती ये चंद लाइनें। हाथों में गीता लेकर वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया, देकर अपनी जान वतन को खुद का जीवन भूल गया। कांप उठी थी गोरी सत्ता उसकी एक हुंकार से, वो वीर सिपाही आजादी का सो गया वतन के प्यार में, सो गया वतन के प्यार में। श्रोताओं, आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो खुदीराम बोस जैसे हजारों परवानों के लहू की कीमत पर हमें मिली है। आज 11 अगस्त को हम आकाशवाणी परिवार की ओर से इस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं। इस क्रम में इतना ही कहेंगे कि अपनी आजादी की कदर

कीजिए, इस देश को मजबूत बनाइए, यही उन अमर शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमन है उस वीर को जिसने वतन पे जान गंवाई है, नमन है उस वीर को जिसने वतन पे जान गंवाई है, खुदी राम की शहादत ने सोई कौम जगाई है। जब जब गूंजेगा इंकलाब तेरा नाम अमर कहलाएगा, हर सच्चा हिंदुस्तानी तेरे आगे शीश झुकाएगा, तेरे आगे शीश झुकाएगा।

मेरा रंग दे बसंती चोला, श्रोताओं क्या जज्बा था उन मतवालों में। अभी आप सुन रहे थे देश के उन नौजवानों की आवाज जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के

0: लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। और अब कार्यक्रम में हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर और कार्यक्रम के अंत में आइए देखते हैं कि आज के अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। तो श्रोताओं, झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन और उन पर लाठीचार्ज की खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। अमर उजाला ने लिखा है, युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च, आंदोलनकारी छात्रों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले झेले और घेर ली विधानसभा। तो वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची में लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले की बौछार, छात्रों ने घेरी विधानसभा। और हिंदुस्तान में छपा है, रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज, परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र। यह अगली खबर है हिंदुस्तान के हवाले से, जो लिखता है कि बिजली पानी गैस के लिए 1601 नंबर से फोन आएगा, लोगों को ठगी से बचाने के लिए पहल ये की गई है। वहीं अगली खबर भी हिंदुस्तान के हवाले से है, राम मंदिर के सीईओ के लिए आज साक्षात्कार लिए जाएंगे, चढ़ावा मामले की सुनवाई 17 तक टली, और छात्रों के आंदोलन पर गृहमंत्री देंगे आज जवाब। हिंदुस्तान से ही ये अगली खबर है जिसमें लिखा है, 6 जिलों में अग्निवीरों की भर्ती 17 से शुरू होगी और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर होगी भर्ती। दैनिक जागरण ने लिखा है, पुलिस ज्यादती पर बोलने को शाह तैयार, चढ़ावा चोरी पर बयान को अड़ी कांग्रेस। तो वहीं दैनिक जागरण के हवाले से अगली खबर है, 7 साल के उच्चतम स्तर पर चीनी के दाम, निर्यात पर रोक के बावजूद गन्ने का रकबा घटने और एथेनॉल नीति से कम उत्पादन ने बदला बाजार। अमर उजाला से अगली खबर है, दिव्या ने कैनोइंग में जीता स्वर्ण और रजत, भोपाल साई में रहकर ही प्रशिक्षण ले रही हैं बिजनौर की दिव्या। मंजू जौहरी को साहित्य रत्न सम्मान, नजीबाबाद की साहित्यकार डॉक्टर मंजू जौहरी मधुर को जयपुर में चित्रांश काव्य सभा ने उत्कृष्ट लेखन के लिए मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सम्मान प्रदान किया है। और चमोली में बैली ब्रिज बहा, बीआरओ कर्मी लापता, मध्य प्रदेश में 9 की मौत, बारिश का कहर, उत्तराखंड राजस्थान और हिमाचल में जनजीवन प्रभावित। यह खबर है अमर उजाला के हवाले से। और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति।
1: सूरज के साथ साथ
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8 बज रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23

0: तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया

0: में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
3: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है।

0: प्रिय संपत्ति है, उसे गवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट नोटिफाइज 11 मोर इंटरनेशनल पोर्ट्स enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand bans today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in Western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payment

0: the national flag and deliver his customary address to the nation. Use power to drive I-Day celebrations, says Economic Times. Yuva Shakti, or youth power, will be a key theme at the upcoming Independence Day celebration. Several young achievers, innovators, 19 Olympiad medalists and startup pros have been invited as special guests. Government ready for Ella's debate over protest? Shah to reply, says Rijiju, informs the Asian Age. Monsoon surplus in city, entire August rain in 10 days, the Times of India. The Delhi monsoon rainfall has turned surplus, recording 25% excess rainfall from June 1st to August 10th. The Indian Express informs physicist Deepak Dhar wins 2026 Dirac medal. The theoretical physicist from Uttar Pradesh has been named the co-recipient of Dirac medal, one of the highest honours in the field. Asiatic land population rises from 523 in 2015 to 891 in 2025, noted Bhupendra Yadav in a social media post, reports The Statesman. India's success in conserving Asiatic land is a proud testament to the country's commitment to wildlife and biodiversity. And finally, as AI grips world, thrill of collecting vintage iconic computers growing, writes the Times of India. The paper adds the enthusiasm for the history of computers and all the stuff around it is growing. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सारिफीन के लिए डिजिटल अदायगी का निजाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैनुल अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है, जिससे ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनाकिदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने बिल पर बहस के बाद इसे लोकसभा को वापस भेज दिया था। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूर कर लिया था, जिसके बाद इसे बहस के लिए राज्यसभा भेजा गया था। चूंकि ये एक मालियाती बिल है, इसलिए राज्यसभा इसकी दफात में सिर्फ सिफारिशात कर सकती है और उसे लोकसभा को वापस भेज सकती है। लोकसभा इन सिफारिशात को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वाजे किया कि इस कानून के जरिए यूपीआई पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा है और डिजिटल अदायगी का निजाम सारिफीन के लिए बदस्तूर मुफ्त रहेगा। वजीर खजाना ने बताया कि यूपीआई से मुतालिक तरमीम सिर्फ एक कानूनी इल्तिजाम फराहम करती है और इसके जरिए खुद सारिफीन पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज आयद नहीं किया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि हुकूमत का छोटे ताजरों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस

0: करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि छोटे ताजिर यूपीआई की जामे और सभी की शमूलियत वाली तरक्की में मरकजी हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत देने की खातिर मजीद 11 बैनुल अक्वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है। इन नए मकामात में 9 जमीनी बंदरगाहें और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस इजाफे के साथ ई वीजा रखने वाले अफराद के दाखिले की सहूलत फराहम करने वाली बैनुल अक्वामी बंदरगाहों की मजमू तादाद 88 हो गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजारत दाखिला ने कहा कि नए नोटिफाई किए गए मकामात में भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और 9 जमीनी पोर्ट अगरतला, अटारी, दारंगा, गेड़े, गोजा डांगा, हरिदासपुर, जयगांव, दाऊकी और मोरे शामिल हैं। वजारत ने कहा कि इस इकदाम से बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों में ई वीजा की सहूलत की मकबूलियत और इसकी इफादियत में मजीद इजाफा होगा। तकरीबन 95% ई वीजा दरखास्तों पर 72 घंटे से भी कम वक्त में कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। 2014 में 43 मुल्कों के शहरियों के लिए शुरू की गई ई वीजा सहूलत को अब 172 मुल्कों के शहरियों तक तौसी दे दी गई है। फिलहाल ये सहूलत 17 जहरी जुमरों के तहत दस्तियाब है, जिनमें सियाहती, कारोबारी, तिब्बी, तलबा, ट्रांजिट, क्रूज और कोह पैमाई के वीजे शामिल हैं। वजारत ने बताया कि भारत अब तकरीबन 78% वीजे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करता है। नई दिल्ली से ईशान यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 और कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जिसका मकसद कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन एक्ट 1962 में मजीद तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में आज ट्रिब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। कानून और इंसाफ के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, तकर्रुरी और सर्विस की मुद्दत के साथ साथ ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में कारकर्दगी, आज़ादी, शफाफियत और यकसानियत को बेहतर बनाना है। इस कानून में कौमी ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की तजवीज भी दी गई है। झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। बीजेपी ने कल असेंबली घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहने वाले असेंबली घेराव के दौरान मुजाहिरीन असेंबली के गेट नंबर 1 के करीब पहुंच गए। इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तलबा के एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, असेंबली एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रांची के सदर अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों के जानिब से इनकी सेहत की देखभाल की जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी ने एहतजाज करने वाले तलबा पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है और इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों की सीबीआई जांच के अपने मुतालबे को दोहराया है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंतरी ने लोगों से अपील की है कि वो आज का बंद पुरअमन तरीके से करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अमन और आमान में खलल डालने या तशद्दुद को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने रांची के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं और मुआशरे के तमाम तबकात से अमन बरकरार रखने और पुलिस और जिले इंतजामिया के साथ तआवुन करने की अपील की है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोलंबिया के मगरबी खित्ते में कल 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद की मौत हो गई, जबकि 570 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जलजले का मरकज चोको खित्ते में सैन जोस डेल पाल्मर के करीब वाक़ था, जो राजधानी बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़ है। इस जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। कोलंबिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने जलजले के बाद बहाली की कार्रवाइयों के लिए माली मदद की फराहमी में तेजी लाने की खातिर इमरजेंसी का ऐलान किया है।

0: है कि मुल्क भर में 30-20 से ज्यादा म्यूनसिपलिटियां जलजले से मुतासिर हुई हैं। पेरेरा, केबदो, काली और मनीजालेज शहरों को जलजले से नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया के पड़ोसी ममालिक इक्वेडोर और पनामा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, अगरचे वहां किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के दूर दराज इलाकों में शदीद बारिश होगी। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वसी महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते के दूर दराज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के 9 जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई मकामात पर तोदे गिरने से तकरीबन 106 सड़कें बंद हैं, जबकि 66 ट्रांसफार्मर्स और 19 पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। शिमला के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटे के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 दीगर जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भी शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर मोहतात रहें और नदियों, नालों और लैंडस्लाइड के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक प्रोग्राम रियासत के तमाम मदरसों में जोश खरोश के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अक़लियती बहदूद के वजीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और नौजवानों को इस मुहिम में शिरकत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदरसों में कौमी परचम फहराने, कौमी तराना गाने, हुबुल वतनी और अजीम मुजाहिदीन आजादी के तावुन से जुड़ी बेदारी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाए। कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा की कयादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत है और लोगों से अपने घरों में फक्र के साथ कौमी परचम लहराने की गुजारिश की। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद आज कांवड़ यात्रा के इख्तिताम पर भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ मेले के 12 दिन कल 63,60,000 अकीदतमंद हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हुए। हरिद्वार में डाक कांवड़ की बड़ी तादाद मौजूद है। इस यात्रा को महफूज तर बनाने की खातिर स्नान के बड़े घाटों, कांवड़ यात्रा के रास्तों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सेहत और सफाई सुथराई के इंतजाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्तलिफ मकामात पर कांवड़ियों की आमदोरफ्त के रास्तों में तब्दीली की गई है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना होने वाले अकीदतमंद आज अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ शिव मंदिरों में भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। इस तरह इस साल कांवड़ यात्रा इख्तिताम को पहुंच रही है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नाइजीरिया के लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने अपनी मुहिम का जबरदस्त तरीके से आगाज करते हुए 4 सोने के तमगों समेत 17 तमगे हासिल किए। तलवारबाजी की इस चैंपियनशिप का आगाज इतवार को हुआ था, जिसमें भारत ने 4 सोने के, 4 चांदी के और 9 कांसे के तमगे जीते। खवातीन के जुमरे में जॉयस अशिष्टा ने फॉइल में सोने का, जबकि कनक लक्ष्मी ने चांदी का तमगा हासिल किया। प्राची ने AP में सोने का, जबकि निवेदिया नायर और अनुप्रिया ने कांसे के तमगे जीते। सेबर जुमरे में जेफलिन ने सोने का, आकारी ने चांदी का और श्रेया गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया। मुल्क आज इनकलाबी मुजाहिद आजादी खुदीराम बोस के 119वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। वो बंगाल के उन भारतीय इनकलाबियों में पहले फर्द थे जिन्हें 1908 में आज ही के दिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से फांसी दी

सत्यम शिवम सुंदरम, ये नाम है उस फिल्म का जिसका टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साजन की आवाज़ों में। नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत के लिए धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब चल रहा है सावन का महीना। श्रोताओं, जब सावन की पहली फुहार पड़ती है ना तो दिल झूम उठता है, मोर नाचने लगते हैं और हवाएं मानो कानों में आकर गुनगुनाने लगती हैं। और सावन की इसी मस्ती को साल 1967 में फिल्म मिलन के जरिए बड़े पर्दे पर उतारा गया था। और इस गाने की सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? इसमें शहर के बाबू अपनी गांव की गोरी को गाना गाना सिखा रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल

कि संगीत में सजे इस गाने को जब मुकेश जी और लता मंगेशकर ने अपनी जादुई आवाज़ों से सजाया तो ये गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। आनंद बख्शी साहब के लिखे बोल इतने सरल और मिट्टी की महक से जुड़े हैं कि इसे सुनते ही पैरों में थिरकन होने लगती है। चलिए सुनिए फिल्म मिलन का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

फिल्म मिलन में अभी आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब अगले गीत से पहले ये संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं लीजिए आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा और रंक का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का लाजवाब संगीत और आनंद बख्शी साहब के लिखे वो सदाबहार बोल जो सीधे मिट्टी की खुशबू से जुड़े हैं। इस गाने में सावन की जो रंगीनियत है ना, वो सुनते ही बनती है। और जब इस गीत को सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ों से सजाया तो मानो सचमुच चारों तरफ बसंती रंग ही बिखर गया।

0: चंदन का एहसास।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, सावन का ये खूबसूरत महीना सिर्फ बारिश की बूंदों और रिमझिम फुहारों का ही नहीं होता है, बल्कि ये गवाह है हमारी संस्कृति के उस सबसे अनमोल और सबसे पवित्र रिश्ते का, जो रेशम के कुछ कच्चे धागों से बंधकर भी दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन की पूर्णिमा को आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन की, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गोल्डन हिट्स। तो श्रोताओं, साल 1982 में एक फिल्म आई थी परख, जिसका संगीत और गीत खुद महान संगीतकार रविंद्र जैन साहब ने तैयार किया था। इस फिल्म में एक ऐसा गीत था जो जब भी बजता है तो हर भाई की कलाई और हर बहन की आंखें मानो खुशी से भर जाती हैं। तो चलिए, आपको सुनवा रहे हैं वही गीत हेमलता की आवाज़ में।

क्या बात है, राखी के धागों ने जो रिश्तों की मिठास घोली उसने तो वाकई दिल को छू लिया है। लेकिन श्रोताओं, सावन का ये पवित्र महीना जहाँ एक तरफ शिव की भक्ति और रक्षाबंधन के प्यार से जुड़ा है, वहीं इसी सावन की बयार में हमारे देश की आज़ादी का जश्न भी सांस लेता है। जब बात देश की मिट्टी की हो, देशभक्ति के जज्बे की हो, तो रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ने लगता है। चलिए, अब आपको हम सुनवा रहे हैं साल 1981 में आई फिल्म क्रांति का ये गीत, जिसे संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। संतोष आनंद साहब के लिखे ये अंगारे जैसे बोल हैं, जो आज भी अगर सुन लें तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गाने में सावन की घटाओं को देश की आज़ादी के संकल्प से जोड़ा गया है। तो लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म क्रांति का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 9:15 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में श्रावण मास के अवसर पर गंगा घाट और परियर घाट से पवित्र गंगा जल भरकर सिद्धनाथ बाबा मंदिर, लोधेश्वर धाम और जलेश्वर नाथ मंदिर के लिए हजारों शिव भक्त पैदल व डाक कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया है। एएसपी अखिलेश सिंह के अनुसार जिले में लगे 248 सरकारी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय हैं। इनके अलावा यात्रा मार्ग पर लगे करीब 6000 निजी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि भीड़, यातायात और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ गोताखोर की भी तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी बिजली के पोल और तारों की जांच संबंधित विभागों से कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके अलावा कांवड़ियों के विश्राम स्थलों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह द्वारा घाटों व प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग और साफ सफाई की लगातार जांच की जा रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के साथ नरोरा और हरिद्वार बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जिले में गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया है, जिससे जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस दौरान अपर जिला अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने गंगा घाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जल स्तर बढ़ने से गोताखोर, तेजीपुरवा, करबला और हुसैन नगर जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुँच गया है। कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, तहसील प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए 5 नावें तैनात की है।

0: इसके अलावा गोताखोर बलासाला और पंचायत घर को अस्थायी बाढ़ राहत शिविर के रूप में सक्रिय किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत महावृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांस गंगा सिटी में पौधारोपण किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारी से जुड़ा जन आंदोलन बताया। अपर्णा यादव ने कहा,
1: पहले भी लगाते थे पर माँ के साथ जब जुड़ जाता है तो वो बहुत स्पेशल हो जाता है। उसका संरक्षण करना ये हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया है कि वो पेड़ लगाएं और इस धरती को हरा भरा बनाए।
0: जनपद में इस अभियान के तहत लगभग 57 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित उन्नाव और प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। जिले के निराला प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद के शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड वितरण कर बधाई दी। जहां जनपद में कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 20,265 लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 लाख निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपहार दिया है जिसे शिक्षक और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि आज योग्यता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, इसी के कारण देश प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
3: किसानों की मेहनत और बदलती कृषि सोच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, प्राकृतिक खेती और किसानों को बाजार से जोड़ने की प्रशासन की पहल, बागपत ब्लूम को बड़ा सम्मान मिला है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 3rd नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड 2026 में डीएम अस्मिता लाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल सस्टेनेबल इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। समिट की थीम कृषि समृद्धि 2047 रही। डीएम की ओर बागपत ब्लूम टीम, किसान प्रतिनिधियों और जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। बागपत ब्लूम के तहत किसानों को सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित न रखकर उपज की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। चिया बीज, अलसी, मोरिंगा पाउडर, सरसों का तेल, ऑर्गेनिक शहद, गुड़, खांडसारी, देसी घी और सिरका समेत कई स्थानीय उत्पाद एकीकृत ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से जिले के 13 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जुड़े हैं। प्रशासन का उद्देश्य फील्ड टू मार्केट मॉडल के जरिए किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना है। राष्ट्रीय सम्मान को बागपत के किसानों के नवाचार और कृषि क्षेत्र में बदलती तस्वीर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं की बेहतर निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बागपत, पिलाना और बड़ौत विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों को कार्डियोटोकोग्राफी यानी CTG मशीन उपलब्ध कराई गई है। यह अत्याधुनिक मशीन गर्भस्थ शिशुओं की हृदय गति यानी फीटल हार्ट रेट की नियमित और सटीक निगरानी करती है। इसके साथ ही मशीन गर्भाशय में होने वाले संकुचन की भी जाँच करती है। इससे गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति पर नजर रखने और किसी भी संभावित जोखिम या जटिलता का समय रहते पता लगाने में चिकित्सकों की मदद करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार CTG मशीन विशेष रूप से प्रसव पूर्व उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी में उपयोगी साबित होगी। जांच के आधार पर चिकित्सक समय पर आवश्यक चिकित्सीय निर्णय ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिला को बेहतर उपचार कराया जा सकेगा। CMO तीरथ लाल का कहना है कि इस सुविधा से गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही मात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। बागपत परिवहन विभाग ने जुलाई महीने में राजस्व वसूली के साथ सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। विभाग ने जुलाई में शासन द्वारा निर्धारित 8 करोड़ 50 लाख रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 8 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व जुटाकर लक्ष्य को पार कर लिया। पिछले वर्ष की तुलना में भी यह राजस्व में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई तक पिछले वर्ष राजस्व वृद्धि 16,64,000 रुपए थी, जो इस वर्ष बढ़कर 25,27,000 रुपए तक पहुंच गई। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने शक्ति बढ़ाई है। 1 अप्रैल

0: से अब तक यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों, बिना परमिट संचालन, बिना वैध दस्तावेज वाहन चलाने, ओवर स्पीड, बिना लाइसेंस ड्राइविंग और हेलमेट व सीट बेल्ट के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ARTO विपिन कुमार के नेतृत्व में विभाग वाहन जाँच कर एवं परमिट सत्यापन और फिटनेस निरीक्षण के साथ डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत कर रहा है। विकास भवन सभागार में डेयरी विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के तहत ई लॉटरी से चयनित 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा गोसंवर्धन योजना के लाभार्थियों को अनुदान के चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में पशुपालकों को डेयरी और पशुपालन से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर DM अस्मित लाल ने कहा कि डेयरी व्यवसाय किसानों और पशुपालकों की बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है। CDO अनिल कुमार सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मेरठ मंडल कार्यालय से वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक अर्चना सिंह ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव के जीरो वेस्ट महोत्सव को लेकर सूचना विभाग का सोशल मीडिया चैलेंज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक व्यक्तिगत डिजिटल पोस्टर तैयार किए जा चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, DP व स्टेटस के जरिए लोग भक्ति भी, प्रकृति भी और आस्था भी, जिम्मेदारी भी का संदेश दे रहे हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी उन्नाव और बागपत जिलों की खबरें।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए सत्यवीरा हांडा के गाए शिवरात्रि पर विशेष शिव भजन।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यवीरा हांडा के गाए शिव गीत। हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं अखिलेश कुमार, ढोलक पर हैं रामकेश और बैंजो पर संगत कर रहे हैं परवेज। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यवीरा हांडा के गाए शिवरात्रि पर विशेष शिव गीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं अखिलेश कुमार, ढोलक पर रामकेश और बैंजो पर परवेज़।

इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे सत्यवीरा हांडा के गाए शिवरात्रि पर विशेष गीत। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अखिलेश कुमार, ढोलक पर रामकेश और बैंजो पर परवेज। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं लीजिए, प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। नमस्कार सभी श्रोताओं को, स्वागत है आप सभी का गीत तुम्हारे के आज के संक में। तो हमारे जो भी साथी, जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो हमारे जो भी साथी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, अपनी फरमाइश का गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। सबसे ऊपर आप अपना एड्रेस, नाम, पता और फिर अपने गीत की फरमाइश लिख करके भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9457078288। तो अभी जो ख़त हमारे पास हैं वो ख़त हम पढ़ लेते हैं। और ये पहला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म लॉकेट से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत है, गौहर कानपुरी का लिखा हुआ और संगीत है बप्पी लहरी का। और इस गीत को सुनना चाहा है दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। शेरी वडनेर अकोला से फरमाइश की है बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर ने। ये पत्र हमारे पास आया है मेन रोड तेलहारा से। फरमाइश कर रहे हैं प्रकाश पोहरकर, पोहरकार नर्मदा, पोहरकार सुनील, पोहरकार साहिल, पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश की है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ ने। ये पत्र हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से फरमाइश की है दुर्गा राम साहू ने। ये फरमाइश है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, नांदेड़ महाराष्ट्र से।

इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। गोला बाजार बक्सर से फरमाइश कर रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ये पत्र है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ो, मोहम्मद शादाब खत्री का। ये फरमाइश हमारे पास आई है ज़िला झारखंड बड़ा बोम्बो सुपाई साइस गांव से। फरमाइश कर रहे हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले और नवदीप येले। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लॉकेट का ये गीत।

0: रात्रि भैया शिव जी का है दिन।
1: वाह वाह वाह।
0: अरे मृदंग बोले, हाँ मृदंग बोले दंग दंग और तबला, और तबला तक धिन धिन धिन,
1: हाँ तक धिन धिन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म लॉकेट में। गौहर कानपुरी का लिखा एक गीत था और संगीत बप्पी लहरी का। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब स्टूडियोज में मेरे साथ आ गए हैं मनोज वर्मा जी। तो मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज में।
1: और राजवीर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि इतने खूबसूरत तारुफ के लिए कि भाई आ गए। थोड़ा सा देर हुई और कभी कभी हो जाती है,
0: हो जाता है देर। जी हाँ, बिल्कुल।
1: तो कांवड़ियों का इस टाइम में आज व्रत वगैरह सब
0: जी आज
1: काफी हो रहे हैं और ये जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो श्रावण में आती है।
0: जी हाँ, शिवरात्रि का पावन पर्व है। बाहर सड़कों पर भोलों की बहुत लंबी लाइन लगी।

0: हुई है, चारों ओर बम बम भोले के जयकारों से जो है वातावरण गुंजायमान है। और इस बीच आप आए, बहुत धन्यवाद। और अगला गीत हम कौन सा सुनवाने वाले हैं मनोज जी अपने श्रोताओं को?
1: तो अगला गीत ये हम सुनवा रहे हैं क्रीचर फिल्म से, और अरिजीत सिंह की आवाज है
0: जी हाँ,
1: इसमें,
0: और गीत
1: और
0: और
1: गीत और
0: संगीत है टोनी
1: संगीत
0: कक्कड़ का।
1: टोनी कक्कड़।
0: जी हाँ, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद जो हमारे श्रोता हैं वो हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और ये अगला पत्र हमें मिला है, ये मिला है अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक का। और इसी गीत को सुनने ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांव और पोस्ट राहुल नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान। और ये मैसेज हमारे पास आया है गांव गधारोना, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी, विमला गिरी, बलराम, भारत, सोनिया और मधु और रमन दिव्यागिरी की ओर से। जी हाँ, और अगले ये
1: इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले खत की, तो
0: जी
1: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी के अलावा ये मैसेज मुझे मिला है ग्राम जुझैला थाना शिवाला कलां बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, सायना, महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर का। ये मैसेज छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी के हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर

0: वर्मा, मेघा वर्मा, नैना वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा। और अनारकली बाजार जगराओं से फरमाइश की है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और आशीष मल्होत्रा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। और ये पत्र जो हमें मिला है मनोज जी, आया है हमारे पास
1: जी
0: मोहल्ला
1: बिल्कुल,
0: फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। और ये हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विरोधपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोडीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी और RSपुरी का।
1: बिल्कुल। इसके अलावा कुछ खत राजवीर हमारे
0: जी
1: हाथ में भी हैं जिन्हें हम शामिल करना चाह रहे हैं।
0: जी
1: ये खत है हमारे हाथ में महादेव घाट अमलेश्वर के श्रोता हैं हमारे डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। के अलावा आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा भी इनके साथ जुड़े हैं। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन होम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्ल्यू डोम। के अलावा जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा, बेलदार, अकरम, आसमा, वलीउल्ला, भाई देखिए बेलदार,
0: अरे
1: उल्ला, आसमा और बेलदार इनके साथ जुड़े हुए हैं।
0: तो मनोज जी क्यों ना सुनवा देते हैं अपने सभी श्रोताओं को उनकी पसंद का गीत या फिल्म क्रिएचर से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।
1: बिल्कुल।

0: फिल्म क्रिएचर, आवाज अरिजीत सिंह की, गीत और संगीत टोनी कक्कड़ का। अभी आप सुन रहे थे ये सावन का गीत, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म कसूर से, और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर का लिखा है गीत है और धुन है नदीम श्रवण की, और सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं। बोरसरा नैला से प्रमोद साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। ये मैसेज हमारे पास आया है कटरा चांद खां मोर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मोर्य, सुंदरदेव मोर्य, प्रकाश मोर्य, रिंकी मोर्य, कपिल मोर्य, वेदराम मोर्य, कैलाश मोर्य, सुनील मोर्य, खुशबू मोर्य, एरोही मोर्य और स्वाति मोर्य की ओर से। और इसी गीत के लिए ये फरमाइश हमारे पास आई है मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट जनपद बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की ओर से।
1: इसके अलावा फरमाइशों की बात अगर हम करें तो भाई कहां कहां से और मिल रही हैं, और लगातार हमें मिल रही हैं, और ये मैसेज मुझे मिल रहा है मोहल्ला बकर कसाबान शेरकुट बिजनौर के हमारे नियमित श्रोता हैं रऊफ अहमद, निजामुद्दीन, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान और इनका पूरा ही परिवार जनपद मेरठ के हमारे श्रोता हैं बहुत नियमित, नरेंद्र कुमार, मंजू शर्मा, एकता शर्मा, पंडित जगन्नाथ शर्मा, विजय शर्मा, प्रभाष शर्मा, अमिता शर्मा और पूरा ही शर्मा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं शिकारपुर उत्तर प्रदेश से, बबली कुमार प्रजापति, श्रीमती पुष्पा देवी, डॉली, दीपांशु, पूजा, भीम, अभिषेक और बबली देवांगन। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई एसएमएस के जरिए आप भी हैं छजूपुरा तगा ग्राम तहसील मंडी धनौरा जिला अमरोहा के हमारे श्रोता हैं चौधरी आलोक कुमार, प्रशांत कुमार, विक्रांत कुमार, दिवेश चौधरी, सौरभ चौधरी, काशवी गंधर्व और भव्या चौधरी के अलावा। और
0: ये मैसेज हमारे पास आया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और सुनीता शर्मा की ओर से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म कसूर का ये गीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म कसूर में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम शर्मन ने। इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत श्रेय घोषाल की आवाज़ में फिल्म जहर से, सईद कादरी का लिखा एक गीत है और संगीत है रूप कुमार राठौर का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। डोगर गाँव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। यह फरमाइश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका वंश भत्ता, हार्दिक और समस्त भत्ता परिवार की ओर से। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से फरमाइश कर रहे हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर और नीरज। ये मैसेज है महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल का। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। और ये मैसेज है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। और अगले खतों के साथ मनोज जी।
1: जी बिल्कुल, हमारे पास खत भी हैं और एसएमएस भी लगातार मिल ही रहे हैं हमें। बिलराम गेट कासगंज के श्रोता हैं हमारे एम असलम सैफी, जबनिशा बेगम, अकरम सैफी, राबाद खान के अलावा बरका काना से, अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना मुंबई से, महेंद्र मोदी और राजा बाबू। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे श्रोता आप भी हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं ये, परी महल कासगंज के आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसी में ही शमशुल कमर और इरफान कुरैशी गंज डुंडवारा से हैं। इसके अलावा कटथल तेलंगाना से कानून गोला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णु वर्धन और विघ्नेश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये एसएमएस मुझे मिल रहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर राही, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई गांव कैरों जिला तरन तारन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और उनका पोता गुरशब्द के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं कृष्णा नगर टीवी टॉवर सेमिनरी हिल्स नागपुर के श्रोता हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिए।
0: तो मनोज जी फिर पेश है हमारे सभी श्रोताओं की पसंद पर श्रेय घोषाल की आवाज में फिल्म जहर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जहर में श्रेया घोषाल को। इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीब बात केंद्र से। अगले गीत से पहले ये जरूरी संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म आशिक बनाया आपने से। और हिमेश रेशमिया और शेयर घोषाल की आवाज़ों में एक गीत है, समीर का लिखा हुआ गीत और धुन हिमेश रेशमिया की ही है। और इस गीत को सुनना चाहा है चांडूर बिस्वा, तालुका नांदूरा, ज़िला बुलढाणा, महाराष्ट्र से हैं हमारे श्रोता नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। गाँव बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और उत्कर्ष नेताम। ये पत्र हमें मिला है मास्टर रमेश चंद्र नामदेव, संजय कुमार नामदेव, राजन कुमार नामदेव, श्रीमती ज्योति नामदेव, अंशिका निकुंज, सूर्यकांत नामदेव ने फरमाइश की है ग्राम टिकोला कला से। और मनोज जी,
2: जी भैया,
1: कुछ पत्र मुझे आपके हाथों में भी दिखाई
2: दे रहे हैं। हाँ, पत्र भी हैं और अच्छा हाथ में
1: इनको भी शामिल कर लीजिए
2: और एसएमएस सामने है तो दोनों शामिल कर देंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल।
2: चलिए, जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून के अलावा मौला अफगानान शेरकोट बिजनौर के श्रोता हैं हमारे नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर के हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और शीतल कश्यप भी इनके साथ हैं। वेरावल सोमनाथ के हमारे श्रोता हैं अरुण जेबर, हंसा जेबर, रुतिका और बेबी गुंजन। कस्बा चिलकाना के श्रोता हैं मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी और आमिर अंसारी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं एसएमएस के जरिए। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली के श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और इनके साथ पूरा परिवार। कस्बा मीरगंज बरेली के एक श्रोता और हैं हमारे भाई कल्लू मिस्त्री और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा हमारे जो नियमित श्रोता हैं हमारे आसपास के शाही मार्केट शौरा जिला बिजनौर के श्रोता हैं राजवीर ये, आसिफ चौधरी, अरफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी और रिहाना चौधरी भी इनके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा एक श्रोता और हैं खत के जरिए ये हमारे पास, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और राणा सिद्दीकी।
1: तो मनोज जी फिर सुनवा देते हैं अपने सभी श्रोताओं को उनकी पसंद का ये गीत जिसको हमने लिया है फिल्म आशिक बनाया आपने से।
2: बिल्कुल सुनवा दीजिए।

0: आशिक बनाया आपने, इस फिल्म में भी आपने सुना हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया हिमेश रेशमिया ने। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने वाले हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म धड़कन का ये गीत, जिसे लिखा समीर ने और संगीतबद्ध किया नदीम शर्मा ने। इस गीत को सुनना चाहा 51 नंबर पुलिस चौकी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता खर्चे और नारायण खर्चे ने। और ये जो अगला पत्र हमारे पास आया है, ये पत्र हमारे पास आया है चाडूर बिस्वा तालुका नांदूरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से। नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। और ये पत्र हमारे पास आया है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी की ओर से। फरमाइश कर रहे हैं कस्बा बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुरु शब्द, साथ में है राहुल। और मनोज जी, कुछ खत आपके हाथ में भी हैं,
1: बिल्कुल,
0: कहाँ से फरमाइश हमारे पास?
1: देखिए, जिला अमरोहा नई बस्ती पता ही खालसा के श्रोता हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, SMS के जरिए तेलीपुरा रवाना शिकारपुर तलाई के मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, मोहम्मद उमेर अंसारी, शमशाद भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश के श्रोता हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद खत के जरिए आप हैं जहानाबाद नजीबाबाद के श्रोता हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्षा रानी, इंशा अरीबा, अनाबिया आयरा। नजीबाबाद मोहल्ला नादे हिंद के श्रोता हैं कुलदीप माहेश्वरी, मंजुला माहेश्वरी, दीपांशु माहेश्वरी, पलक माहेश्वरी, चिराग माहेश्वरी और रुद्र माहेश्वरी। ये खत है मेरे हाथ में मोहल्ला बीसल मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर के श्रोता हैं हमारे जिला पीलीभीत के विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। एक खत और लेते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहा मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता।
0: तो लीजिए, पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में फिल्म धड़कन का ये गीत।

0: अलका याग्निक और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म धड़कन में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो है इस कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश, फिल्म बिच्छू से। हैरी आनंद और जसपिंदर नरुला की युगल आवाज़ में ये गीत है, समीर का लिखा हुआ, और संगीत है आनंद राज आनंद का। और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं हमारे श्रोता है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, नारायण, स्वाति और मालती चौधरी। ये हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से फरमाइश कर रहे हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एच डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेलोड दिल्ली से फरमाइश की है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका, कार्तिक भाऊ मराठा, परी, संजना मराठा, मालती और स्वाति चौधरी। ये खत आया है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की ओर से। इस गीत को सुनना चाह है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, अनिल पोहरकार, महेंद्र पोहरकार, सुनील साहिल और सुजाता पोहरकार ने।
1: और इस गीत को जो अंतिम है हमें सुनने के लिए ख्वाहिशमंद आप भी हैं, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र और आराधना के अलावा। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद सहारनपुर दाऊद सराय के अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी के अलावा दुल्हमपुर मुरादाबाद के हमारे नियमित श्रोता हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और उनका परिवार के पूरे सदस्य। नजीबाबाद मोहल्ला धर्मदास के हमारे श्रोता हैं गुलाम हसन, निषाद, बानो साबरा, विलायती, शहजादी, सलमान और शराफत। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं नांगल सोती से मोहम्मद असलम, सहराज बेगम और इनका पूरा परिवार। खुर्जा से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा के अलावा। नजीबाबाद के हमारे ये अंतिम गीत के लिए अंतिम श्रोता हैं सब्जी मंडी नजीबाबाद के विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, निकित अग्रवाल, सोनी अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल।
0: और इसी गीत को सुनना चाहे ग्राम नजीमपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर से योगेश कुमार और कुमारी उमेश ने। तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हैरी आनंद और जसपिंदर नरुला की युगल आवाज में फिल्म बिच्छू का ये गीत।

0: और अब इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है। और अब कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति, आगे के कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में आपके साथ रहेंगे मनोज वर्मा।
1: धन्यवाद राजवीर। और आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 11 बज रहे हैं, समय है चित्रपट संगीत का। तो आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ श्रावण मास की महाशिवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। शुरुआत करेंगे इस गीत के जरिए जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम बदले की आग। वर्मा मलिक का लिखा हुआ यह गीत है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: चित्रपट संगीत का पहला गीत हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था बदले की आग। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिलहाल ये संदेश, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: ये गीत जो हम सुनवाने जा रहे हैं अनुपमा देशपांडे और सुरेश वाडेकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम चांदनी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है शिवहरि ने।

चांदनी फिल्म का गीत था सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज में। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है चमेली। इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत रचना संदेश शांडिल्य की।

हम आपको बता दें कि आज रात 9:30 पर मुलाकात क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री नेहा दक्ष से शोभित शर्मा की बातचीत प्रसारित की जाएगी। तो सुनना ना भूलिएगा आज का मुलाकात क्रम। इसके अलावा संसद समीक्षा आज रात 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि अंतिम गीत है हमारे पास, और इस बात को हम सब जानते ही हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और आज हम श्रावण मास की महाशिवरात्रि मना रहे हैं। और जब आने वाली होती है ये महाशिवरात्रि, तो कुछ दिन पहले से ही कांवड़तिया बड़ी बड़ी दूर के हरिद्वार आते हैं और जो पवित्र गंगा नदियां हैं वहां से जल भरते हैं और गंतव्य तक जाते हैं पैदल यात्रा। और आपने देखी होगी इतनी भीड़ लगी रहती है, हाईवेज भी जाम रहते हैं और सरकार को कुछ यातायात नियम भी बदलने पड़ते हैं अपने, है ना। इसके अलावा थोड़े से रास्तों को डाइवर्ट भी किया जाता है क्योंकि भाई श्रद्धा का मामला है और भगवान शिव की भक्ति ही ऐसी है कि इतनी दूर से लोग पैदल आते हैं, कांवड़ लाते हैं, जल लेके आते हैं। तो भाई हम भी क्यों ना आज के इस दिन यानी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को याद करें।

पुराना मंदिर फिल्म का यह गीत था महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, और भगवान शिव हम सबका कल्याण करे इसी कामना के साथ आज का चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर, दिन के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आज का अंक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध

0: विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
1: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
1: जी।
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत।

0: 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस लो।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: ना।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास

0: कि गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
2: मारो, मारो।
1: सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर!
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप! ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर!

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी करते, मासी, मासी मासी मेरी लत सीधी करते।
2: कर दिया, कर दिया।

0: قالين
1: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
2: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
1: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
3: जनरल डार।
4: यस सर।
3: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
4: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
3: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
4: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
3: क्या वार्निंग नहीं दी थी?
4: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
3: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
4: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
1: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
2: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने

0: पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
1: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
2: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
3: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
4: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
2: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
1: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता। छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
2: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?

0: तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती। तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता।
1: करता है पर पहाड़ा।
0: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
1: फिर पहाड़ा कब?
0: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
0: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
1: पक्का?
0: पक्का।
1: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
0: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
0: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
3: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आज का अंक सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज के महिला जगत कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर कहानी पाठ प्रसारित किया जाएगा। बलबीरी, कहानीकार होंगे डॉक्टर पारुल त्यागी। तो सुनना ना भूलिएगा आज का महिला जगत कार्यक्रम और इसमें कहानी पाठ। आज के लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर हरीश सिंह मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। एक ही कलाकार क्रम में आज के हमारे कलाकार होंगे दिन में 2:30 पर सुनील शेट्टी। जी हां, आज के मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में शाम 5 हम आपको जानकारी देंगे उज्ज्वला स्कीम और वर्किंग वुमन हॉस्टल, इन दोनों अहम विषयों पर। और ये हम बता दें आपको कि महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं हैं। आज शाम 5:15 पर युववाणी में क्रम रहेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, बूस्टर्स, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बूस्टर्स हम आपसे बोल ही चुके हैं और फिल्म संगीत भी आपको सुनवाया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में बासमती धान में जैविक विधि से कीट नियंत्रण, इस अहम विषय पर कीट वैज्ञानिक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ डॉक्टर राजेंद्र सिंह से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। एक प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। जी हां, एक बार फिर समय आप सुन लीजिएगा।

6:50 शाम को प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको गीत और गजल सुनवाएंगे। कलाकार रहेंगे आदित्य कुमार शर्मा। समय रहेगा शाम 7:32 पर। और कुछ कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से भी रिले किए जाने हैं, तो जरा उनके बारे में भी सुन लीजिएगा। संसद समीक्षा आज रात 8 बजे, और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र के रहेंगे। इसके अलावा मुलाकात क्रम में आज रात 9:30 पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री नेहा दक्ष से शोभित शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हो रहे हैं। समय है सैनिकों के लिए कार्यक्रम का।

स्वागत है हमारे आज के इस अंक में जिसका नाम है सैनिक के लिए कार्यक्रम। हमारे सभी सैनिक भाइयों सहित हमारे और श्रोताओं का भी, और विशेष तौर पर तो ये कार्यक्रम सैनिकों के लिए है क्योंकि दूर दराज जाड़े में, गर्मी में, बरसात में और धूप में, तपती दोपहरी में हमारी सेवा करते हैं दूर दराज इलाकों में, हमारे बॉर्डर्स पर। तो हमारे सभी सैनिक भाई सम्मान के प्राप्त, सम्मान के हकदार हैं और उनका हम आकाशवाणी नजीबाबाद के इस स्टूडियो से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अपने काम में व्यस्त रहें और देश सेवा करते रहें। इसी के साथ साथ आप और आपका घर परिवार सुरक्षित रहे क्योंकि घर परिवार को छोड़कर ही तो आप हमारी सेवा करते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी बात थी। इसके अलावा भाई, अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना कहलाया जाता है। अनेक क्रांति अगस्त महीने में हुई और आज़ादी का पावन पर्व यानी स्वतंत्रता भी हमें जो मिली थी ना, वो 15 अगस्त को मिली थी भाई। वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता जिसमें हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, किसी का कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें, हम अपने जरूरी काम करने की सुख सुविधाएं हमें दी हैं इस आजादी ने। और इस आजादी दिलाने के लिए हमारे कितने शहीद हुए, अनगिनत शहीदों की कहानियां हैं और ये हम सब जानते ही हैं। उनको याद करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये आजादी मिली है और इस आजादी को हम किसी भी रूप में भूल नहीं सकते।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था लीडर। शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद की धुन थी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म पूरब और पश्चिम से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर के साथ और साथियों की।

शहीद फिल्म का ये गीत था महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीत और संगीत प्रेम धवन का था। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाएं, एक बार फिर याद दिलवा दें, आज रात 9:30 पर मुलाकात क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री नेहा दक्ष से शोभित शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। तो सुनना ना भूलिएगा आज का मुलाकात क्रम। और चलते चलते सैनिक भाइयों के साथ साथ अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म काबुलीवाला से और आवाज है मन्ना डे की।

मन्ना डे की आवाज में आपने सुना काबुली वाला फिल्म का ये गीत, और इस गीत के साथ सैनिक भाइयों आज्ञा दीजिए, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय है मिड डे मेलोडी का। तो मिड डे मेलोडी कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में, और सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: संदेश आपने सुन लिया और संदेश से पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम था क्रांति, संतोष आनंद का लिखा हुआ यह गीत था और इसकी धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने।

ये गीत आप सुन रहे थे गुरु फिल्म का श्रेया घोषाल के साथ उदय मजुमदार का। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। इससे पहले कि हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएंगे जो लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है यादगार, और आप समझ गए होंगे गीत कौन सा रहेगा, वो जिस पथ पे चला है ना। बहुत खूबसूरत गीत है, लता मंगेशकर जी ने बहुत ही सुंदर अंदाज में इस गीत को अंजाम दिया है। शब्द बहुत खूबसूरत हैं इसके और सुनने में, गीत तो बहुत पुराना है ये, लेकिन आज भी बिल्कुल अच्छा लगता है ना। लेकिन हम कह रहे थे कि गीत से पहले, तो फिर अपनी बात को हम वहीं लेके आते हैं। हम एक भूल सुधार करना चाहते हैं। भूल सुधार क्या है वो? कई बार छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे, है ना, लेकिन वो जैसे ही हम उनको एयर पे कर देते हैं ना, वो जो हमें एहसास हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई हमसे छोटी सी गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी क्या हुई है? एक गीत हमने आपको सुनवाया था क्रांति फिल्म का, बोल थे उसके अब के बरस। तो उसमें जो हमने संगीतकार बोला, वो हमसे बोला गया कल्याण जी, आनंद जी, तो वही हमें भूल सुधार करना है। तो वो जो संगीतकार रहे हैं उस फिल्म के, उन गीतों के, वो मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। तो उसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। फिलहाल यादगार फिल्म का ये गीत बिल्कुल तैयार है कि हम आपको सुनवाएंगे इसको। तो जरा सा इस गीत का आनंद लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये गीत सुनने में।

आशा भोसले, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म का ये गीत। पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है छलिया फिल्म से। आवाज है मुकेश की।

0: मुकेश के गाए इस गीत के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, एक बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, उसके बाद इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतोष मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
3: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान

घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की SIR से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The Supreme Court today directed the Election Commission to provide details of appeals decided so far by tribunals appointed to hear pleas against voter deletions. The appeals relate to deletions made during the special intensive revision of electoral rolls in West Bengal. A bench headed by Chief Justice Surya Kant took note of a plea by Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary seeking faster disposal of SIR-related appeals. The court scheduled the plea for further hearing on the 25th of August. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Rajasthan over the next 2 days. At least 9 people have been killed and dozens injured in Russian overnight attacks across Ukraine. According to regional governor Ivan Fedorov, in Zaporizhia, 6 people were killed and 19 injured. In tennis, Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek stormed into the semifinals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 413 points to 78,130, while the Nifty dipped 133 points to 24,451, wind reports last game. And with that, we end.
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एनएच 24 सुनौली नौतनवा गोरखपुर रोड से माधवपुर बंधा तक ग्रीन सिटी कॉलोनी पटानिया तक दो लेन सड़क को चौड़ा और मजबूत करने का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला अब बदलते हुए गोरखपुर को जाहिर करता है। यहाँ की हर सड़क को चार लेन वाली सड़क से जोड़ा जा रहा है और बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। जारी तरक्याती काम और उसके नतीजे में जिंदगी की आसानी ने गोरखपुर को एक नई शिनाख्त दी है। हुकूमत हर शहरी के लिए जिंदगी की आसानी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला ने कहा कि इस इलाके में लोग अरसे दराज से रह रहे हैं, यहाँ कोई स्कूल भी वाक़ है, ताहम सड़क तंग होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। भारी गाड़ियां यहां आने से कासिर थीं। तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 2 किलोमीटर तवील इस सड़क की तामीर से बहुत से मसाइल हल हो गए हैं। इससे लोगों की नकलो हरकत में आसानी हुई है और पानी जमा होने का सिलसिला और मसला भी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के राबते के साथ वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर वगैरह जैसे मकामात का सफर करने वालों को अब शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि चार लेन वाला होबर्ट डैम और माधोपुर पुश्ता जो कि राजघाट से गुजरता है तैयार किया जा रहा है। डोमनगढ़ में फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत गोरखपुर के लोगों को बेशुमार सहूलियात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा
2: पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमा होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बन करके तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सावन शिवरात्रि के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उत्तर प्रदेश में रियासत भर के तमाम मदारिस पुरजोश अंदाज में हर घर में तिरंगा मुहिम से मुतालिक तकरीबात का एहतमाम करेंगे। अकलियती बहबूद के वजीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदारिस में जेर तालीम तुलबा और नौजवानों को मुहिम में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदारिस में कौमी परचम लहराने, कौमी तिराना गाने, हुबुल वतनी की सरगर्मियां और अजीम आज़ादी पसंदों की खिदमत को उजागर करने वाले बेदारी के इकदाम से मुतालिक प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। कल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा की क़यादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को खराज तहसीन है और लोगों पर जोर दिया कि वो फख्र और एहतराम के साथ अपने घरों में कौमी परचम लहराएं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का यह मार्च म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स से रेलवे स्टेशन चौक तक शुरू हुआ, जिसमें वजीर आला ने तिरंगा झंडा हाथ में थामा। कौम सबसे पहले के जज्बे के साथ उन्होंने हाथ में तिरंगा झंडा

0: कर पदयात्रा में हिस्सा लिया। जनाब योगी आदित्यनाथ ने बहादुर मलका लक्ष्मीबाई को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत भी पेश किया और जद्दोजहद आजादी में उनके तावुन और कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा कि 2022 में शुरू की गई हर घर में तिरंगा मुहिम हर साल अपने उरूज पर पहुंच रही है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की तीसरी कॉन्वोकेशन की तकरीब उत्तर प्रदेश की गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों के चांसलर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल की सदारत में इख्तिताम पजीर हुई। मजमुई तौर पर 74 तुलबा को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 26 लड़के और 48 लड़कियां शामिल थीं। इनमें से 11 तुलबा ने अंडर ग्रेजुएट यूजी डिग्रियां हासिल की और 63 ने पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिग्रियां हासिल की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को मजमुई तौर पर 20 मेडल्स से नवाजा गया। राम मंदिर के पहले सीईओ का इंटरव्यू आज से राम मंदिर के अहाते में शुरू हो रहा है। इंटरव्यू के लिए 18 उम्मीदवार फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। यह इंटरव्यू 2 दिन 11 और 12 अगस्त को होगा। इस साल के 80वें यौम आजादी की तकरीबात में यूथ पावर और 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में मुल्क के नौजवानों के तावुन को उजागर किया जाएगा। कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट

नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी श्रोताओं को श्रोताओं स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत के एक नए अंक में। बहनों, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके साथ ही सुनीता नेगी। सबसे पहले तो बहनों आपसे यही जानना चाहेंगे कि सावन के इस मौसम में आप सब कैसी हैं। भाई, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगी और आने वाले तीज त्यौहार की तैयारियां आप खूब धूमधाम से कर रही होंगी। बहनों, तो बहनों उम्मीद यही है कि आज भी कार्यक्रम में आप अपना समय हमें देंगी, हमारे साथ बनी रहेंगी कार्यक्रम महिला जगत में। श्रोता बहनों, आज सावन माह की शिवरात्रि है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की, कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं अपने आराध्य को जल अर्पण करने के लिए। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया है। तो बहनों, आप सभी को भी हमारी ओर से सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

श्रोता बहनों, सावन माह भगवान शिव की भक्ति आराधना के लिए विशेष माना गया है और सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। आज के दिन कांवड़ी कई किलोमीटर चलकर हरिद्वार, गौमुख आदि से गंगा जल लेकर या अन्य स्थानों पर गंगा जल को भरकर शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा का भी बहनों आज लगभग अंतिम दिन है और कांवड़िए अपने कष्टों, पैरों के छाले, दुख, थकान आदि को भुलाकर जब सड़कों पर कतारबद्ध होकर भीड़ में चलते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है, अपने आराध्य शिव के प्रति उनकी आस्था। आम जनमानस भी कांवड़ियों की सेवा में निरंतर सेवा दे रहे हैं। जगह जगह शासन प्रशासन के द्वारा भी भोले के भक्तों का स्वागत फूल वर्षा से किया जा रहा है। सचमुच ये दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके आराम, उनके शारीरिक कष्टों को कम करने के लिए आम जनमानस उनकी सेवा में लगा हुआ है निरंतर, और ये सब आस्था और सेवा को दर्शाता है। बहुत सुंदर मनोरम आस्था का संगम इन दोनों देखने को मिल रहा है और आज तो भारी भीड़ भक्तों और कांवड़ियों की मिलकर इस शिवरात्रि के पर्व को दिव्य और भव्य बना रहे हैं। श्रोता बहनों, शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, अन्य पूज्य सामग्री इत्यादि अर्पण कर हर भक्त अपने जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता की कामना करता है। वहीं बहनों, दूसरी ओर सावन शिवरात्रि पर्व में हमें शिव की तरह धैर्य, त्याग, करुणा इत्यादि के भाव जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। सावन शिवरात्रि यानी आज का दिन बहनों केवल पूजा पाठ पर्व का नहीं बल्कि भारतीय समाज में आस्था, संयम और सेवा की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। आज जब जीवन में भागदौड़ में तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये पर्व मनुष्य को कुछ समय ठहर कर आत्मचिंतन करने और अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने का अवसर देते हैं और इसी आध्यात्मिक चेतना का पर्व है सावन शिवरात्रि। अगर हम अपने जिला बिजनौर की बात करें तो यहाँ हर पर्व पर आपसी सौहार्द, प्रेम, सद्भावना का एक अक्ष

का मिश्रण देखने को मिलता है। हर धर्म के लोग एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर इन्हें मनाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

श्रोता बहनों, सावन शिवरात्रि पर हमने आपसे चर्चा की और आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और कार्यक्रम में अब थोड़ा ठहर कर आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: संदेश के बाद बहनों एक बार फिर से लौट आइए हमारे साथ कार्यक्रम में, और बहनों एक बार फिर से सिलसिला शुरू करते हैं आपसे बातों का। श्रोता बहनों, अक्सर किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता को देखकर दुनिया उसकी सफलता को देख यही चर्चा करती है कि फला व्यक्ति के पास नाम शोहरत सभी कुछ है, लेकिन इतिहास गवाह है बहनों कि किसी भी सफलता के पीछे कभी भी मंजिल सीधे रास्ते न होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से, संघर्ष भरे रास्तों से आप तक पहुंचती है। कष्ट झेलने होते हैं तब करना होता है, और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कभी भी किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए। भले ही कदम छोटे हों लेकिन हौसला बड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे मेहनत रंग जरूर लाती है, और कब सपने आपके हकीकत का रूप लेना शुरू कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जी हाँ बहनों, संघर्षों से लड़कर सफलता मिलती है। ऐसे ही संघर्षों और कष्टों के जीवन में रहकर आज स्पोर्ट्स एथलीट बनी है उत्तराखंड की पहाड़ के एक छोटे से गांव की बेटी अंकिता ध्यानी। जी हाँ, आधी आबादी आज इनको जानेगी इनकी कहानी को सुनकर। तो चलिए इनकी कहानी आपसे बयां करते हैं क्रम आधी आबादी से।

श्रोताओं, आधी आबादी की आज की हमारी जो नायिका है वो एक धाविका है और उन्हें उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अंकिता।

0: ध्यानी, ये नाम है पहाड़ की उस बेटी का जिसने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है।
1: मेरा नाम अंकिता ध्यानी है और मैं एथलेटिक्स 5000 मीटर इवेंट की प्लेयर हूँ।
0: अंकिता देश की जानी मानी एथलीट है जो नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर चुकी है। और अंकिता ध्यानी भारतीय एथलीट है जो मध्यम दूरी से लंबी दूरी तक की धावक है। श्रोताओं, अंकिता ध्यानी ने सन 2022 में एशियाई खेल और सन 2024 में पेरिस ओलंपिक सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अंकिता ध्यानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के मैरोड़ा गांव की बेटी हैं। शुरुआती दौर में स्कूल टाइम में अंकिता अपने गांव के खेतों और टूटी फूटी सड़कों पर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ दौड़ लगाती थी। कभी नंगे पैर दौड़ लगाती अंकिता, बाद में साधारण से जूतों से दौड़ती हुई विपरीत परिस्थितियों में भी अंकिता ने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ के एक गांव से निकलकर अपनी मेहनत के बल पर विदेशों में आज पूरे देश के झंडे को लहराकर रिकॉर्ड दर्ज कर रही हैं अंकिता ध्यानी। बचपन में ना पैर में कोई जूता, न कोई ट्रैक, पहाड़ का ऊंचा नीचा रास्ता, मैरोड़ा गांव की वो निर्माणधीन टूटी फूटी सड़कें जिन पर दौड़कर अंकिता ने प्रैक्टिस की और तब उन्हें कभी लगा कि वो एक अच्छी एथलीट बन सकती हैं। अंकिता ध्यानी को दौड़ने की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे शुरुआत हुई उनके दौड़ने की और कब उन्हें लगा कि वो एज एथलीट कैरियर बना सकती हैं, किसको वो अपना रोल मॉडल मानती हैं?
2: मेरी रनिंग की शुरुआत मेरे गाँव से ही हुई है और धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को एथलेटिक्स गेम करना है, पर जैसे मैं अपने गांव की सड़कों में अपने भाइयों के साथ रनिंग करने जाती थी और जो स्कूल गेम्स होते हैं वहां से मेन करियर शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे उधर से ही यहां तक की मेरी जर्नी रही है। करियर के बारे में मैंने पहले तो कुछ सोचा नहीं था। मुझे ऐसे था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी, जैसे इसलिए मैं कभी कभी दौड़ने चली गई। मेरे फैमिली से मैं ही एथलेटिक्स इवेंट करती हूँ।
0: परिवार में मैरोड़ा गांव में अंकिता के कौन कौन हैं और गांव वालों का कैसा सपोर्ट रहा उनके जीवन में? क्या रिएक्शन आज गांव वालों का है और परिवार का क्या सपोर्ट रहा?
2: मेरे फादर फार्मर है और मेरी मदर हाउस वाइफ है और हम चार भाई बहन है, भाई और दो बहन है। मेरे गांव में उनको ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं कौन क्या कर रहा है, पर जब एक नाम हो गया अंकिता ध्यानी कर उनको धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आने लग गया। जब भी मैं घर गई तो हमेशा मेरे को लेने के लिए पूरे गांव वाले सड़क में मिलने के लिए आया करते थे।
0: साल 2017 में अंकिता ध्यानी की एथलीट यात्रा शुरू हुई, उन दिनों को याद करते हुए अंकिता बताती है।
2: धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई 2017 में। हॉस्टल गई तो मुझे वहाँ पे काफी सपोर्ट मिला। हमारे पास शूज नहीं थे, किट नहीं थी पहनने के लिए, तो हमें हॉस्टल से प्रोवाइड हुआ, सब कुछ मिला। तो धीरे धीरे मेरी जर्नी हुई। फिर ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो ही हमें सब सपोर्ट करते थे। तो फिर भोपाल साई में मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी है। उसके बाद मेरा इंडिया

बनी है उत्तराखंड की पहाड़ के एक छोटे से गांव की बेटी अंकिता ध्याने। जी हाँ, आधी आबादी आज इनको जानेगी इनकी कहानी को सुनकर। तो चलिए इनकी कहानी आपसे बयां करते हैं, क्रम आधी आबादी से।

0: श्रोताओं, आधी आबादी की आज की हमारी जो नायिका है वो एक धाविका है और उन्हें उत्तराखंड की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अंकिता ध्यानी ये नाम है पहाड़ की उस बेटी का जिसने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है।
1: मेरा नाम अंकिता ध्यानी है और मैं एथलेटिक्स 5000 मीटर इवेंट की प्लेयर हूँ।
0: अंकिता देश की जानी मानी एथलीट है जो नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर चुकी है और अंकिता ध्यानी भारतीय एथलीट है जो मध्यम दूरी से लंबी दूरी तक की धावक है। श्रोताओं, अंकिता ध्यानी ने सन 2022 में एशियाई खेल और सन 2024 में पेरिस ओलंपिक सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अंकिता ध्यानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के मैरोड़ा गांव की बेटी हैं। शुरुआती दौर में स्कूल टाइम में अंकिता अपने गांव के खेतों और टूटी फूटी सड़कों पर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ दौड़ लगाती थी। कभी नंगे पैर दौड़ लगाती अंकिता, बाद में साधारण से जूतों से दौड़ती हुई विपरीत परिस्थितियों में भी अंकिता ने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ के एक गांव से निकलकर अपनी मेहनत के बल पर विदेशों में आज पूरे देश के झंडे को लहराकर रिकॉर्ड दर्ज कर रही हैं अंकिता ध्यानी। बचपन में ना पैर में कोई जूता ना कोई ट्रैक, पहाड़ का ऊंचा नीचा रास्ता, मैरोड़ा गांव की वो निर्माणधीन टूटी फूटी सड़कें जिन पर दौड़कर अंकिता ने प्रैक्टिस की और तब उन्हें कभी लगा कि वो एक अच्छी एथलीट बन सकती हैं। अंकिता ध्यानी को दौड़ने की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे शुरुआत हुई उनके दौड़ने की और कब उन्हें लगा कि वो एज ए एथलीट कैरियर बना सकती हैं, किसको वो अपना रोल मॉडल मानती हैं?
2: मेरे रनिंग की शुरुआत मेरे गांव से ही हुई है और धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को एथलेटिक्स गेम करना है, पर जैसे मैं अपने गांव की सड़कों में अपने भाइयों के साथ रनिंग करने जाती थी और जो स्कूल गेम्स होते हैं वहां से मेन करियर शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे उधर से ही यहां तक की मेरी जर्नी रही है। करियर के बारे में मैंने पहले तो कुछ सोचा नहीं था, मुझे ऐसे था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी जैसे, इसलिए मैं कभी कभी दौड़ने चली गई। मेरे फैमिली से मैं ही एथलेटिक्स इवेंट करती हूँ।
0: परिवार में मैरोड़ा गांव में अंकिता के कौन कौन हैं और गांव वालों का कैसा सपोर्ट रहा उनके जीवन में, क्या रिएक्शन आज गांव वालों का है और परिवार का क्या सपोर्ट रहा?
2: मेरे फादर फार्मर है और मेरी मदर हाउसवाइफ है और हम चार भाई बहन है, भाई और दो बहन है। मेरे गांव में उनको ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं कौन क्या कर रहा है, पर जब एक नाम हो गया अंकिता ध्यानी कर उनको धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आने लग गया। जब भी मैं घर गई तो हमेशा मेरे को लेने के लिए पूरे गांव वाले सड़क में मिलने के लिए आया करते थे।
0: साल 2017 में अंकिता ध्यानी की एथलीट यात्रा शुरू हुई, उन दिनों को याद करते हुए अंकिता बताती है।
2: धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई 2017 में, हॉस्टल गई तो मुझे वहाँ पे काफी सपोर्ट मिला। हमारे पास शूज नहीं थे, किट नहीं थी पहनने के लिए, तो हमें हॉस्टल से प्रोवाइड हुआ, सब कुछ मिला, तो धीरे धीरे मेरी जर्नी हुई। फिर ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो ही हमें सब सपोर्ट करते थे, तो फिर भोपाल साई में मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी है। उसके बाद मेरा इंडिया
3: मेरे कान का एक टॉप्स मेरे हाथ में देते हुए बोली, पारुल ये लो, ध्यान रखा करो अपनी चीजों का। मुझे वे प्रभावित कर गईं। निश्चित ही ईमानदारी और पारुल नाम से बुलाने का अपनापन। मैं उनकी बोलचाल से समझ गई थी कि वे वास्तव में काम वाली नहीं थीं, वे परिस्थिति के वश में थीं। बहुत शांत और चुप अपने मन की कह लेती थीं मुझसे। बेटी की शादी कर दी थी, उसके सुख दुख नाती नातिन की बातें। बेटी जब भी ससुराल से मायके आती तो चहकती रहती थी बलबीरी। अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी थी उन्होंने, जीवन में निभाने की शिक्षा। वे कभी भी अपनी ससुराल वालों के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती थी और न ही अपनी बेटी को देने देती थी। सदैव यही कहना कि भाग्य

0: आगे का लिखा कौन मिटा सकता है भला। एक दिन बहुत दुखी मन से वे काम पर आईं, हताश और निराश। मैंने पहले उन्हें बैठने के लिए कहा और कहा कि बाद में काम कर लेना। चाय दी और उनके पास ही बैठ गई। पहली बार मुझे उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां दिखाई दी, आंखें ऐसी जैसे किसी शमशान का सन्नाटा। मैंने पूछा तो बोली कि बड़े बेटे से मिलकर आ रही हूं, वो सन्यासी हो गया है, किसी गांव में धूनी रमा कर रहता है। बोली कि जब भीड़ को चीरती हुई उसके सामने पहुंची तो अश्रु बह चले। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि घर चल, तो उनके पुत्र ने अपनी माँ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, कहा कि अब मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। बलबीरी कहने लगी कि सबसे बड़ा था तो लाड़ प्यार भी बहुत पाया उसने, जब छोटा तो क्षण भर अलग नहीं होता था, और आज देखो तो कहता है कि तेरा बेटा नहीं हूं, कलेजा चीर कर रख दिया है। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा कि वो वाकई अब तुम्हारा नहीं है। कहने लगी, है तो मेरा ही, मुझे दुख देकर दुनिया को दुख से छुटकारा पाने के उपाय बताता है। मैं निरुत्तर थी। एक दिन वे आईं और बोली कि छोटा बेटा कॉलेज में आ गया है, किताबें बहुत महंगी हैं, आप सभी कॉलेज में पढ़ाते हो, कुछ व्यवस्था हो सकती है। मैंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने उसको MSc करने तक पुस्तकों और शुल्क की व्यवस्था बनाए रखी। वह पढ़ाई में अच्छा था, पति से मार्गदर्शन के लिए आ जाता था, चुप और शर्मीला, बहुत पढ़ता था, जुझारू और परिश्रमी। बलबेरी एक दिन बहुत खुश थी। बेटे ने भौतिकी विज्ञान में नेट पास किया। बोली कि बहुत बड़ा पेपर पास किया है उसने और अब नौकरी लग जाएगी उसकी। मैंने पूछा कि कहीं आवेदन किया है उसने, तो वह बोली वो तो पता नहीं, पर सब दिन एक से नहीं रहते। और वाकई फिर भाग्य और परिश्रम ने जोर मारा और उनका पुत्र एक डिग्री कॉलेज में आयोग से प्रवक्ता पद के लिए चयनित हुआ। रिश्ते आने लगे। एक दिन कहने लगी कि एक रिश्ता आया है, दहेज में पेट्रोल पंप दे रहे हैं। मैंने कहा कि क्या सोचा फिर? बोली कि बेटा कह रहा है कि माँ हम तो खुद का अपना एक कमरा बना लेंगे, अपनी तो झोपड़ी ही भली। और फिर उसने शिक्षा क्षेत्र से ही एक शिक्षिका से विवाह किया। और फिर वह दिन भी आ गया, काम छोड़ने का दिन। सुबह बोली कि बेटा बहू अब काम करने को मना कर रहे हैं, इस महीने ही काम करूंगी। और फिर मैंने देखा कि वे रो रही थी। बोली कि पारुल तेरी याद आएगी, कम लोग कामवाली से ढंग से बात करते हैं। मैंने कहा आप कामवाली नहीं लगी कभी मुझे, अपनी बड़ी ही लगी। और फिर बात करने का ढंग व्यक्ति को परिभाषित करता है। जाते समय सिर पर हाथ रखकर मुझे 100 रुपए का शगुन दिया। मैंने भी उन्हें एक सूट दिया और वे अश्रुओं से भरी आंखें और अधरों पे संभली मुस्कुराहट के साथ चली गई। वे जमीनी थीं और जानती थीं कि खुशियां पेट्रोल पंप से नहीं, अपने घर आए बनाए घर से मिलती हैं। वे अब कहाँ हैं नहीं जानती, पर याद आ जाती है कभी कभी कि पारुल एक कप चाय बनाती। और उस दिन मैंने उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी कि स्त्रियां जो निष्ठावान रहीं और जो रहीं सेवारत, और वे जो संतानों के लिए परिश्रम के दाने बटोरती रहीं और पीसती रहीं समय की निर्मम चक्की के भारी पाट, जो जीती रहीं अल्प में आस के आसमान के नीचे, स्त्रियां जो नापती रहीं हजारों मील के रास्ते, सुबह शाम कि एक कंधा झुक गया कि संतुलन बना रहे। यद्यपि मैं बिल्कुल स्त्रीवादी नहीं हूं, पर स्त्रियों के स्त्रैण गुणों में उनका मुस्कुराना मुझे सर्वाधिक लुभाता है।
1: श्रोता बहनों, अभी आपने सुनी डॉक्टर पारुल त्यागी से उनकी कहानी बलबीरी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और बहनों, आजकल हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइमिंग हर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि बच्चे भी स्क्रीन पर बहुत देर तक चिपके रहते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टेलीविज़न हो। हम सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ने से बहुत सारे नुकसान हमें होने वाले हैं।

बहनों, अगर स्क्रीन टाइमिंग को कम नहीं किया गया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आंखों की समस्या। कई बार एक टक लगातार स्क्रीन को देखने पर हम पलके नहीं झपकाते हैं, इससे हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाता है और कभी कभी धुंधला दिखने की भी शिकायत होती है। गलत मुद्रा में बैठने से गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियों में जकड़न और दर्द बढ़ने लगता है, और सर्वाइकल जैसी समस्या भी आजकल दिखाई दे रही है। श्रोता बहनों, स्क्रीन पर नीली रोशनी जो दिखाई देती है, नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को रोकती है, जिससे हमें नींद नहीं आती है और जिसका परिणाम स्वरूप ये देखने में मिलता है कि अक्सर रात रात को स्क्रीन पर बहुत सारे लोग टाइम व्यतीत करते हैं। शारीरिक सक्रियता में भी कमी होती है, लगातार बैठे रहने से मोटापा और सुस्ती बढ़ती है। इसके साथ ही मानसिक नुकसान भी इसके होते हैं। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया या डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने पर मानसिक तनाव, थकान और डिप्रेशन का भी खतरा बना रहता है लगातार। बच्चों और बड़ों दोनों में ही याददाश्त की कमी, काम में ध्यान लगाने की क्षमता कमजोर होती है और बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बहनों, कोशिश कीजिए स्वयं भी स्क्रीन पर कम टाइम स्पेंड कीजिए और बच्चों को खासकर स्क्रीन से दूर रखने का प्रयास कीजिए। और कार्यक्रम में चलते चलते अब वक्त हो रहा है एक गीत का।

मैंने आपने सुना गीत और कार्यक्रम में चलते चलते यही अनुरोध आपसे रहेगा कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। महिला जगत कार्यक्रम को आप निरंतर सुनती आ रही हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया भी बहनों जरूर हम तक आनी चाहिए, जिससे कार्यक्रम को आपके अनुसार हम पेश कर सकें और बेहतर बना सकें। क्या आप कार्यक्रम में चाहती हैं वो भी हमें जरूर मैसेज के द्वारा आप लिखकर भेज सकती हैं बहनों। और मैसेज करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कीजिए जल्दी से, चाहे आप मोबाइल में नोट कीजिए, चाहे आप पेन कॉपी लेकर नोट कीजिए। तो बहनों हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर दोहरा रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा 9457078288।

8282 8888। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपके मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा। तो बहनों, आज के कार्यक्रम के लिए अब यहीं पर हमें आज्ञा दें संपन्न करने की, सुनीता नेगी को अनुमति दें। बहनों नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:45 हो रहे हैं। समय है लोकधारा कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरीश सिंह मेहरा के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। पहले सुनते हैं हरीश सिंह मेहरा की आवाज में ये कुमाऊनी लोकगीत।

हरीश सिंह मेहरा की आवाज में आपने सुना ये कुमाऊनी लोकगीत। लोकधारा कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरीश सिंह मेहरा के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। एक कुमाऊनी लोकगीत इन्हीं की आवाज में हमारे पास अभी और है जो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 बजे उज्ज्वला स्कीम और वर्किंग वुमन हॉस्टल, इन दोनों अहम विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। आज के युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, कहानी के उस पार, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बूस्टर्स और फिल्म संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनिएगा, प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में कीट वैज्ञानिक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ डॉक्टर राजेंद्र सिंह से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता। आज शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे गीत और गजल, कलाकार होंगे आदित्य कुमार शर्मा, तो सुनना ना भूलिएगा इनसे गीत और गजल जो हमारे सुगम संगीत कार्यक्रम के श्रोता हैं। संसद समीक्षा रात 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और आज दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार क्रम में हमारे कलाकार रहेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी, तो सुनना ना भूलिएगा आज का ये अंक।

और फिर वहीं लोकधारा कार्यक्रम की अगर हम बात करें अंतिम गीत की, वो सुनवाएंगे आपको आवाज हरीश सिंह मेहरा की।

0: 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semifinals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9

0: 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामा

0: रखने के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। दनिश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
3: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में

0: कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लो ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 50 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ ऐसे फिल्मी गीत जो सुनील शेट्टी की फिल्मों से लिए गए हैं या ये कहें कि उन्हीं पर आधारित हैं। और क्यों ये काम हम करने जा रहे हैं, चूंकि आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो अभिनेता, फिल्म निर्माता, टीवी मेहमान और उद्यमी सुनील शेट्टी साहब को आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी तरफ से

उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बात करें सुनील शेट्टी साहब की, तो आप हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, दमदार आवाज के मालिक। इसके अलावा उनकी जितनी भी मुद्राएं हैं वो बहुत गजब की हैं। एक नाम उनका प्यार का भी है, होता है ना, जिसको निक नाम बोलते हैं, तो अन्ना नाम से जाने जाते हैं। और अभी तक उनकी फिल्मों की बात अगर हम करें कि कितने फिल्मों में उन्होंने काम किया होगा, तो 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और ये सफर उनका सन 1992 से अब तक जारी है। फिल्मों में बात करें उनके एक्शन की, तो कॉमेडी एक्शन उन्होंने किया है, एक्शन फिल्में उन्होंने की हैं। इसके अलावा कई फिल्मों में उन्होंने खलनायक का किरदार भी निभाया है, यानी नकारात्मक भूमिका जो होती है ना, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई है। सन 1992 में बलवान फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और दिव्या भारती के साथ उन्होंने ये फिल्म की थी। इसके बाद सन 1994 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मोहरा। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए, बहुत ही गजब की फिल्म रही है ये। और इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था, बहुत प्रसिद्धि मिली इस फिल्म से उन्हें। और बड़े मंझे हुए कलाकार के साथ इन्होंने काम किया, जैसे नसीरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, रवीना टंडन जैसे अनेक मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में थे। लड़ाई मारधार से भरपूर ये फिल्म थी और इसमें आखिर तक कहीं ना कहीं लड़ाई मारधार में भी उन्होंने पूरा रोल अदा किया और बेहतरीन अपनी अदाकारी निभाई। एक गीत इस फिल्म का बहुत खूबसूरत है, पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में। और ये गीत अभिनेता सुनील शेट्टी साहब पर ही फिल्माया गया है। तो सुनवा देते हैं आपको पहले ये गीत, उसके बाद आगे की बात करेंगे।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मोहरा फिल्म के बाद सुनील शेट्टी ने वक्त हमारा, अंत, दिलवाले और बॉर्डर जैसी फिल्मों में काम किया। बॉर्डर फिल्म में उन्होंने कैप्टन भैरों की भूमिका निभाई। बॉर्डर फिल्म जेपी दत्ता द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित फिल्म है। फिल्म में उन्होंने अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और पुनीत इस्सर जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया है। और बॉर्डर फिल्म की जो कहानी है ना श्रोताओं, ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। और इस फिल्म में सन 1971 के भारत और पाक युद्ध के समय लड़े गए लोंगेवाला का युद्ध को विस्तार से समझाया गया। इसके अलावा जहां राजस्थान के लोंगेवाला में पोस्ट पर 120 भारतीय जवान सारी रात पाकिस्तान की टॉक रेजिमेंट का सामना करते हैं, तो इस फिल्म में ये सारी बातें बताई गई हैं। और कुल मिला के अगर हम कहें तो सुनील शेट्टी ने देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म में काम

0: किया।
1: एक फिल्म का गीत, यानी बॉर्डर फिल्म का गीत आपके लिए हम भेज रहे हैं, तो सुनिएगा। ये गीत रूप कुमार राठौर की आवाज में है, और जब कहीं ना कहीं कोई सैनिक अपना घर छोड़ के बहुत ज़रूरतों के बाद भी गुंजाइश नहीं होती कि घर से वापस जाए, वो वहाँ है ना छुट्टी पर आते हैं, लेकिन इमरजेंसी केस में जब उनको लगाया जाता है तो उनको तुरंत जाना पड़ता है। तो ये एक गीत ऐसा ही है, उस गीत को हम आपको सुनवाते हैं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

एक ही कलाकार कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस में आज हम आपसे बात कर रहे हैं अभिनेता सुनील शेट्टी साहब की। श्रोताओं, मोहरा फिल्म के बाद, बॉर्डर फिल्म के बाद सुनील शेट्टी एक बार फिर विनाशक और एक फिल्म बहुत खूबसूरत आई थी, बेहतरीन फिल्मों की श्रेणी में वो रही है। आपको बिल्कुल याद आ रही होगी और आ जाएगी जब हम उसके नाम लेंगे उसका, उसमें अक्षय कुमार भी थे ना। तो हमें लगता है कि कुछ लोगों को, कुछ श्रोताओं को हमारे याद आ गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत गीत उसके चर्चित हुए थे और आज भी सुने जाते हैं, और वो फिल्म ऐसी है कि आज भी उसको देखते हैं लोग, और हम भी अगर कहीं मौका मिले ना उस फिल्म को छोड़ते नहीं हैं। यानी धड़कन फिल्म की बात कर रहे हैं आपसे हम, उसमें नजर आए थे। धड़कन फिल्म में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी का रोल किया था। जुनूनी प्रेमी के मायने कि भाई मैं ये काम करूंगा या मुझे इससे मोहब्बत करनी है और इसको हासिल करना है, वो आप इस फिल्म में हमारे श्रोताओं ने देखी है, वो इस बात को जानते हैं क्या क्या उन्होंने उसके लिए काम किया कि ऐसे करूंगा ऐसे होगा। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए इस फिल्म में उन्होंने एक खलनायक का रोल अदा किया, यानी नकारात्मक जो निगेटिव भूमिका होती उसको अदा की। और इस किरदार के लिए जो निगेटिव किरदार था उनका, तो जी सिने का उनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म में उन्होंने देव चोपड़ा का किरदार निभाया जो अंजलि यानी शिल्पा शेट्टी के प्रेमी है। तो गीत भी है उन पर फिल्माया हुआ। फिलहाल उस गीत को हम आपको सुनवाते हैं।

सुनील शेट्टी ने अनेक कलाकारों के साथ अनेक शैलियों की अनेक फिल्मों में काम किया। सन 2001 में उन्होंने अर्जुन रामपाल की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत में अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर के साथ काम किया और एक फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी, उसमें कॉमेडी रोल अदा किया। चलिए उस गीत को सुनवा देते हैं

श्रोताओं, सुनील शेट्टी ने देशभक्ति फिल्मों की श्रेणी में एक फिल्म और आपको याद होगी, एलओसी कारगिल, उसमें भी काम किया। यह फिल्म हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है जो भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान जैसे अनेक मंझे हुए कलाकारों के साथ उन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया। इसमें सुनील शेट्टी ने राइफल मैन संजय कुमार का रोल अदा किया, जो 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में से हैं। इस फिल्म के गीत अनु मलिक ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किए हैं आदेश श्रीवास्तव ने। तो चलते चलते यानी कार्यक्रम के अंत में भाई यही गीत हम आपको सुनवाएंगे, यानी एलओसी कारगिल फिल्म का सीमाएं बुलाए तुझे, है ना। और देखिए भाई, हमारा आज़ादी का पावन पर्व भी आ रहा है 15 अगस्त, तो भाई मौसम तो यही है कि भाई देशभक्ति के गीत हम सुने और सुनवाएं। तो यही एक हमारी कोशिश है कि भाई हम सभी तरीके के गीतों को आप तक पहुंचाएं और इस चीज़ का एहसास भी कराएं साथ साथ कि भाई ये हमारा पावन पर्व, राष्ट्रीय पर्व आने वाला है।

श्रोताओं, सुनील शेट्टी साहब कई परोपकारी पहलों में भी शामिल हैं। वे विपला फाउंडेशन के सलाहकार हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है। ये संस्था यानी ये संगठन शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण पहलों के जरिए से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम भी करता है। इसके अलावा सन 2008 में उन्होंने मुंबई में तस्करी से 128 नेपाली महिलाओं को बचाने में योगदान दिया और उनकी नेपाल वापसी की व्यवस्था भी की थी।

सुनील शेट्टी इसी तरीके से अभिनय करते रहें, परोपकार के काम करते रहें और इस दुनिया में अच्छा नाम कमाते रहें, इसी कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम जो आधारित था सुनील शेट्टी पर, संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार एक बार फिर सुनील शेट्टी साहब को आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी ओर से उनकी जन्मदिन के मौके पर ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम आधारित था सुनील शेट्टी पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 3 बज रहे हैं, हमारी आज की इस सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

9.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत उज्ज्वला स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और वर्किंग वुमन हॉस्टल योजनाओं के विषय में जानकारी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ रेणु कोटनाला। श्रोताओं, जब हम एक बेहतर विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं का सुरक्षित सम्मानजनक और आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है ना। तो आइए आज कार्यक्रम में बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल की, जो है उज्ज्वला स्कीम। श्रोताओं जरा सोचिए, अगर किसी महिला या बच्ची को बहला फुसला कर धोखे से या फिर किसी मजबूरी का फायदा उठाकर शोषण का शिकार बनाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें बचाने, सुरक्षित वातावरण देने और सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने में मदद करना बेहद जरूरी है। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय से 4 दिसंबर 2007 को उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं मानव तस्करी की रोकथाम करना और तस्करी की शिकार महिलाओं और बच्चों को बचाकर उनके पुनर्वास और समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है। श्रोताओं, इस योजना के प्रमुख हिस्से में रोकथाम, बचाओ, पुनर्वास, समाज में पुनः स्थापना और सुरक्षित वापसी है। इस योजना के माध्यम से मानव तस्करी से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जाता है। इसका लाभ मुख्य रूप से मानव तस्करी से प्रभावित महिलाएं और बच्चे, विशेषकर व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए पीड़ितों को दिया जाता है। श्रोताओं, वर्तमान में उज्ज्वला और स्वाधार गृह को मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन में शामिल किया गया है। यहाँ जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य परामर्श, कानूनी सहायता और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मिलती हैं। जरूरतमंद महिला वन स्टॉप सेंटर या पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकती है। यानी श्रोताओं, उज्ज्वला स्कीम का उद्देश्य है सुरक्षा, सहारा और सम्मान के साथ महिलाओं को नया जीवन शुरू करने का अवसर देना। और श्रोताओं, उज्ज्वला स्कीम की जानकारी के बाद आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की ओर, जो कि है वर्किंग वुमन हॉस्टल। श्रोताओं, अभी हमने बात की उन महिलाओं की जिन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा और सहायता की जरूरत होती है। लेकिन श्रोताओं, महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। जी हाँ, जब कोई महिला घर से बाहर निकलकर नौकरी करती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है तो उसके लिए सुरक्षित रहने की जगह भी श्रोताओं उतनी ही जरूरत होती है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्किंग वुमन हॉस्टल स्कीम की शुरुआत की। आज ये योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास के नाम से जानी जाती है। श्रोताओं, इसका मुख्य उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और उचित आवास उपलब्ध कराना, ताकि केवल रहने की समस्या के कारण महिला नौकरी या प्रशिक्षण का अवसर न छोड़े। अब सवाल है कि इसका लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है। तो श्रोताओं, निर्धारित नियमों के अनुसार नौकरी या रोजगार करने वाली महिलाएं इसकी पात्र हो सकती हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण ले रही महिलाएं भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही ऐसी विवाहित महिलाओं को भी पात्रता के अनुसार सुविधा मिलती है जिनके पति या परिवार के सदस्य उस क्षेत्र में नहीं रहते। श्रोताओं, सखी निवास में निर्धारित नियमों के अनुसार उचित किराए पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ही अगर कोई महिला छोटे बच्चों के साथ काम करती है तो उसके लिए डे केयर यानी बच्चों की देखभाल की सुविधा कराने का भी प्रावधान है। इससे कामकाजी माँ के लिए नौकरी और बच्चे की जिम्मेदारी संभालना कुछ आसान हो जाता है। श्रोताओं, जो महिलाएं इस सुविधा का लाभ लेना चाहती हैं वो अपने क्षेत्र में उपलब्ध सखी निवास, राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग या फिर जिला स्तर के संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। यहाँ की उपलब्ध सीट, किराया, पात्र

और बाहरी जरूरी दस्तावेज, साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सकती है। श्रोताओं, सखी निवास का उद्देश्य केवल महिलाओं को रहने की जगह देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि सुरक्षित आवास की कमी किसी महिला की नौकरी, प्रशिक्षण या आत्मनिर्भर बनने की राह में बाधा न बने, क्योंकि जब महिला सुरक्षित होकर आगे बढ़ती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके साथ पूरा परिवार भी आगे बढ़ता है। और श्रोताओं, अब मेरा सपना उन्नत भारत में महिलाओं से जुड़ी इन महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी को यहीं विराम देते हैं और सुनवाते हैं आपको यह गीत।

तो श्रोताओं, आप इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी नई योजना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक नजर डालते हैं हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का भाग 5 प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा संध्या 6:50 पर। संध्या 5:15 पर युवाणी में आज का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज दिल से दिल तक कहानी के उस पार में जहां आसमां खत्म नहीं होता का एपिसोड 2 युवा श्रोता सुनेंगे और 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम होगा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया।

कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का भाग 12 किसान श्रोता सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कीट वैज्ञानिक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से सुरेंद्र सिंह की बातचीत, और बातचीत का विषय रहेगा बासमती धान में जैविक विधि से कीट नियंत्रण

आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजलों का आनंद लीजिएगा हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर। आज रात्रि 9:30 पर मुलाकात कार्यक्रम में सुश्री नेहा दास अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी से शोभित शर्मा की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे। समय आपको पुनः बता देते हैं, आज रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर गीत संध्या कार्यक्रम में, रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:30 पर, 6:40 पर चिंतन और प्रातः 6:45 पर निशा अग्रवाल का काव्य पाठ काव्यधारा कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे। स्वास्थ्य चर्चा में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा मानव शरीर में कैल्शियम का महत्व और 7:15 पर खेती की बातें क्रम में लौकी की फसल रोग और कीट नियंत्रण विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर। नयनतारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाय रोहिलखंडी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा हमारे धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः।

9:25 पर। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, सावन की रिमझिम फुहारों के साथ आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में मैं हूं आपकी रेडियो पार्टनर सना
1: और मैं हूं आपकी रेडियो पार्टनर मरियम जैदी। कहते हैं ना दोस्तों, सावन सिर्फ आसमान से बरसता नहीं बल्कि दिल में उतर जाता है।
0: कभी बारिश की बूंदों में किसी अपने की याद मिल जाती है, कभी मिट्टी की खुशबू बचपन की गलियों तक ले जाती है और कभी सावन का कोई गीत दिल की पुरानी बात छेड़ देता है।
1: सावन का मौसम ही कुछ ऐसा है, बादल आते हैं तो मन भी थोड़ा ठहर जाता है, बारिश होती है तो दिल की खिड़की भी खुल जाती है भाई।
0: तो आज की शाम हमारे सेगमेंट दिल से दिल तक की थीम है इसी मौसम के नाम, जहां बारिश होंगी, यादें होंगी, संगीत होगा और बातें होंगी बस दिल से दिल तक।
1: तो चलिए सावन के रिमझिम बूंदों के साथ शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर, इस खूबसूरत सी थीम सावन के नाम।
0: इसी खूबसूरत थीम के साथ बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और ले चलते हैं आपको हमारे पहले सेगमेंट बूझो तो जाने की ओर,
1: जिसमें आज का हमारा सवाल रहेगा दोस्तों कि 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने की।
0: और इसका सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
1: लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों, भूलना मत, हमारी आज की थीम है सावन। अगर आपके मन में है कोई सावन से जुड़ी बात तो आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457072 पर।
0: हम उन सभी मैसेजेस को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ ही दोस्तों हमें रहेगा आपके सही जवाब का भी इंतजार। तब तक के लिए आइए आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
7: पिंकी।
8: यस मैम।
7: 1 से 10 तक गिनती सुनाओ।
8: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10।
7: और 6 कहाँ है?
8: मैम वो तो मर गया।
7: मर गया? कैसे मर गया?
8: मैम आज सुबह ना टीवी पे न्यूज में भी बता रहे थे कि गर्मी से 6 की मौत हो गई।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
9: सना, कभी कभी जिंदगी कहती है ना, बस अब और नहीं हो रहा, और मन कहता है थोड़ा रुक जाते हैं।
10: लेकिन जिंदगी का एक छोटा सा रूल होता है मरियम।
9: क्या?
10: रुकना मना है।
9: अरे वाह भाई, मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर भी नहीं रुकना?
10: अरे अरे, वहां तो रुकना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी आगे बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारा चला न कट जाए।
9: बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात ट्रैफिक की नहीं सना, जिंदगी की है।
10: क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, प्लान्स फेल होंगे, कभी मेहनत का रिजल्ट देर से मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कोशिश ही छोड़ दें।
9: देखो सना, मैं और हमारे लिसनर्स तो समझ रहे हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से रुकना मना है का असली मतलब क्या है?
10: मेरे हिसाब से रुकना मना है का मतलब है मरियम, गिरो तो संभलो, थोड़ा थको तो थोड़ा आराम करो, लेकिन अपने सब

0: आंखों से हार मत मानो।
1: और मुझे लगता है कि यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है।
0: कैसा फर्क?
1: आराम करना और हार मान लेना दोनों अलग चीजें हैं भाई।
0: बिल्कुल मरियम, अगर हम थक गए हैं तो हमें आराम कर लेना चाहिए। आखिर हम इंसान हैं, चार्जिंग केबल से थोड़ी चलते हैं।
1: लेकिन आराम के बाद वापस उठना भी तो जरूरी है, और वैसे भी इन दिनों सावन का मौसम है।
0: हाँ, चारों तरफ बारिश, ठंडी हवा और हरियाली।
1: सावन भी तो हमें यही याद दिलाता है कि बदलाव जरूरी है।
0: सच में, सूखी जमी पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो वही जमी आस फिर से हरी होने लगती है।
1: दोस्तों, सना का मतलब है कि अगर जिंदगी में अभी कुछ सूना लग रहा है,
0: तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो।
1: हो सकता है हमारी और आपकी जिंदगी में भी कोई नया सावन आने वाला हो। दोस्तों,
0: बस जरूरत है थोड़ी उम्मीद रखने की और कोशिश करते रहने की।
1: तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई ऐसी चीज है जहां आपको लग रहा है कि बस अब छोड़ देते हैं,
0: तो खुद से एक बार पूछिए, क्या मैं सच में हार गया हूं या बस थोड़ा थक गया हूं?
1: और जवाब है कि आप सिर्फ थके हैं,
0: तो थोड़ा आराम कीजिए
1: लेकिन फिर उठिए,
0: और आगे बढ़िए।
1: क्योंकि जिंदगी में हर रास्ता सीधा नहीं होता मेरे दोस्त।
0: कभी धूप मिलेगी, कभी बारिश,
1: कभी जीत मिलेगी, कभी हार।
0: लेकिन सफर तभी खूबसूरत बनेगा जब हम चलते रहेंगे।
1: तो चलिए, इस सावन एक वादा हम और आप खुद से करते हैं। दोस्तों, मुश्किलों से डर कर नहीं रुकेंगे,
0: थक कर थोड़ा ठहर सकते हैं,
1: लेकिन अपने सपनों से पीछे नहीं हटेंगे।
0: क्योंकि रुकना मना है।
1: इसी खूबसूरत सोच के साथ कुछ खास है आज में इतना ही।
0: लेकिन जैसे हमने कहा, रुकना मना है दोस्तों, तो प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे हमारे सेगमेंट कहानी के उस पार की ओर।
1: जिसमें आज आप सुनेंगे कहानी जहां आसमान खत्म नहीं होता, एपिसोड 2।
2: पिता के जाने के बाद घर की घड़ी पहले की तरह चलती रही। सुबह होती, रसोई में चाय की भाप उठती, आंगन में धूप उतरती और गली में दूध वाला रोज की तरह आवाज लगाता। सब कुछ वैसा ही था, बस घर में रहने वाले लोग बदल गए थे। माँ पहले से कम बोलती थी, कई बार रसोई में खड़ी खड़ी कहीं खो जाती थी और चूल्हे पर रखी चाय उबलकर बाहर आ जाती। मीरा उन्हें चुपचाप देखती और पहली बार समझ पाई कि दुख सिर्फ आंसू नहीं लाता, वो धीरे धीरे इंसान की आवाज भी अपने साथ ले जाता है। कुछ महीनों बाद उसने कॉलेज जाना शुरू किया। रोज बस की खिड़की वाली सीट पर बैठकर वो बाहर भागते पेड़ों को देखती और सोचती कि शायद समय भी ऐसे ही दौड़ रहा है, बस उसे पीछे छोड़कर। कॉलेज में सैकड़ों चेहरे थे, दोस्तियां थी, हंसी थी, लेकिन भीड़ हमेशा अपनापन नहीं देती। कई बार सबसे ज्यादा अकेलापन वही मिलता है जहां सबसे ज्यादा लोग होते हैं। एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा, तू इतनी चुप क्यों रहती है? मीरा मुस्कुरा कर बोली, बस आदत है। लेकिन सच ये था कि उसने बोलना कम नहीं किया था, उसने उम्मीद करना कम कर दिया था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी। वहां कोई उसके चेहरे पर छिपे दुख को पढ़ने की कोशिश नहीं करता था। उसने ये भी सीख लिया कि दुनिया किसी के दर्द के साथ ज्यादा दूर तक नहीं चलती। पहले लोग पूछते हैं, कैसी हो? फिर कहते हैं, अब तो ठीक हो ना? और कुछ समय बाद पूछना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ जख्म होते हैं जो कैलेंडर के पन्ने बदलने से भी नहीं। घर की जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे बदल रही थी। माँ देर रात तक सिलाई करती, मशीन की टक टक टक पूरे घर में गूंजती रहती। मीरा कई बार उन्हें आराम करती, लेकिन माँ हर बार मुस्कुराकर कह देती, बस थोड़ा सा काम और है। उस रात जब उसने माँ की उंगलियों पर सुई के छोटे छोटे निशान देखे, तो उसे लगा कि कुछ लोग अपने बच्चों का भविष्य किताबों में नहीं, अपनी हथेलियों से सिलते हैं। समय बीतता गया और कॉलेज का आखिरी साल भी आ गया। हर कोई अपने भविष्य की बातें कर रहा था, कोई एग्जाम की तैयारी में लगा था, कोई नौकरी के सपने देख रहा था, पर मीरा भी उनके बीच बैठी, हंसती, बातें करती, लेकिन उसके अंदर एक ही सवाल हर रात गूंजता था, अगर मैं सफल नहीं हो पाई तो। एक दिन उसने पिता की पुरानी डायरी फिर से खोली।

उसमें लिखा था, जिंदगी हमेशा तुम्हें वो नहीं देगी जिसके लिए तुमने मेहनत की है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से चलते रहे तो वो तुम्हें ऐसा इंसान जरूर बना देगी जिस पर तुम्हें खुद गर्व होगा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि पिता उसे जीतना नहीं, गिरकर फिर उठना सिखा रहे हैं। डिग्री पूरी होने के बाद उसने अपने सारे सर्टिफिकेट संभाले, शहर निकल पड़ी। हर ऑफिस में वही सवाल थे, एक्सपीरियंस है? अभी कोई जगह खाली नहीं, हम आपको फोन करेंगे। लेकिन वो फोन कभी आया ही नहीं। फिर भी हर सुबह वो उम्मीद को अपने साथ लेकर निकलती रही। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी के सबसे लंबे रास्ते वही होते हैं जहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होता। फिर भी इंसान चलता रहता है क्योंकि कई बार रुक जाना चलते रहने से ज्यादा दर्द देता है। बहुत जल्द उसे अपना घर, अपनी गलियां और अपनी पहचान पीछे छोड़कर एक ऐसे शहर जाना था जहां लाखों लोग रोज एक दूसरे के पास से गुजरते थे, लेकिन किसी के पास किसी का नाम याद रखने की फुर्सत ही नहीं थी। शायद वही उसकी जिंदगी उससे वो सब छीन लेने वाली थी जिसके सहारे वो अब तक चलती है।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट को,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: सुनते हो?
2: हाँ हाँ बोलो।
3: ओफो, तुम तो हर वक्त मुंह फुला के रखते हो, कभी प्यार से बात की है मुझसे? जाओ, मैं नहीं बताती।
2: चलो ठीक है, बताओ बताओ क्या बात है।
3: मैं बताऊंगी तो, लेकिन फिर मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी।
2: हाँ हाँ ठीक है, सोचूंगा।
3: वो मैं कह रही थी कि मुझे ना एक कुत्ता खरीदना है।
2: कुत्ता? तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है?
3: ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो हो मेरे आके पीछे दुम हिलाने वाला।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हमारी आज की थीम है सावन, और आप हमें भेज सकते हैं अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो मरियम, मैसेजेस की लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो चलें शुरू करें फिर।
5: बिल्कुल सना, मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों ने रुकना मना है वाली बात को काफी सीरियस ले लिया है ना।
4: बिल्कुल, तो ये पहला मैसेज हमें मिला है विलेज राहू अंगली से, और लिखने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान। ये लिखते हैं, सावन का महीना बरसात के लिए और भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। एक और सारी धरती हरी भरी दिखाई देती है, बादल बरसते हैं, दूसरी तरफ कांवड़ लेकर हर हर महादेव के जयकार करते हुए लोग गंगा जल लेकर घर जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और हमें भी बहुत सुंदर लगा कि आपने हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़कर इतना खूबसूरत सा मैसेज हमें भेजा।
5: और आगे हमें एक और मैसेज मिला है नगीना से, और भेजने वाली हैं मिसबा शमसी जी। ये कहती हैं, जब बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो बचपन की सारी यादें दिल में ताज़ा हो जाती हैं। वो बारिश में भीगना और मिट्टी में खेलना कितना अच्छा लगता था। सच में ये खुशबू हमें वापस वही प्यारे बचपन में ले जाती है।
4: अगला मैसेज हमें मिला है हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी सावन। ये लिखते हैं, सावन का महीना आते ही मन झूम उठता है, ठंडी ठंडी पड़ती हुई फुहारे और मंद मंद चलती हुई फुरवा हवाएं, बागों में नाचते हुए मोर, पपियों का शोर मन मोह लेता है। सावन के महीने में त्योहार ही त्योहार हैं, तीज हो, रक्षाबंधन हो, नाग पंचमी हो, शिवरात्रि हो, चारों तरफ त्योहारों का उल्लास ही रहता है।
5: तो दोस्तों, आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं और

0: साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ रहे हैं मैसेजेस के जरिए।
1: बिल्कुल मरियम, तो क्यों ना अब सुनवा दी जाए अपनी थीम सावन पर एक और खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल,

0: दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारा अगला सेगमेंट, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर रन अप पर विशेष कार्यक्रम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज आप सुनेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जहां आज हम बात करेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जो कि हम स्टूडियो में नहीं करने वाले हैं। बेसिकली स्टूडियो से जाएंगे बाहर और देखेंगे कि हमारे आज के युवा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को आखिर कितना पहचानते हैं। तो चले मरियम, अब इसी के साथ ले चलते हैं अपनी सवारी को लिसनर्स की ओर और जानते हैं कि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम।
1: मोहम्मद अबू सर।
0: अबू सर जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त आ रहा है, तो हम बेसिकली हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमारी यूथ से जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं?
1: नहीं,
0: कभी नाम भी नहीं सुना।
1: शायद आज फर्स्ट टाइम है।
0: फर्स्ट टाइम सुना है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम ही आपको बता देते हैं, बिरसा मुंडा जी जो थे, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था और वो एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे। उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को देखा। उस समय आदिवासी समाज को जमीन अधिकार और शोषण से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यही परेशानी आगे चलकर उन्हें संघर्ष की वजह बनी। बड़े होने पर बिरसा मुंडा जी ने अपने समाज के लोगों को जागरूक और एकजुट करना शुरू किया। तो ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता चला होगा, एटलीस्ट उनका नाम ही आपको पता चला हो।
1: जी, पता चला है।
0: तो हमें आपसे मिलकर और बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
2: तो दोस्तों, हमें हमारे लिसनर्स मिल चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनका नाम।
0: आपका नाम?
3: जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है।
2: अब्दुल्ला, तो आप बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं?
3: जी, बिरसा मुंडा जी के बारे में हमें पता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहात में गाँव में हुआ था, जो आज झारखण्ड में है। वे मुंडा आदिवासी समुदाय से थे और उन्होंने अपने आसपास के लोगों की काफी परेशानियों को करीब से देखा।
2: तो अब्दुल्ला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिरसा जी ने और क्या क्या किया था, आप हमारे दोस्तों को बताइए।
3: जी, बिरसा जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसमें से एक सबसे ज्यादा फेमस है उल गुलान आंदोलन। उल गुलान का अर्थ महान विद्रोह है। यह अंग्रेजी शासन और शोषण के खिलाफ आंदोलन था।
2: तो अब्दुल्ला जी, आपने हमसे बात की और हमारे दोस्तों को और हमें इतनी सारी जानकारी बताई, उसके लिए आपका शुक्रिया।
3: जी, थैंक यू वेरी मच।
2: तो सर, हम आ गए हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट्स के पास और जानते हैं उनसे उनका नाम।
0: आपका नाम?
4: फैजान।
2: तो फैजान, आप बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ जानते हैं?
4: बिरसा मुंडा के बारे में ज्यादा तो नहीं सुना है, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ।
2: थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं आप, वही हमें बता दीजिए।
4: वो एक महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने भारत के लिए योगदान दिया है।
2: बहुत अच्छे फैजान, आपने हमें बताया कि वो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने योगदान दिया है, लेकिन वो क्या योगदान दिया है वो आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो बिरसा मुंडा जी क्रांतिकारी थे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना। उन्होंने लोगों को जागरूक करना और एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने अपने समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज भी उठाई। धीरे धीरे बिरसा मुंडा जी लोगों के बीच एक मजबूत नेता के रूप में सामने आए और बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ने लगे। तो आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका शुक्रिया।
4: थैंक यू।

0: जो था 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने की थी?
1: जिसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। और आइए जान लेते हैं सही जवाब देने वाले सभी लिसनर्स के नाम। हसमत अब्बासी, फागुराम यादव, सतेंद्र चौंसलिया, इरशाद अहमद, गजानन येले, मोहम्मद सईद अब्बासी, मुकेश कश्यप, प्रवीण चौहान, जाकिर मंसूरी, संजय डिग्निया, दिग्दर्शन गौड़, कमल सिंह, धीरज भाई रबाड़ी, सताशिव थौरात, ताज अंसारी, राजेश वर्मा, दीपेश वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी, उमेश कुमार, हीरामणि वर्मा, शमसुल कमर, राजकुमार रेवाड़, गंगा सिंह रावत, नवाबुद्दीन, सईद ओवैस, सुदर्शन शाह, अनिल विनोचा, पुरुषोत्तम शर्मा, भागवत चौबे लाडला जी, राहुल पाल और जॉन डिकैस्ट्रो।
0: तो दोस्तों, हमारा मैसेजेस का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और हमें मैसेजेस भी भेज रहे हैं लगातार। तो सना, हमें ये जो अगला मैसेज मिला है, ये मिला है ग्राम भोपुर से, और भेजने वाले हैं मयंक चौहान। ये लिखते हैं कि सावन का महीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे जो घर में खुशियाँ आती हैं, खुशियों से जो हमारा घर महक जाता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने लिखी। इसी के साथ अगला मैसेज हमें मिला है नगीना से, और लिखने वाले हैं अनिल विनोचा जी। ये लिखते हैं, सच आज तो टॉपिक बिल्कुल लाइव है, मेरा मतलब ये पूरा महीना चलेगा, कुछ लिख रहा हूँ। सावन सब जब से शुरू हुआ है बरस ही रहा है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, सारी सृष्टि नई नवेली दुल्हन लग रही है, मन इस अनुभूति से प्रसन्न है, शिवमय माहौल है, बम बम के जयकार गूंज रहे हैं, हरियाली तीज भी आने वाली है, घेवर का आनंद आ रहा है, प्यासी धरती का सीना जल से भरा पड़ा है, हाँ कहीं बाढ़ है, परेशानी भी है, चाय पकौड़ी का आनंद भी आ रहा है, सावन का महीना दिल को स्वर्ग की अनुभूति करा रहा है, किसी का घर भी टपक रहा है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है अनिल विनोचा जी। वैसे आपकी बात से बस मुझे एक ही चीज जो याद आ रही है इस टाइम, वो है घेवर। क्या कहती हो मरियम?
0: बिल्कुल सना, घेवर के नाम से ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। मैं चाह रही हूँ कि मुझे अभी मिल जाए बस खाने के लिए।
1: ठीक है, तो तुमने कहा और ऐसा ना हो तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हम आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत, आप सुनिए और मैं और मरियम चले घेवर का आनंद लेने।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें मैसेजेस के जरिए बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें खत भी भेज सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी मरियम जैदी
0: और सना परवीन को दीजिए कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: पासवान ने ये बात कही।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। किसान श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और प्रमोद भैया क्या हो रहा है?
1: अरे भैया सब ठीक ठाक है। देखो बारिश हो रही है अब तो।
0: भाई देखो जो रिमझिम बारिश हो रही ना
1: हाँ
0: भाई, इसने तो बड़ा आनंद सा कर रखा।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। सावन का महीना
0: हाँ
1: और ये रिमझिम रिमझिम होती बरसात, भाई देखो अब तो बड़ा आनंद आ रहा है और खेतों में भी फसल बहुत बढ़िया खड़ी।
0: देखो भैया ऐसा कह दे कर रहे हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: के माँ के परसे का
1: आहा
0: और अंबर के बरसे का, इसका
1: ओहो
0: कोई तोड़ नहीं है।
1: सही कह रहे हो
0: तो
1: भैया।
0: भैया ये जो बारिश होती है इससे फसल हाथों खिंच जाए, ऊपर बहुत अच्छी बढ़वार करे। तो भाई बारिश का पड़ना तो एक शुभ लक्षण माना जाता
1: बहुत
0: है
1: बढ़िया।
0: किसानों के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए।
1: जी जी जी
0: और भाई
1: जी
0: देखो सावन के महीने में बौछार ना हो, बूंदाबांदी ना हो,
1: जी
0: रिमझिम बारिश ना हो तो अच्छा भी ना
1: जी
0: लगता।
1: सही कह रहे हो भैया। देखो हर मौसम का अपना एक अलग ही मजा होए करे,
0: बिल्कुल।
1: और वो भैया देखो इस समय हम सब लोग जो है उसका आनंद उठा ही रहे हैं। और भाई देखो बातचीत तो हम आज के कार्यक्रम में करेंगे,
0: ठीक।
1: क्योंकि आज देखो वैसे मंगलवार है।
0: अरे बिल्कुल, मंगलवार से याद आया भाई, प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ से प्रसारित होती है बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: और आज भी भैया इस पाठशाला का पाठ लेकर हम आए, किसान भाइयों का मनोरंजन भी कराएंगे, बातचीत भी बहुत सारी उनसे करेंगे। पर भैया पहले आओ सुनो ले हैं आज का पाठ।
0: ठीक है भैया।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी
0: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।

0: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान कमान बासमती, देश की शान बासमती,
2: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
3: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस रेडियो कृषि पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
4: और मैं हूं भैया आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। और भैया देखो झुमरू, आज फिर हम इस पाठशाला को लेकर आ गए हैं। और भाई इस पाठशाला के जरिए हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई जो हैं एक गुणवत्ता युक्त भैया बासमती का उत्पादन करें और उसका भैया निर्यात करके अच्छा धन कमाएं।
3: भाई देखो बासमती की हमारी जो फसल है भैया वो खेत में खड़ी है।
4: हाँ।
3: और हमारे किसान भाई क्या काम कर रहे हैं भैया, वो इस समय एक तो जल स्तर बना हो
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि अगर खेत में सही जल स्तर होगा तो भैया खेत में घास फूस नहीं होने के हैं।
4: बिल्कुल।
3: साथ ही भैया हमारे किसान भाई जो हो पाटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि भैया खेत में पाटा लगा रहे हैं पानी भर का।
4: हाँ।
3: जिससे कि भैया एक तो फुटाव अच्छा हो, साथ ही भैया जो कीट है जो हानिकारक कीटों के अंडे हैं या वो पत्ती लपेटक कीट है वो पानी में गिर कर नष्ट हो सके।
4: बिल्कुल सही बात। इसके अलावा भैया हमारे किसान भाई यू भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई अगर किसी वजह से फिर भी घास हो गई है तो भैया उसके जो है मैन्युअली भैया उसे निकाल रहे हैं, यानी कि खुरपी से या हाथ से निकाल रहे हैं। और भैया जो हमारा उर्वरक प्रबंधन है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम इस समय अपने पूरी फसल को अच्छा करने में लगे हुए हैं।
3: तो मैं देखो बासमती धान की फसल में भैया कोई कीट ना लगा।
4: हाँ।
3: भाई इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।
4: बिल्कुल।
3: और हम देखते हैं कि इस टाइम एक तो भैया पत्ती लपेटक कीट लगता है, साथ ही भैया तना छेदक कीट ये भी भैया हमारी फसल में नुकसान पहुंचा देता है।
4: सही कह रहे हैं।
3: और इसके बाद भैया और भी कीट आगे हमारी फसल में लगेंगे। तो भाई बासमती धान में किस तरीके से हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं।
4: हाँ।
3: और वो भी बिना दवा के बिना रसायन के, यानी कि जैविक कीट नियंत्रण हम कैसा कर सके। हाँ।
4: बिल्कुल।
3: तो भैया आज इसी बारे में जानकारी है।
4: बिल्कुल। और भैया देखो इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के बीच में है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो कि कीट वैज्ञानिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में
3: जी।
4: और भैया आपके बराबर में बैठे हैं, कहो तो बातचीत का सिलसिला शुरू कर दो।
3: बिल्कुल भैया, तो जब ऐसी बात है तो आओ शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत।
4: ठीक है भैया।
3: किसान भाइयों बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और बासमती धान की फसल हमारे खेत में खड़ी है और काफी अच्छी अवस्था में है। इस समय धान की फसल में फुटाव हो रहा है, कल्ले फूट रहे हैं। तो किसान भाइयों हम देखते हैं कि हमारी धान की फसल में कुछ कीट नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को प्रभावित करते हैं, तो हम किस तरीके से अपनी बासमती धान की फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं और हमारा फसल उत्पादन प्रभावित न हो ये व्यवस्था हम कर सकते हैं। और साथ ही हमें रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है, रसायन मुक्त बासमती धान का उत्पादन करना है और इसके लिए हमें जैविक तरीकों से कीट नियंत्रण करना है। और जैविक तरीकों से बासमती धान में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो कि कीट वैज्ञानिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे किसान भाई हमको सुन पा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
3: देखिए डॉक्टर साहब हमारी फसल इस समय खड़ी हुई है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस समय जैसे कि हमारी बासमती धान की फसल आरंभिक अवस्था में है तो कौन कौन से कीट मुख्यतः नुकसान पहुंचाते हैं डॉक्टर साहब?
5: जी बिल्कुल, जरूरी है कि इस समय हमारे खेतों में धान की फसल खड़ी हुई है
3: जी,
5: और कहीं कहीं तो बाली निकलने के स्टेज में है और कहीं कहीं बाली निकलने के अभी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर प्रमुखतः दो प्रकार के कीट है जो अपना असर दिखाने वाले हैं, जिसमें प्रथमतः हम देखने में पत्ती मोड़क कीट। तो पत्ती मोड़ करके लार्वी उसके अंदर बैठ जाती है और पूरी पत्तियों का धीरे धीरे धीरे धीरे करके खुरच खुरच के जो हरापन है वो खाके खत्म कर देती है। पूरी फसल में जब उसका आक्रमण ज्यादा होता है तो पत्तियां सफेद होती हैं।
3: जी बिल्कुल।
5: हमारे किसान भाई यहाँ तुरंत क्या करते हैं कि दवाई की दुकान पे जाएंगे, दवाई लेंगे और डाल देंगे, लेकिन ये हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि कीट ने पत्ती मोड़ करके अपना जाला बना के उसमें बैठा हुआ है जो लार्वी है सुंडी है जो आप देखते हैं, लेकिन फिर उसमें जब दवाई डालते हैं तो दवाई तो उस पर कीट पर नहीं लगती है। जब नहीं लगती है तो कीट नहीं मरता है
3: जी।
5: इसी तरह से हमारे जो किसान है तना छेदक जो द्वितीय कीट है, तना छेदक है और तने में छेद करता है और जब धीरे से बाली को खींचते हैं और थोड़ा सा सूंघते हैं तो एक दुर्गंध निकलती है
3: जी।
5: दो कीट प्रमुख हैं इस अवस्था में। ये जो पत्ती मोड़क है अभी आ रहा है
3: जी,
5: और जो तना छेदक है एक तो अभी आ चुका है, आ रहा है, आने वाला है क्योंकि समय के हिसाब से,

0: फसल की वैरायटी, जैसे अगेती है, मध्यम है, लेट है,
1: जी,
0: उसके बाद जब धान में बाली निकल आती है उस समय इस कीट का आक्रमण होता है।
1: अच्छा,
0: अभी मैंने जैसे आपको बता रहा था कि कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें हमारे किसान भाई, क्योंकि कीटनाशक के प्रभाव से हमारा स्वास्थ्य है, हमारी मृदा का स्वास्थ्य है, वातावरण में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, तो इसे हमें आप दूरी रहना चाहिए। तो आपका जो प्रमुखता प्रश्न है कि हमें जैविक से कैसे इसका प्रबंधन किया जाए।
1: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है और हमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैविक तरीकों का अपनाना है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो जैविक तरीके, वो काम कौन कौन से हैं जिनको करके हमारे किसान भाई अपनी बासमती धान की फसल में इन कीटों से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब,
0: जैसे कि अब हम जैविक की बात करते हैं
1: जी,
0: तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में एक जीव दूसरे जीव को खा के अपना जीवन चक्र चलता है, जैसे कि आपको पता है एक दूसरा एक दूसरे पर निर्भर है
1: जी।
0: तो हमारा सबसे पहले जो पत्ती मोड़क कीट हो या तना छेदक कीट हो, अब जो हानिकारक कीट हैं वो सब अंडे देते हैं और अंडे फूटेंगे तो सुंडी बनेगी,
1: बिल्कुल,
0: और सुंडी तने को छेद करके खाएगी या पत्ती को मोड़ के खाएगी। जिस कीट ने अंडे दे दिए तो हमें उसी समय हमें ध्यान रखना है कि आप अपने खेत को मॉनिटरिंग करें।
1: अच्छा,
0: मॉनिटरिंग करेंगे तो शाम को छुपते समय, सूरज को छुपते समय और उगते समय आपके धान के खेत में पत्ती पर, चोटी पर एक पीले रंग की तितली बैठी होगी, छोटी, जिसे मोत कहते हैं।
1: अच्छा,
0: वो धान का तना छेदक है। इसी तरह से एक तितली होती है, छोटी तितली तो उड़ती है शाम के समय काफी, उस पर एक बैंड लगे होते हैं, ये पहचान है कीड़े की।
1: अच्छा,
0: अगर ये दिख जाए तो समझ लो कि अंडे दे चुकी है। अब अंडे देने दे चुकी हैं तो अब ऐसे हमें कोई परजीवी डालने चाहिए जो अंडे को परजीवित करे, उसके लिए है अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा जो अंड परजीवी है, इसको हम ट्राइको कार्ड के रूप में सभी जगह उपलब्ध है।
1: अच्छा,
0: अब जैसे कि उपलब्धता की बात करते हैं तो जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला
1: जी,
0: कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं पौधों के विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से आसानी से उपलब्ध है
1: जी,
0: जिसकी कीमत 45 रुपया है। एक एकड़ में दो लगाने होते हैं, 90 रुपए का खर्चा है, 3 बार लगाएंगे हर 20 से 25 दिन के अंतराल पर, तो जो जब जब कीटों की जो अवस्था है वो उसको परजीवित कर करके उसको नष्ट कर देंगे। एक परजीवी ट्राइकोग्रामा ज्यादातर भ्रामी है लोगों की कि वो अंडों को मार के खा जाता है, अंडों को खा जाता है, अंडों को नहीं खाता है। देखो, सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको, एक अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा एक से लेके 10 तक अंडों को परजीवित करता है।
1: अच्छा,
0: और एक परजीवित अंडे से, एक परजीवित अंडे से 2 से 19 तक फिर वो ट्राइकोग्रामा निकलते हैं।
1: अच्छा, ऐसे ही निकलते हैं
0: खेत में, इसी तरह से उनकी संख्या बढ़ जाती है अगर हम उसको दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, तो इन परजीवियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। तो ये हो गया एक। दूसरा, आपके जो मित्र कीट हैं और भी हैं, अपेंटेलिस है
1: जी,
0: इसकी संख्या काफी है। एक और है जो अंड और लार्वी दोनों को परजीवित करती है, किलोनिस ब्लैक बर्नी।
1: अच्छा,
0: इसके बाद कुछ और भी हैं जो मित्र हमारे पास, स्पाइडर हैं, जो मकड़ी हैं, जो आपके तना छेदक की जो लार्वी हो उसके ऊपर जाल बना लेती हैं, उसके एडल्ट तक पे जाल बना लेती हैं, उसको मार के काट के खा जाती हैं। इसी तरह से अनेकों अनेक प्रकार के जो कीट हैं आपके धान की फसल को नियंत्रित करते हैं कीड़ों से।
1: बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि जो ट्राइकोग्रामा कार्ड हमारे भाइयों को लगाना है और 45 रुपए आपने इसकी कीमत बताई है और एक एकड़ में दो ये हमें कार्ड लगाने हैं। अब बात ये आती है डॉक्टर साहब कि ये कार्ड जब हमें लाने हैं तो किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है, किस तरीके से हमें लगाना है और किस समय लगाना है? डॉक्टर साहब,
0: बिल्कुल सही है आपका प्रश्न कि आपको पहले, ज्यादातर लोग क्योंकि हम 20-25 साल से इसको बना रहे हैं तो पहले ये होता था कि इसको एक आइस बॉक्स के थर्मोकोल के डब्बे में आपको लाना है ना, फिर खेत में छोड़ना है। अब इसमें हमने फिर रिसर्च किया।
1: अच्छा,
0: रिसर्च के दौरान पाया कि अगर हम आइस के डब्बे में या बॉक्स में लाते हैं फिर खेत में छोड़ते हैं तो खेत का एनवायरमेंट और आइस बॉक्स का एनवायरमेंट तो वो थोड़ा सा काम करने में, काम तो करता

0: इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अब आइस बॉक्स ले जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, या अगर हमें उसे रखना है तो मतलब फ्रिज में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम जो है इसका उपयोग करते हैं, वो जो हानिकारक कीटों के अंडों को परजीवित कर देते हैं। अब बात यह आती है कि इसके अलावा क्या कोई और भी ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर हम बासमती धान में कीट नियंत्रण कर सकते हैं? डॉक्टर साहब,
0: हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है कि हम जैविक की बात कर रहे हैं
1: जी,
0: तो जैविक को ही आगे बढ़ाते हैं। जहां पर की लार्वी है, चाहे तो वो पत्ती मोड़क की हो, चाहे वो तना छेदक की लार्वी हो, क्योंकि पहले तो पत्ती पंडे दी है ना, तो अंडा फूटेगा तो सुंडी तो बनेगी।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताना की कोशिश करता हूँ कि एक फंगस है ब्यूबेरिया बेसियाना और मेटा रिजियम, ये फंगस है दोनों, और इनका नाम क्या है, असली नाम एंटमोपैथोजेनिक फंगस, यानी कीटों को मारने वाले फंगस। ये सिर्फ और सिर्फ न तो पत्ती पर पनपते हैं, न किसी इंसान पर पनपते हैं, ये तो सिर्फ कीड़ों के जहां शरीर पर लग गया वहीं पर अपना ये अपनी कॉलोनी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से अगर छिड़काव करते हैं फंगस का तो ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारे किसान भाई यों के लिए बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा
1: जी,
0: कि अगर जैसे मन में रहता है ना शंका कि नहीं कीटनाशक नहीं डालेंगे तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, नीम का तेल,
1: अच्छा
0: नीम ऑयल
1: जी,
0: नीम मेशिडीन, ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। आपको देखा है ना, नीम की पत्तियां खाते हैं, दांतुन करते हैं, अगर उसी का जो तत्व है जो एजरडिक्टिन है निवोली में मिलता है, नीम के तेल में जो निवोली से नीम का तेल बनता है
1: जी,
0: ये कीटनाशक है। और अगर आपने स्प्रे कर दिया इसका, स्प्रे में क्या होता है कि इस जो कीटनाशक है में गुण तो बहुत हैं, पर तीन प्रमुख गुण हैं। अगर छोटी सुंडी ने नीम के तेल के छिड़काव जो पत्ती खा ली, तना खा लिया, तो वो मर जाएगा
1: जी।
0: थोड़ी बड़ी और लार्वी है तो उसे टेस्ट खराब लगेगा तो भाग जाएगी, और बड़ी जैसे बड़ी लार्वी अरे खा लेते हैं कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग भी करते हैं ना
1: जी,
0: तो बोले चलो खा लेते हैं कोई बात नहीं है, शुगर का रसगुल्ले खा लेगा, अगर यहाँ पर वो उस बड़ी सुंडी खा लेती है तो आप मान लीजिए उसके अंदर बांझपन आ जाता है। तो देखिए ये कीटनाशक में तीन गुण है जो हमारे निमिशीडेन है जी।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमें इन सब बात को ध्यान में रखना है। और देखिए डॉक्टर साहब, बासमती धान का हमें सही उत्पादन लेना है, और सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमें रसायन मुक्त उत्पादन लेना है, और चाहे रोगों की बात हो चाहे कीटों की बात हो, तो इसी तरीके से हमें जैविक विधि से इन कीटों को नियंत्रित करना है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे बहन भाइयों को और क्या राय मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से और क्या उपाय अपनाकर हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि कहते हैं देखभाल
1: जी,
0: देखिए फसल है, प्रारंभिक से लेकर के अंत तक फसल की देखभाल, ये भी बच्चा ही है ना, इसकी देखभाल जितनी अच्छी आप करेंगे उतने अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी धान की फसल में लगाई है तो कीड़े बीमारी आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: कीड़े कब आएंगे, बीमारी कब आएंगे, ये आपको पता है। अगर आपके खेत में कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, तो फिर दवाई डालने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए कीड़ों की जानकारी रखो, बीमारी की जानकारी रखो, फसल की जानकारी रखो, और आप इसको पहले ही इंतजाम करके रखो, आपकी फसल में कीड़े बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते चलते मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जमीन से कीड़ा निकलता है
1: जी,
0: मादा गंध छोड़ती है, नर वहां के उसके पास आता है, तो हमें फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए। आपने मैंने अभी बताया कि मादा गंध छोड़ती है, नर उसके पास आता है, काश आपने एक पीले ट्रैप जगह जगह लगा दिए, वो मादा से मिलने आएगा नर, रास्ते में चिपक जाएगा पीले पदार्थ से, तो कितना अच्छा मैनेजमेंट होगा। दवाई डालने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले निकलते हैं दो कीड़े, फिर दो से होते हैं 10 कीड़े, और 10 से होते हैं 50 कीड़े। इसीलिए आपको 2, 5, और 10 को रोकना है, आपकी फसल में कोई कीड़े बीमारी की समस्या नहीं होगी।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से किसान भाइयों, हमें अपनी बासमती धान की फसल की देखभाल करनी है, अपना फसल प्रबंधन करना है, और जैविक विधि से जैविक तरीके से हमें कीट नियंत्रण करना है, वो चाहे पत्ती मोड़क कीट हो, तना छेदक कीट हो, या फिर हमारे दूसरे कीट हो, हमें हर कीटों का नियंत्रण जैविक तरीके से करना है। उसमें चाहे फंगस की बात हो या जो हमारे ट्राइकोग्रामा कार्ड है, हमें कार्ड लगाकर हम नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब ने नीम ऑयल के बारे में बताया है, नीम के तेल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, और इन सब तरीकों को अपनाकर हमारे किसान भाई बिना

0: रसायन के अपनी बासमती धान की फसल में कीट नियंत्रण कर सकते हैं और रसायन मुक्त बासमती धान का उत्पादन ले सकते हैं, ताकि विदेशों में भेजकर हम बासमती धान को, बासमती चावल को विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को जैविक विधि से कीट नियंत्रण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बासमती धान में जैविक विधि से कीट नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो कि कीट वैज्ञानिक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में
0: जी।
1: और भैया आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
0: तो मैं देखो, आपने बातचीत सुनी है और भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया किस तरीके से हम बगैर रसायन के, बगैर दवा के भैया अपनी बासमती की फसलों में कीट नियंत्रण करना है। और सबसे पहली बात डॉक्टर साहब ने भी बताई कि भाई जो ट्राइकोग्रामा कार्ड है भैया 45 रुपए का एक आता है,
1: बिल्कुल,
0: और अगर हम 3-4 ये कार्ड एक एकड़ में लगा देंगे
1: जी,
0: तो भैया हमारी फसलों में कोई भी जो कीट नहीं लगने का, क्योंकि जो उसमें से कीट निकलते हैं,
1: हाँ,
0: यानी जो भैया हमारा वो ट्राइकोग्रामा कार्ड है उसमें जो भैया वो कीट निकलता है वो क्या काम करता है कि जो तना छेदक कीट के अंडे हैं
1: हाँ,
0: उन्हों वो परसोषित करता है।
1: अच्छा,
0: और परसोषित करने के बाद में होता क्या है कि उन अंडों में से उन जैसे ही ट्राइकोग्रामा वो निकलते हैं कीट,
1: ठीक,
0: और फिर भैया वो उन जैसे ही हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: यानी कहने का मतलब ये हो कि फिर हानिकारक कीट जो है नहीं पनपते हैं, नहीं जन्म लेते हैं। और इसके अलावा देखो, उन्होंने फेरोमोन ट्रैप बताया है, साथ ही भैया देखो नीम का तेल भी इस्तेमाल करने की बात बताई है। तो
1: बिल्कुल,
0: भाई बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हमारे किसान भाई इन जैविक तरीकों को अपनाकर अपनी फसलों में कीट नियंत्रण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक बात देखो जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, वो ये लगी कि भाई जब सबके पास जो है
0: हाँ
1: यूरिया के या भैया डीएपी के पीले कट्टे रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उस कट्टे पर ग्रीस लगा के वो जगह जगह बांध देंगे तो भैया जो हानिकारक कीट हैं वो पीले रंग पर आकर्षित होते हैं
0: जी
1: और वो जो भी भैया हमारा ग्रीस होगा
0: हाँ
1: उसको चिपक जाएंगे। तो बिना किसी दवाई के यो भी एक नियंत्रण का अच्छा तरीका बताया डॉक्टर साहब ने।
0: तो इस तरीके से भी हम हानिकारक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखो भाई ये जैविक तरीके जो हैं इन्हें अपनाने का टाइम आ गया। अगर हम देखिए रासायनिक नियंत्रण करते हैं तो भैया उसमें जो है दवाई के अंश फिर भी चावल में आ जाते हैं
0: बिल्कुल।
1: और ये भैया फिर हमारी जब चावल विदेश को जाता है या यहाँ भी बेचते हैं तो उसमें उसके अंश आ जाते हैं और फिर वो हमारा जो है फेल हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जैविक नियंत्रण ही करना चाहिए।
0: हाँ। और मैं देखो ट्राइकोग्रामा कार्ड के बारे में डॉक्टर साहब ने एक और खास बात बताई है,
1: हाँ हाँ
0: वो ये हो कि भैया पहले तो उन्हें लाने के लिए आइस बॉक्स की जरूरत होती
1: बिल्कुल,
0: और फ्रिज में रखने पड़े थे। अब तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमने बिल्कुल माहौल के हिसाब से तैयार करे हैं,
1: अच्छा,
0: यानी कि जैसा मौसम है उसी मौसम में हम ला सकते हैं, उसी मौसम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें फ्रिज में रखते थे या आइस बॉक्स में लाते थे तो फिर वो हमारे जो सामान्य तापमान उसमें वो कारगर नहीं होते थे।
1: अच्छा,
0: तो अब आइस बॉक्स ले जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई विशेष हम तरीका अपनाने की भी जरूरत नहीं है, जैसे माहौल में हम हैं वैसे भैया हम ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, तो इसी प्रकार से भैया बासमती धान से अधिक उत्पादन लेने के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए, अपनी फसल को अच्छी बनाने के लिए, अच्छे निर्यात के लिए तैयार करने के लिए सुनते रहिए हर मंगलवार को
0: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। अरे मास्टर जी।
1: हाँ भैया।
0: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
1: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
0: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
1: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
0: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
2: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
4: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ। तो किसान भाइयों ने भैया बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला सुनी।
5: बिल्कुल।
1: और प्रमोद भैया देखो आज जो है बहुत अच्छी जानकारी मिली।
5: हाँ भाई, आज की जानकारी बहुत अच्छी थी। किसान भाइयों ने जाना कि वो बासमती धान में जैविक विधि से किस तरीके से कीटों का नियंत्रण कर सके।
1: बिल्कुल, देखो भाई बात यो है कि हम किसान भाइयों के बारे में ये कहना चाहेंगे, हमें पता होना चाहिए
5: जी
1: कि 2-3 अवस्थाएं रहती हैं जब भैया कीट ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं, तो उन अवस्थाओं पर अपने खेतों की बढ़िया निगरानी रखें, अच्छी देखभाल रखेंगे तो भैया हमारी बासमती अच्छी हो जाएगी।
5: सही कह रहे हो भैया। देखो निगरानी तो हमें हर

0: समय अपनी फसल की करनी पड़ती है। और भाई अगर हम अच्छे तरीके से निगरानी करते रहेंगे, सुबह शाम खेत पे जाते रहेंगे, तो हमें ये पता चलता रहेगा खेत में खड़ी हुई फसल जो है वो किस अवस्था में है, और भैया क्या परिस्थितियां उस समय हो रही हैं, कोई कीट रोग तो नहीं लग रहा। देखो जाने से ही पता लगेगा रहे।
1: सही कह रहे हैं। देखो भाई, ये तो बात कुछ बासमती की हुई, बताई लंबी बातचीत हो गई।
0: हाँ
1: अब कुछ अपने सामान्य जनजीवन की बात कर लेते हैं।
0: हाँ भैया।
1: देखो, बरसात चल रही है और बरसात में भैया जरा सी गंदगी भी जो है वो घातक हो जाती
0: अरे
1: है।
0: भैया इस टाइम पे बहुत मक्खी मच्छर ऐसे फैल रहे हैं, और भैया गंदगी इतनी फैल रहा है, बीमारियां संक्रामक रोग जिन्हें कहते हैं इतने फैल जाए कि परेशानी हो जाए।
1: बिल्कुल, देखो भाई, ये मनुष्य को ही नहीं, हमारे जो पशु हैं उन्हें भी नुकसान देते हैं।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: हमें चाहिए यो कि हर हालत में साफ सफाई बनाए रखें,
0: बिल्कुल।
1: चाहे भैया हमारी पशुशाला हो, चाहे हमारा घर हो, आसपास की नालियां हो, सड़क हो, सब जगह अगर साफ सफाई रखेंगे तो साफ सफाई पे हानिकारक कीट पैदा ही नहीं होने के।
0: सही कह रहे हो भैया। ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि जैसे हम अपने घरों की सफाई कर रहे हैं वैसे ही घरों के बाहर की साफ सफाई कर लें,
1: बिल्कुल।
0: नालियों में पानी ना इकट्ठा होने दें, अगर कहीं घास कोई उग भी आई तो भैया उसे टाइम टाइम पर उखाड़ते रहना।
1: बिल्कुल। हालांकि देखिए, अब हमारे ऐसे किसान भाइयों की बात हो गई कि वो साफ सफाई में बहुत ध्यान रखें,
0: हाँ बिल्कुल भैया।
1: लेकिन भैया फिर भी बार बार कहने की जरूरत पड़ती है। देखो, इन दिनों में अगर हमारे पशुशाला में
0: जी
1: कहीं को कोई पानी हो गया या नमी हो गई तो होगा क्या, वहां पर जूं हैं, कलीली हैं, पिस्सू हैं, ये सब पैदा हो जाएंगे।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ये पशुओं को ही नहीं भैया, हमें भी नुकसान देंगे।
0: हाँ भैया
1: साथ साथ भैया फफूंद हो जाती है पैदा, उसमें
0: हाँ
1: और दुनिया भर के जीवाणु विषाणु पैदा
0: जी
1: हो गए,
0: जी जी
1: तो एक नहीं सौयो बीमारी होगी, जड़ पैदा हो जाएगी। तो सबका इलाज यही है कि भैया साफ सफाई रखो।
0: हाँ पशुशाला को बहुत अच्छे तरीके से भैया हम टाइम टाइम पर धोते रहें,
1: हाँ
0: उसकी दीवारों की भी सफाई करते रहें, पशुओं की भी साफ सफाई का ध्यान रखें। और भैया देखो विशेष रूप से बात यू है कि इस मौसम में हमें अपने खान पीन का भी ध्यान रखने की जरूरत पड़े करे।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखो, खान पीन में भी सफाई का ध्यान रखना। जैसे भैया हम
0: हाँ
1: अपने पशुओं को देखो चारा डाल रहे हैं, तो जो हमारे जिस बर्तन में हम चारा खिला रहे हैं उसके कोनों में देखो नमी की वजह से कोई कीड़े वेड़े पैदा तो नहीं हो
0: जी
1: गए,
0: जी
1: बढ़िया करके सफाई करके
0: हाँ
1: उसे जो है साफ कर देना चाहिए। और भैया हमेशा ताजा गोद खिलाना चाहिए। अगर हम देखो सुबह को भी, सुबह ला रहे हैं शाम को ला रहे हैं, इकट्ठा
0: जी
1: गोद लाते हैं ज्यादातर
0: हाँ
1: किसान
0: हाँ
1: भाई,
0: हाँ
1: तो कोई बात नहीं, ले आओ गड्डी रखी रहने दो,
0: हाँ
1: जब हमें भैया खिलाना हो तभी कुट्टी काट ली। आजकल तो बिजली हटे
0: बिल्कुल
1: हमारी,
0: भैया
1: या भैया हमारे पास इंजन होगा उससे कुट्टी काट ली। तो भैया अगर ऐसा चारा खिलाओगे तो हमारा पशु भी बढ़िया रहेगा और साफ सफाई भी बनी रहेगी।
0: सही बात है भाई। देखो इन सब बातों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भाई एक बात और है,
1: वो क्या?
0: इस मौसम में अगर हम शाम के टाइम पर धुआं कर दें तो भैया देखो जो जिन मक्खी मच्छरों की, जिन परजीवियों की, कलिलियों की हम बात कर रहे हैं भाई, वो हमारे पशु के धोरे आने के नहीं है। और धुआं भी अगर हम नीम की पत्तियों का कर दें तो बहुत ही बढ़िया है।
1: बिल्कुल सही बात कही। देखो भाई, खास तौर से डांसी मक्खी जो हो, बहुत जोर से जो काटता हो,
0: हाँ हाँ
1: वो शाम के समय में जो ज्यादा अटैक करती
0: हाँ
1: है,
0: हाँ हाँ
1: तो अगर हम नीम का धुआं कर देंगे, या आजकल पुराल हमारे पास पड़ी होगी
0: बतेरी।
1: तो अगर वो नमी है तो और बढ़िया काम करेगी। सुखी पत्ती जलाई, ऊपर से हो या पुराल लग दी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: धुआं इतना कड़ा सा हो जाएगा कि मक्खी धोरे नहीं आने की
0: बिल्कुल ठीक
1: और
0: बात
1: मच्छर
0: है।
1: भी भाग जाएंगे।
0: और भैया पशु की लाग से मारे धोरे भी ना आने के।
1: सही बात है। तो देखो, यो काम को अगर सहरे गांव वाले कर दें और अच्छा है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: भैया हमारा कार्यक्रम के जरिए यो समझाना रहता है
0: जी
1: कि कोई भी काम केवल एक के करने से नहीं होने
0: ना
1: का।
0: ना ना भाई सामूहिक रूप से अगर कोई भी काम हम करेंगे तो
1: हाँ
0: देखो उसका मजा कुछ और ही आए करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देखो, बातचीत बतेरी हो गई, कहो तो सुन
0: हाँ
1: लेते हैं जरा से संदेश।
0: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: तो भाइयों ने भैया संदेश सुने और देखो कुछ बात और कर लेते हैं।
0: भैया बात क्या है, एक बात बताओ। देखो अभी हम कह रहे थे कि भैया अगर हमें ठीक रहना है तो साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारी खेती बाड़ी भी ठीक रहेगी, हमारे पशु भी ठीक रहेंगे। अब
1: बिल्कुल
0: देखो यू तो हो गए हमारे प्रयास,
1: ठीक।
0: भैया हमारे किसान भाइयों का विकास होता रहे इसके लिए हमारी सरकार भी तो बहुत सारे प्रयास कर रही।
1: देखो भाई, किसी भी देश की जो सरकार है

0: वो अगर जागरूक होगी
1: जी
0: वो भैया बढ़िया योजना लगेगी तो उस देश का विकास तो संभव ही हो
1: सही कह रहे
0: जाना।
1: हो, बिल्कुल ठीक
0: तो
1: बात।
0: देखिए हमारे जो सरकार है
1: हाँ हाँ
0: वो भैया
1: हाँ
0: बहुत अच्छे काम कर रही है, किसानों के लिए बहुत सारी योजना ला रही है। उनमें से एक योजना का अगर आज मैं जिक्र करूं
1: हाँ,
0: तो वो है भैया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
1: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
0: बिल्कुल
1: अरे भैया ये
0: देखो,
1: योजना क्या है?
0: हाँ इसके बारे में भैया आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो भाई हमारी सरकार ये चाह रही है कि ऐसे जिले जहाँ पर जो उत्पादन की क्षमता कम हो
1: जी
0: और भैया अनाज ज़्यादा उत्पन्न हुआ है
1: हाँ
0: तो ऐसे जिलों की जो है छानबीन करके या निगरानी करके या उनकी पहचान करके उनका विकास करा जाए।
1: अच्छा
0: कि भाई देखो हर जगह का एक माहौल होता है, कहीं कोई चीज़ अच्छी हो, कोई कोई कहीं चीज़
1: सही
0: अच्छी
1: बात
0: हो,
1: है, सही बात है।
0: तो अगर उस चीज़ का सही दाम मिल जाए, सही उत्पादन हो जाए तो वहाँ के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी।
1: भाई बात तो आपकी एकदम ठीक है, क्योंकि भाई कई जगह कोई सी फसल होती है, किसी जगह कोई सी फसल हो करे, लेकिन फसल कोई सी भी हो, अब भैया उसे बाजार में भी बेचना,
0: सही बात
1: तो
0: है,
1: उसको अच्छा बाजार मिलता रहे इसके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत हो करे।
0: बिल्कुल। पहली बात तो ये कि भैया अच्छा उत्पादन हो जाए।
1: हाँ हाँ हाँ
0: देखिए उत्पादन के लिए जो धन धान्य योजना है ये वाली, तो इसमें एक सलाह दी गई है कि भाई हमारे किसान भाई लगातार एक ही फसल को ना उगा में,
1: अच्छा
0: बल्कि बदल बदल के फसल उगा में, जिसे फसल विविधीकरण भी कह दें।
1: अच्छा फसल विविधीकरण का ध्यान रखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल देखो भाई बात यो है, ये फसल चक्र कह दो, फसल विविधीकरण कह दो, इससे क्या है अगर बदल बदल के हम फसल बोएंगे तो हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़िया हो जाएगी और भैया हमारी फसल भी अच्छी
1: ये तो
0: होगी।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो भैया फिर तो सिंचाई के लिए भी इसमें बहुत सारी व्यवस्था करी गई होंगी।
0: बिल्कुल सही बात है। देखो इस योजना के तहत जो है फसल विविधीकरण के अलावा सिंचाई में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया
1: हो
0: है।
1: भैया
0: बिल्कुल कि हर खेत पे पानी मिला है हमारे किसान भाई को। और भाई ऐसे नहीं कि पहले जमाना था कि नाली बना दी तो भैया बीघो जमीन उसमें ही चली गई, अब जो छोटी हो गई,
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: एक इंच जमीन को हमें जो है महत्वपूर्ण बनाना है। तो इसके लिए
1: हाँ
0: भैया सिंचाई की योजनाएं नई नई हैं, तो जैसा जहाँ का क्षेत्र है उसी तरह की योजना लगा कर हर खेत पर पानी लाने की सरकार द्वारा प्राथमिकता है और
1: हाँ
0: वो दिया भी जा रहा है।
1: तो नई तकनीकों का इस्तेमाल भी तो करा जा रहा होगा, उसके लिए बताया जा रहा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखो पाइपलाइन के जरिए जो है बूंद बूंद सिंचाई योजना है और कई योजना है उनके जरिए जो है हर खेत पर पानी दिया जा रहा है। साथ साथ जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए
1: हाँ
0: किसानों की गोष्ठी कराई जा रही हैं,
1: ओहो
0: किसानों की भैया कार्यशालाएं कराई जा रही
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: और साथ साथ जानकारी विभिन्न तरीकों से दी जा रही है। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फ्री में जो है भैया बीज दिया जा रहा है
1: अच्छा
0: दालों का
1: जी
0: या अन्य चीज़ों का,
1: हाँ
0: और जो हमारे ऐसे पोषक तत्व हैं
1: जी
0: जिन्हें हमारे किसान भाई प्रयोग में कम लाते हैं
1: हाँ हाँ
0: उन्हें भी
1: हाँ
0: भैया उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी इस योजना में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
1: भैया बहुत अच्छी जानकारी तुम बता रहे। एक बात और बता दो,
0: हो क्या
1: देखो बहुत सारे किसान भाइयों के पास में फसल उत्पादन हो जा और भैया टाइम पे वो बेच ना पाते, तो उसे भंडारित करने के लिए भी बड़ी परेशानी हुआ करे, उसका भी कोई ध्यान रखा गया?
0: यो बहुत बढ़िया बात है भाई। इस योजना का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यो ही
1: हाँ
0: है कि
1: अच्छा
0: ऐसे जिले जहां पर भैया अनाज ज्यादा उत्पन्न होता है और भंडारण की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, तो भैया जगह जगह पर पंचायत स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है भंडारण के केंद्र बनाए गए हैं
1: अच्छा
0: और उनमें जो है किसान भाई अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं और जब अच्छा दाम आवा तब, या जब उनका मन कर रहा है,
1: जी जी
0: जब
1: जी
0: उनकी आवश्यकता है तब वो उसे बेच के आमदनी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है ये
1: हाँ
0: बहुत ही सफल और भैया किसानों के हित की योजना है।
1: सही कह रहे हैं भैया, ये तो बहुत बढ़िया योजना है, हमारे सब किसान भाई बहन इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ सके हैं। और भैया देखो लाभ उठाने वाली बात आ रही है, तो इस टाइम पे तो गीत संगीत का लाभ उठाने को मन कर रहा
0: भाई देखो जहां तक गीत संगीत की बात है तो मौसम के हिसाब से होना चाहिए और ये
1: बिल्कुल
0: चलिया सावन का महीना,
1: जी जी जी
0: तो सावन के महीना जो है कई मामलों में महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना होगा हर तरह बम बोले
1: हाँ भैया
0: कांवड़ आ रही हैं
1: हाँ,
0: और भैया अब जो हरियाली तीज भी आने वाली है,
1: झूले भी पड़े हुए हैं भैया।
0: झूले पड़ रहे हैं, तो भैया सबको जो है अपने अपनी चीज का महत्व याद आता है। तो ऐसे में क्यों ना हम भी एक प्यारा सा सावन लोकगीत सुन ले।
1: ठीक है भैया।

0: तो किसान भाई ने भैया ये प्यारा सा सावन लोकगीत सुना भैया सत्यवीरा हंडा की आवाज में।
1: बहुत बढ़िया लोकगीत था भैया। देखो हमारे सब सुनने वालों को पसंद आया होगा।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो बात तो अभी और करेंगे, लेकिन पहले कुछ मौसम की चिट्ठी आपके हाथ में दिखाई दे रही है मुझे।
1: हाँ भैया, जो मौसम की चिट्ठी आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
0: ठीक।
1: और भैया देखो, यो 16 अगस्त तक के मौसम के बारे में पूर्वानुमान आया।
0: अच्छा
1: ये कह रहे हैं कि बिजनौर और बिजनौर के आसपास के जनपदों में
0: हाँ
1: 13 से 15 अगस्त तक मध्यम बारिश की संभावना है।
0: अच्छा
1: और भैया किसान भाइयों को ये सलाह दे रहे हैं कि उन क्षेत्रों में जहां लगातार जलभराव की स्थिति बनी रहती है, वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करना अत्यंत ही जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: दलहनी और तिलहनी फसलों में जल भराव ना होने दें और जल निकास का उचित प्रबंध करें।
0: बिल्कुल। तो भैया किसान भाइयों को देखो ये जानकारी मिली है, इसके अनुसार अपनी खेती किसानी के काम करें, यानी कि जो ऐसी फसलें हैं दलहनी बो रखी है किसी ने या
1: जी
0: तिलहन बो रखी है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: या भैया ऐसी सब्जी बो रखी हैं जिसमें जो है ज़्यादा जल भराव की संभावना जो है नुकसान देती है, तो ऐसी जगह भैया जल निकास की व्यवस्था बना कर रखें।
1: बहुत जरूरी है। तो देखो ये तो मौसम की बातचीत हो गई, और जो भी काम करें भैया वो मौसम के हिसाब से करें। और भैया देखो, हमारे पास में चिट्ठी जरूर लिखते रहे हैं।
0: बिल्कुल। और भाई बात यह है कि इस चिट्ठी में जो है क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होनी चाहिए, कैसा हमारा कार्यक्रम लग रहा है, क्या इसमें सुधार की जरूरत है,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: आप
1: जी
0: चाह रहे हैं। तो भैया कार्यक्रम

0: मैं चिट्ठी लिखने के लिए पता बताओ दे।
1: बिल्कुल भाई, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467।
0: तो भैया हमें इस पते पर आपकी चिट्ठी का इंतजार रहेगा। और भैया अगर आप चिट्ठी किसी वजह से ना लिख पाओ तो भैया हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता है हेलो किसान,
1: बिल्कुल
0: तो वो माह के पहले शुक्रवार को होता है
1: हाँ,
0: और माह के तीसरे शुक्रवार को हमारे यहाँ से प्रसारित होता है हेलो गन्ना किसान।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसमें गन्ने से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और माह के आखिरी मंगलवार को हमारे कार्यक्रम होता है हेलो बासमती, तो इस
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम के जरिए आप बासमती से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और इन सब के लिए भैया अपना फोन नंबर बता दो।
1: हमारा फोन नंबर है 94-570-78-288।
0: बिल्कुल, तो भैया देखो आप हमें जो है लगातार फॉलो भी करते रहे, हमें फेसबुक पेज भी हमारा है,
1: जी जी
0: इंस्टाग्राम भी
1: जी
0: हमारा है और भैया व्हाट्सएप नंबर भी हमारा है।
1: और व्हाट्सएप मैसेज भी हमारा इसी में नंबर पर हमारे किसान भाई हमारे पास भेज सके
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: तो आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और फिर मुलाकात होती रहेगी, तो राज्य खुश रहे तो फिर मिलेंगे।
1: बिल्कुल
0: अब
1: भैया,
0: इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
1: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें।

आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और रात्रि 10:06 पर राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का भाग 5 प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजक होंगे कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजलों का आनंद लीजिएगा हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर। आज रात्रि 9:30 पर मुलाकात कार्यक्रम में सुश्री नेहा दक्ष अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी से शोभित शर्मा की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे। समय याद रखिएगा आज रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर। गीत संध्या कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा। आपकी फरमाइश।

नयनतारा शर्मा और अर्चना त्यागी के गाय रुलखंडी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा हमारे धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर। घर संसार कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर नीता रानी आशा संगनी से अंजना की बातचीत हमारी श्रोता बहनें सुनेंगी। बातचीत का विषय रहेगा ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं का महत्व और दायित्व। समय याद रखिएगा कल दिन में 1:15 पर कार्यक्रम होगा घर संसार। कल संध्या 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरू की गई सरकारी योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जानकारी विषय पर जानकारी हमारे श्रोता ले सकेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर डॉक्टर शिवशंकर कटियार पूर्व सह प्राध्यापक पशुपालन एवं डेयरी विभाग RSM महाविद्यालय धामपुर से हिमांशु रंजन की बातचीत का विषय रहेगा दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और समाधान। विविधा में कल शाम 6:45 पर डॉक्टर नेहा चौहान की वार्ता हमारे

0: सुनेंगे। वार्ता का विषय रहेगा आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां। कुलवंत सिंह के गाये शब्द हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे कल संध्या 7:45 पर हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे और चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग होगी। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और संध्या 7:32 पर कानून की बात कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: रत्ना बहनी,
2: हाँ ओम भैया,
1: देखो हम पंचो यू सोचित हैं कि अपने ख्यात मैया बढ़िया से बढ़िया फसल उत्पादित हो।
2: सही बात कहा तो वे कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे खेत का पानी जो है जरूर मिले।
1: बिल्कुल सही कहते हो, अपनी फसल का जब पानी मिली तो फसल बढ़िया तरह वैसे हुई। कबो कबो हम पंचे सोचित हैं कि बढ़िया तरह पानी मिल जाए लेकिन ना मिल पावत है।
2: सही बात कहा तो वो पानी हम पंचन का समय ते मिलत रहे, वही के खातिर हमारी जो सरकार है वह यू प्रयास करत रहते कि हमारे खेत का पानी मिले, यानी कि हर फसल का हर खेत का जो है पानी जरूर से जरूर मिले, वही के खातिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो बहनी, और देखो एक अंतर्गत जो हर खेत के यहाँ पानी मिले और वही के साथ साथ प्रति बूंद ज्यादा फसल हो।
2: हाँ सही बात कहा तो बस यू है कि जितना जरूरत है जरूरत भर पानी जरूर मिले रहे, काहे कि कबो कबो कहा होता है पानी की कमी के कारण हमारी फसल जो है खराब हो जाती है या उतनी बढ़िया ना हो पावत है।
1: हाँ, और देखो जब ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं तो जरूरी यह हो जाते है कि जो आज की खबरें हैं वही जान लीन जाए।
2: बिल्कुल आओ जाना जाए।
3: यूपी में 10 रुपए लीटर खरीदा जा रहा गौमूत, 15 गांव में पायलट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। बुलंदशहर में FPO के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। स्याना तहसील के नरसेना गांव में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 15 गांव जुड़े हैं और रोज करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। गांव में 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। संग्रह में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए कमीशन दिया जा रहा है और करीब 300 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। एकत्र गौमूत्र में जड़ी बूटियां मिलाकर खेती में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। आगे खरीद दर 20 रुपए प्रति लीटर करने और सफलता के बाद इस मॉडल को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विस्तार देने की योजना है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल

0: या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
2: देखो हम पंचे अपन जब फसल के यहाँ तैयार करी थे तो कबो कबो ऐसी ऐसी चीजें वहमा हो जाती हैं फसल में यहाँ दिख जाते हैं, कहूँ पाती पीली पड़ रही है, कहूँ और कोई समस्या आ रही, तो वह चीज हम पंचे जाने नहीं पाए थे।
3: सही बात कहा, तो उनके खातिर जो विशेषज्ञ भैया आवत हैं वह बता सकते हैं कि भाई इनमें क्या समस्या है, उनका देखा है सुना है कि हम अपन से जान सके थे।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ये सब पोषक तत्व की कमी तरह होते विशेषज्ञ भैया बतावा करते हैं, तो आओ आज की बात में यह जान लीजिए।
3: बिल्कुल, तो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक प्रबंधन के बारे में यहाँ जाना जाए।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ फसलों में पोटास और गंधक की भूख कैसे मिटे, इसके लिए क्या प्रबंधन करना है आपको, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर केएन तिवारी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय बहुत जगह बुआई और रोपाई हो चुकी है, किसान भाई बहन जो खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व की कमी है उसकी भूख कैसे मिटाएं।
5: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की ये चर्चा जो पोटास और गंधक के महत्व और उसकी जो कमी फसलों में हो रही है उसके बारे में हो रही है। आम तौर पर किसान जो है यूरिया और डीएपी का प्रयोग खरीफ फसलों में करता है और उसका नतीजा ये होता है कि पोटास की कमी सारी फसलों में खरीफ की
4: जी
5: दिखाई दे रही है,
4: चाहे धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, मक्का हो,
5: सब में आप देखिए उसकी नोके पुरानी पत्तियों की पीली होती हैं, वो किनारे किनारे वो झुलस जाती हैं।
4: तो किसान भाई अगर खेत पर पहुंचे तो पहचाने कैसे।
5: अभी पहचान ऐसे कर सकता है ना कि जो पुरानी पत्तियां हैं उसकी नोके पीली होनी शुरू होती हैं
4: जी,
5: और उसके बाद में वो पीलापन किनारे किनारे बढ़ता है और बाद में पोटास की कमी की वजह से वो पीलापन झुलसा सा दिखाई देता है। ये पोटास की कमी का लक्षण है और इसी तरह के लक्षण सारी फसलों में दिखाई देते हैं,
4: चाहे वो मक्का है, धान है, दलहनी फसलों में अरहर, उड़द, मूंग है,
5: बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, लोबिया, ये सारी फसलों में आप इस तरह के लक्षण देखते हैं।
4: और तिलहनी फसलों में।
5: तिलहनी फसलों में जैसे मूंगफली है, तिल है, तो सोयाबीन बहुत सारे क्षेत्र में है, यूपी में तो कम है,
4: बुंदेलखंड में,
5: हाँ, तो इसमें भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
4: तो डॉक्टर साहब जहाँ पोटास की कमी के लक्षण दिख रहे हैं या जहाँ बुआई चल रही है, रोपाई चल रही है, तो पोटास का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
5: पोटास के प्रबंधन के लिए जो यूरिया डीएपी डालते हैं बुआई के समय या रोपाई के समय, उसमें पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए
4: बेसल डोज में।
5: बेसल डोज में अगर बेसल डोज में नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे धान की रोपाई हो गई है, मक्के की बुआई हो गई है, मूंगफली की बुआई हो गई है, तो खड़ी फसल में जिस फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं,
4: हाँ,
5: जैसे धान है, अनाज वाली और फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी के साथ पोटास, म्यूरेटा पोटास है, नेचुरल पोटास भी अब उससे बन रहा है सीरे से, शुगर इंडस्ट्री से, तो उसका प्रयोग कर दें टॉप ड्रेसिंग में।
4: कितनी मात्रा एकड़ पीछे डॉक्टर साहब।
5: अब एक एकड़ में मेरे ख्याल से कम 25 किलो तो डालें
4: जी।
5: लाल वाला पोटास है,
4: हाँ, पूरे खेत में बिखेरना पड़े।
5: और नेचुरल पोटास को भी यूरिया के साथ डाल दें, उससे पोटास की कमी दूर होने की संभावना पूरी रहती है। नहीं तो अगर इसके बाद भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट जो 0050 आता है,
4: एनपीके जल
5: विलेय, हाँ, ये जल विलेय उर्वरक है, बड़ा कारगर उर्वरक है, इसका प्रयोग करना चाहिए।
4: तो इसकी कितनी मात्रा कितने पानी में।
5: देखिए इसका 1% का घोल बनाया जाता है, इसका मतलब कि 1 लीटर में 10 ग्राम और एक टंकी जो 15 लीटर की है उसमें 150 ग्राम, इतना मिला करके घोल बना लें और छिड़काव कर दें।
4: तो ये तो खड़ी फसल में कभी भी जब लक्षण दिखे कमी के पोटास की तो
5: बिल्कुल
4: पानी छिड़काव,
5: हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कारगर है और इससे पोटास की भी कमी दूर हो जाती है और जो दूसरा तत्व इसमें है गंधक की भी हो जाती है।
4: कोई क्रांतिक अवस्था जिस पर इसका प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब।
5: देखिए जब फसल करीब करीब 1 महीने की हो जाती है तो पोटास की कमी की वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और धान में जो क्रांतिक अवस्था

0: है किले निकलने की, बढ़ने की फसल के। उस समय तो इसका प्रयोग, जब यूरिया का प्रयोग करते हैं इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर फसल में पोटाश की आपूर्ति समय से है तो क्या क्या फायदा होगा, फसल में क्या दिखेगा?
0: देखिए, पोटाश बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। एक तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और जो कीड़े बीमारी की समस्या आती है उससे फसल बच जाती है पोटाश की वजह से,
1: प्रतिरोधक क्षमता।
0: हाँ, इसके बाद जो सूखे और पाले की समस्या आती है, अब खरीफ में तो सूखे की समस्या आएगी या जल भराव की समस्या आएगी,
1: दोनों में।
0: हाँ, दोनों में ये बड़ा कारगर होता है।
1: और जो क्वालिटी है,
0: हाँ देखिए, अब इसके बाद उपज बढ़ेगी और जो उत्पाद की गुणवत्ता है उससे जो उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और पोटाश को इसीलिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है कि माने अच्छी उपज भी और अच्छी गुणवत्ता भी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 750-510-3059 7505-103059।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व तो प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: देखिए, ये दोनों पोषक तत्व तो जो हैं, पोटास और गंधक, इनकी मिट्टी में भी कमी हो गई है और उस कमी की वजह से फसलों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कमी की। और ये दोनों पोषक तत्व तो ऐसे हैं कि बीमारी कीड़े से बचत होती है। गंधक जो है वो प्रोटीन को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा गंधक का है कि जो फंगस रोग और इस तरह की बीमारियां हो रही हैं उसमें गंधक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है,
1: यानी फफूंदी नाशक के रूप में भी।
0: फफूंदी नाशक के रूप में भी। तो हमारा तो किसान भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह से खाली यूरिया और DAP पर आश्रित न रहें। इन पोषक तत्वों की जमीन में कमी हो गई है तो ये दोनों पोषक तत्व यूरिया DAP के साथ में डालें और उसका लाभ उठाएं।
1: प्रोफेसर KN तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो फसलों के आवश्यक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरा और चौथा पोषक तत्व है वो पोटेशियम यानी पोटास और गंधक है, और इसका खरीफ फसलों में कैसे प्रबंधन करें किसान भाई बहन ताकि माटी और फसल की भूख मिट सके और फसल का पोषण अच्छा हो, उसकी अच्छी पैदावार मिले, अच्छा लाभ मिले। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
2: देखो, जब इतनी नीक नीक जानकारी मिल जाती है और अगर गीत गुनाई सुनाई मिल जाए तो कितना आनंद आ जाता है।
3: बिल्कुल सही बात कहा था। तो काहे ना पंच भाई बहन इनका सबका जो है एक बढ़िया सी गौनई सुनवान दिन जाए।
2: हाँ,
3: जो विकास गीत है चंद्रभूषण तिवारी की आवाज में।
2: हाँ बिल्कुल, आओ सुना जाए और पंचो सुने और आनंद ले।
3: बिल्कुल।

0: रत्ना बहनी,
1: हाँ भैया।
0: देखो अपने बीच मैया बहुत किसान पंच भाई होते हैं, जो उन अपन विशेषक भैया बतावत हैं, वो अपनी खेती मैया नवाचार अपनाए किया, अपनी खेती मैया बढ़िया बढ़िया फसल उत्पादित करते हैं।
1: सही बात कहा। तो ओ वैसे जो है हमो पंच सीखी थे कि भाई कैसे बढ़िया करते हैं ये पंच, तो हमो पंच करी हुई का।
0: तो आज देखो अपन किसान भैया आ चुके हैं और उनकी बतकही सुना जाए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहराइच जनपद के मेहपुरवा ब्लॉक के परवानी गौढ़ी गांव के शिवशंकर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय खरीफ में कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान साथियों सबको नमस्कार, मैं काला नमक धान की खेती करता हूँ। मैं इस साल 3 एकड़ काला नमक धान जो पारंपरिक है उसकी खेती किया हूँ। मैं खेती प्राकृतिक विधि से गाय के मूत्र और गोबर से करता हूँ, रासायनिक दवा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूँ।
2: तो ये शुरुआत कब से हुई काला नमक धान उत्पादन की आपकी?
3: मैं किसान दिवस में बहराइच आया था, वहाँ एक हमारे फखरपुर विधानसभा क्षेत्र के जागरूक किसान जयंकर सिंह जी थे, उन्होंने मुझे बताया प्राकृतिक कृषि के विषय में। मैं गाय पहले से ही पालता था, उन्होंने मुझे बताया कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। मैंने इसको अतिशयोक्त मान करके उनके साथ जा करके सुभाष जी पालेकर जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनका प्रशिक्षण लिया, लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, झांसी में प्रशिक्षण लिया और भरतपुर राजस्थान में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के मैं प्राकृतिक विधि खेती 2015 से शुरू किया।
2: यानी लगभग 11 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते।
3: जी।
2: कुल खेती की जमीन कितनी है?
3: 6 एकड़।
2: 6 एकड़
3: जी।
2: और 6 एकड़ में आप 3 एकड़ धान लगा रहे हैं?
3: मैं 3 एकड़ धान लगाया हूँ, 3 एकड़ खेत पलिहर रखा हूँ जिसमें कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए ढैंचा बो रखा हूँ।
2: अच्छा, बाद में पलटाई करेंगे?
3: हाँ, पलट करके उसमें सरसों की खेती लेंगे, सरसों के बाद उसमें मक्के की खेती लेंगे
2: गर्मी में।
3: जी।
2: तो ये आप सुगंधित धान में जो पारंपरिक काला नमक है उसको पैदा कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं?
3: ये मैं 2015 से कर रहा हूँ।
2: यानी 11 साल उसको भी हो गए।
3: जी।
2: तो नर्सरी से लेकर के और रोपाई और फिर फसल की देखभाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्राकृतिक खेती का है।

0: जिसमें गाय के मूत्र और गाय के गोबर गुड़ बेसन से जीवामृत बनाता हूँ और खेती में डालता हूँ, और उसके बाद मैं पोषण के लिए शक्ति के लिए उसमें गाय के गोबर का घन जीवामृत बनाता हूँ और बना करके खेत में डालता हूँ और धान की बैठवनी करता हूँ।
1: यानी फसल की भूख मिटाने के लिए आप जीवामृत और घन जीवामृत दोनों का प्रयोग करते
0: जी
1: हैं।
0: दोनों का प्रयोग करते।
1: लेकिन नर्सरी में कुछ खास?
0: नर्सरी में कुछ नहीं, केवल खेत को जोत करके पानी डाल करके घास को मार देता हूँ और उसके बाद उसमें वही जीवामृत डाल करके बीजामृत बनाता हूँ बीज संशोधन के लिए, और बीज संशोधित के बाद मैं उसी में धान को अंकुरित करके बीज डालता हूँ, नर्सरी तैयार करता हूँ।
1: तब तक जिस खेत में आपको काला नमक धान जो पारंपरिक वैरायटी है उसकी रोपाई करनी है उसकी तैयारी भी करते होंगे?
0: जी, गेहूं कटने के बाद खेत को पलेवा करके जोत करके उसमें सनई या ढैंचा बो देता हूं और धान का बीज इतने अंतर पर डालता हूं कि कम से कम 50 दिन का ढैंचा हो जाए, उसके बाद पलट करके कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए पानी भर करके सड़ा देता हूं और नर्सरी तैयार हो जाता है। फिर लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच, पौध से पौध की दूरी 8 इंच करके श्री विधि से मैं काला नमक धान लगाता हूं।
1: तो आपकी काला नमक धान की रोपाई हो गई?
0: काला नमक धान की पूरी रोपाई हो गई।
1: तो जब आप ढैंचा या सनई की पलटाई करते होंगे तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा?
0: जी।
1: इस समय आपका खेत कैसा है, फसल कैसी है?
0: फसल हमारी बहुत बढ़िया है, उसमें हम जीवामृत डाल करके तब धान बैठाते हैं और फिर दूसरी सिंचाई करके उसमें जीवामृत डालेंगे। 3 बार मैं धान में सिंचाई के या बरसात होती है तो जीवामृत बना बना करके प्रति एकड़ 200 लीटर
1: अच्छा
0: डालता हूँ, और डाल करके 3 बार के बाद फिर जीवामृत बना करके हर 15 दिन पर अपने धान की फसल या गेहूं की फसल में उसका छिड़काव करता हूँ।
1: तो उसका असर क्या दिखता है खेत में?
0: खेत में हमारे खेत में केचुआ बहुत हैं, जमीन हमारी बहुत बढ़िया उपजाऊ है और हमारा पैदावार घटता नहीं, रासायनिक खेती से ज्यादा मुझे इसमें मुनाफा है, लाभ है, खर्चा मेरा कुछ नहीं है, जमीन मेरी ताकतवर है, शक्तिशाली है।
1: जो बिन बुलाए मेहमान खेत में उगते हैं यानी खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: आच्छादन से।
1: अच्छा,
0: हमारे यहाँ एक आच्छादन विधि है, आच्छादन विधि का लाभ यह है कि घास नहीं जमेगी, ह्यूमस तैयार होगा, उसके नीचे छाये में केचुआ पैदा होगा।
1: तो रोपाई के कितने दिन बाद मल्चिंग यानी आच्छादन बिछाते हैं?
0: आच्छादन 3 तरह का होता है, एक आच्छादन होता है सजीव आच्छादन जो फसल के साथ होता है, एक आच्छादन होता है कास्ट आच्छादन, एक आच्छादन होता है गर्मी में जोताई करके मल्चिंग करके। मैं इस वक्त जो करता हूँ जैसे ढैंचा, कुछ ढैंचा तो मैं खेत में बो देता हूँ और बोने के बाद काट करके उसको सुखवा लेता हूँ। जो धान की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच होती है उस बीच में मैं अपने उस ढैंचे को बिछा देता हूँ ताकि उसके छाये में घास जमने न पावे।
1: तो ढैंचे का डंठल?
0: हाँ, डंठल
1: सुखा के रखते?
0: सुखा के रखते हैं और उसी को उसमें बिछा देता हूँ ताकि हमारी कास्ट आच्छादन हो जाए जिसमें ह्यूमस बने, केचुआ तैयार हो और हमारे खेत में घास न जमने।
1: चूंकि आप पिछले 11 वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और काला नमक धान पैदा भी कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं एकड़ में और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: किसान साथियों, 1 एकड़ में मेरा ज्यादा से ज्यादा खर्च 1 ट्राली गोबर, 200 लीटर जीवामृत, ये लगता है कुल मिलाकर के मेरा लागत मूल्य 5,000 से 6,000 रुपया प्रति एकड़ आता है। और मेरा धान यदि 10 क्विंटल एकड़ का हुआ या 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ तो हमारा 1,00,000 रुपया एकड़ का धान पैदा हो गया, तो हमें 1 एकड़ में 1,00,000 रुपया उत्पादन हुआ और खर्चा हुआ 5,000 से 7,000 रुपया, तो मुझे मुनाफा तिगुना होता है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 89 48 97 51 89 48 89 97 51 89 48 89 97 51।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम किसानों का खुशहाल जीवन तभी होगा जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी आने वाली

0: संतानें सुदृढ़ होंगी, सुरक्षित होंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप गौ पालन करिए और प्राकृतिक खेती ही करिए।
1: शिव शंकर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए लगभग 11 साल पहले से, आप 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस समय काला नमक धान 3 एकड़ आपके खेत में खड़ा है, जिसको आप प्राकृतिक खेती के तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ रत्ना भैया।
3: देखो हम पंच खेती जो करी थे वह जो है अपने मौसम के आधार पर करी थे और मौसम की अगर नीक नीक जानकारी रहा थे तो वही के हिसाब से जो अपन खेती होते वह बहुत नीके से हो जाते है। तो काहे न पंच भाई बहन इनका मौसम की जानकारी दिवा दी जाए।
4: तो रत्ना बहनी, जो मौसम के हाल प्रादुर्भाव है, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिन का जो वर्षा का पूर्वानुमान है 11 अगस्त 12 13 14 15 16 अगस्त तक का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले बताया दी संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के साथ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में कहूँ कहूँ पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के अलावा जो 15 अगस्त का है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है।
3: और देखो भैया जो मौसम संबंधी चेतावनी है वो जरूर जान लें कि 11 अगस्त यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है संभाग में कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है तो बहुत सावधानी से रहें। और 14 अगस्त से लगाए के 17 अगस्त तक में कहूँ कहूँ संभाग पर बर्खा होने की संभावना है। साथ ही में यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 11 और कल 12 में कोई चेतावनी नहीं है लेकिन वही के बाद कहूँ कहूँ बर्खा होने की संभावना है तो वही हिसाब से काम करें।
4: तो रत्ना बहनी यू तो रहा है मौसम का हाल, जब मौसम का हाल हम पंचन का पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपने खेती पाती का काम वही अनुसार निपटाए लेते हैं जैसे हम पंचन का कोनो नुकसान ना हो फसल में अपनी और वही के साथ साथ जो नपज छप्पा छानी है वह हम पंचे ठीक ठाक कर लेते हैं। न तो कबो कबो कहा होते कि जब सही तरह हम पंचे तैयारी नहीं कर पाए थे अचानक मान लो बस लाग जानकारी नहीं है तो बड़ी समस्या हो जाते।
3: ओम भैया अपने पंच भाई बहनी जो उनका कुछ नीक लागत है या कुछ कहा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हम पंचन का अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से बता सकते हैं तो उसके खातिर आप पता बता दो।
4: बिल्कुल रत्ना बहनी, देखो पता है अपने कार्यक्रम का, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ जो पिन कोड है 226001
3: और साथ में यहाँ ईमेल आईडी बता दो।
4: हाँ ईमेल आईडी जरूर नोट कर ले का है तेरे दन दे भेजे सन दे रे अपने तीर पहुंचे ईमेल। तो ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
4: देखो घड़ी कर रही अब इशारा और चले खोए रही बिरिया और पंचन तेरे लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भाई?

0: करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की।
0: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
5: प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया, मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
6: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान को जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
5: उधर इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया। वाराणसी में भी इस अभियान के तहत चिरई गांव विकास खंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से पहले खंड विकास अधिकारी रिया सैनी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उधर जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली, पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन जैसी रचनात्मक और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू हो गया है। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में आज 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए कल बुलाया जाएगा। 3 सदस्य चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
5: वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में कल हुई सुनवाई के बाद आरोपितों को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने न्यायालय में आरोपियों पर से भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं को हटाने की भी अर्जी दी है, जिस पर कल

0: सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संत कबीर नगर में भी विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी।
2: आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर मंदिर तक टू लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर का हर मार्ग फोर लेन से जुड़ रहा है। यहाँ लगातार हो रहे विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बनी है।
3: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमा होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कल ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन। इससे पहले आज ऊर्जा मंत्री ने इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य न केवल बायो एनर्जी में भारत का नेतृत्व करना है, बल्कि प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सावन के शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। भोर में मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद में प्रयागराज से आए कांवड़िये शामिल हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर समेत अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय

0: ना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झाड़खंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजल।

आपने सुना ये गीत सुगम संगीत के अंतर्गत इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजल। इसी क्रम में श्रोताओं आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं का गाया ये गीत।

सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं इस समय आप आनंद ले रहे हैं आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजलों का। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी गाई हुई गजल।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजल। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम की अंतिम गजल।

0: सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे आदित्य कुमार शर्मा के गाए गीत और गजल। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद में आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दे राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल

न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक सदस्य आईएस इन्बादुरै ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के आईएस इन्बादुरै, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉ के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉ संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉ संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे

बैठाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनिट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनिट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का गीत संध्या कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज शिवरात्रि है, तो आइए आज का गीत संध्या कार्यक्रम समर्पित करते हैं भोलेनाथ के श्री चरणों में। श्रोताओं, कहते हैं शिव को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। उनका भोला रूप, उनकी सरलता और भक्तों के प्रति उनका अपनापन हमेशा ही मन को मोह लेता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं एक ऐसा ही मनभावन गीत जिसमें शिव जी की भक्ति के साथ साथ एक खूबसूरत लोकरंग भी दिखाई देता है। फिल्म है मुनीम जी, आवाज हेमंत कुमार और साथियों की।
1: बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला,

मुनीन जी, फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज हेमंत कुमार और साथियों की थी। श्रोताओं, शिव केवल देवाधिदेव ही नहीं बल्कि वे सत्य के प्रतीक भी हैं। शिव का अर्थ है कल्याण, और जब जीवन में सत्य, साहस और समर्पण की बात आती है तो शिव का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज में। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

श्रोताओं, भोलेनाथ का नाम लेते ही मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। कहीं वो कैलाशपति हैं तो कहीं महाकाल, कहीं नटराज तो कहीं अपने भक्तों के भोलेनाथ। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के लिए, फिल्म कुमारा बाप से आवाज़ किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की।

महादेव की कृपा श्रोताओं आप सभी पर बनी रहे इसी कामना के साथ आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए से कुछ गीत। इन गीतों को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ।

श्रोताओं, भी आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत। एक ही फिल्म से क्रम में आज हमारे श्रोताओं ने सुनी फिल्म एक दूजे के लिए से कुछ गीत। इन गीतों को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार

0: मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है।

0: का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसे सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
2: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मना

0: ने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निजाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदादी बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दे दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो फख्र के साथ यौम आजादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा की जानिब से ट्राइब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को आज मंजूर किए जाने के बाद इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। दूसरी मर्तबा मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आजादी और तकरूरात, नीज खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के कयाम की भी तजवीज पेश करता है। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में कई अराकीन ने अवामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मामलात उठाए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद सदर नशी ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा ने केरला तब्दीली नाम बिल 2026 को आज मंजूरी दे दी। ये बिल आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानूनसाज असेंबली ने जून 2024 में करारदाद मंजूर की थी। बिल पर इजहार ख्याल करते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानूनसाज असेंबली की 2024 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त इसलिए की गई थी क्योंकि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आईन में इसे केरला लिखा गया। ऐवान ज़ेरी ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन बिल 2026 को भी मंजूरी दे दी। इमदाद बाहमी के वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने बिल पेश किया, जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन कानून 1962 में मजीद तरमीम करना है। ये बिल कॉरपोरेशन को सनती अशिया के मैदान में अपनी सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत देता है। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान ये दोनों बिल बिना किसी बहस मुबासे के मंजूर कर लिए गए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। हुकूमत की जानिब से तलबा के मामले पर मुबाहिसे की तैयारी की यकीन दहानी के बावजूद कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी। अपोजिशन के शोरगुल और हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐवान की कार्रवाई में रखना अंदाजी पर दुख का इजहार किया। जनाब बिरला ने जोर देकर कहा कि ऐवान की कार्रवाई बहस मुबाहिसे और ताउन के जरिए चलती है। लोकसभा ने अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान केरला तब्दीली नाम बिल 2026 और कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी। वहीं राज्यसभा ने भी ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 मंजूर कर लिया। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने इस बिल को गुज़श्ता महीने मंजूर किया था। ये बिल दफा 3 के तहत वंदे मातरम को तहफ्फुज़ फराहम करता है और इसे

0: देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसे सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने मुबैना तौर पर कहा कि वजीर दाखला इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। भारत ने आज ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट और कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है और इस सच्चाई को कोई तब्दील नहीं कर सकता। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात में भारत ने हमेशा बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वो इन मामलात को सबसे संजीदा मानता है।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: जनाब जायसवाल ने मुतला किया कि भारत ने बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को बाहमी दौरे के साथ साथ नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच इजलास के लिए दावतनामा भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के वजीर आजम से मुलाकात की और तरफेन ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की अमरीकी एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के तौर पर खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। इस मुआहदे के तहत भारत और अमरीका ओपन साइंसी डेटा साझा करने पर तावुन से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। भारत ने 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के सदर दफ्तर में भारत अमरीका सिविल खलाई मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की नवी मीटिंग की मेजबानी की। इसरो चेयरमैन डॉ वी नारायणन और भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान भारत और अमरीका के दरमियान ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पहल के तहत सिविल और तजारती खलाई इश्तराक में पेशरफ्त हुई। फरीकैन ने गुज़श्ता साल नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR के मुश्तरका तौर पर कामयाब लॉन्च के बाद बढ़ते तावुन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने साइंस और मुस्तकबिल में खला में इंसान की परवाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तावुन पर भी बातचीत की। फरीकैन ने बाहरी खला की सरगर्मियों की तवील मुद्दती पायदारी से मुतालिक बाहरी खला के पुरअमन इस्तेमाल की अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी COP UOS के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ने की अपनी अहदबस्तगी को दोहराया। इसके अलावा फरीकैन ने कमेटी की असर पजीरी की यकीन दहानी के लिए जारी कसीर जहती कोशिशों का भी जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत की तामीर का अहद करते हुए फख्र और शान के साथ यौम आजादी मनाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए जना मोदी ने हर शहरी की साथ आने और मुल्क के मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए हौसला अफजाई की। इसके अलावा वजीर आजम ने सभी से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया।
3: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल के मकाम पर आज अजीमुशान तिरंगा रैली मुनक्कद की गई। रैली की खसूसियत 1200 मीटर लंबा कौमी परचम रही। रैली में स्कूली तलबा, असातज़ा, साबिक फौजियों, सिविल और पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी अरकान और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुरका ने तिरंगे के साथ हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मार्च किया। आज बीजेपी की जानिब से किए गए झारखंड बंद का रियासत के मुख्तलिफ

0: किसी परिवेश की, किसी बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती, और उसे चरितार्थ करके दिखाया है नेहा दक्ष ने, जो कि आज हमारी खास मेहमान है हमारे स्टूडियो में। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि नेहा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं कबड्डी की। एक छोटी सी जगह से आती हैं, नजीबाबाद के करौली गांव से नेहा बिलोंग करती हैं। उनकी जर्नी के बारे में, उनके खेल के बारे में, उनके जीवन के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: नेहा, इतना आपने अचीव किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं जानता हूं कि हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे, उत्सुक होंगे जानने के लिए कि एक छोटे से गांव से निकलने वाली लड़की, 20-21 साल की लड़की, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनती है। और उससे भी ऊपर की बात, जो आपके अचीवमेंट्स है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, कि किस प्रकार एक एशियन चैंपियनशिप में वो टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलती है। नेहा, सबसे पहले आपसे जानेंगे हम आपके बचपन के बारे में। हमें थोड़ा सा बताइए, इस खेल से, कबड्डी से कब से आपका लगाव हुआ?
1: 2018 में मैंने स्टार्ट किया सर कबड्डी।
0: अच्छा,
1: यस सर।
0: तो नेहा, 2018 में आपने कबड्डी शुरू की और आज हम 2025 में बस शुरुआत भर में ही हैं और आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो इन 6-7 वर्षों में आपने किस तरीके से मेहनत की, क्या किया ऐसा?
1: सर इन 6-7 महीने में जिस दिन से मैंने कबड्डी चुनी थी उस दिन बस एक ही सपना लिया था कि हाँ मेरे को इंडिया खेलना है, और रोज इसी सपने के साथ सोती थी। बहुत स्ट्रगल आया लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, हर तरीके से प्रॉब्लम हुई, और अभी लास्ट मेरे को ये मौका मिला कि मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ।
0: नेहा, जाहिर तौर से इन 6-7-8 सालों में आपने बहुत मेहनत की है और जिसके
1: यस सर,
0: परिणाम अब सामने आने शुरू हुए हैं, उससे पहले हम जाते हैं। आपने बताया 18 से आपने कबड्डी शुरू की,
1: यस सर,
0: 2018 से पहले की आपके बचपन की बात करते हैं।
1: यस सर।
0: कैसे बचपन रहा, खेलों के प्रति क्या आपकी क्या रुझान था, आपकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या रही है, आपके
1: यस
0: परिवार
1: सर।
0: में क्या कोई खेलता है, इन सब बातों के बारे में हमें बताइए।
1: सर बचपन से ही मैं एक मतलब मुझे भागना ज्यादा पसंद था, मैं खेलती कूदती थी, सबको मारती भी थी, बच्चों को भी।
0: अच्छा।
1: मैं मतलब बचपन से ही थोड़ा स्ट्रांग थी, एक होती है ना विल पावर तो वो चीज था मेरे अंदर। और घर पे भी तो कोई नहीं खेला कभी आज तक, और घर से बहुत सपोर्ट भी नहीं था, पर मामा जी मेरे को सपोर्ट किए सर।
0: नेहा, आपने बताया कि घर से कोई नहीं खेला, तो
1: यस सर।
0: फिर ये खेल की तरफ कैसे आना हुआ? मतलब क्या आपने चारों तरफ किसी को देखा खेलते हुए, या कुछ ऐसा था कि टीवी पे आपने देखा है, रेडियो पे सुना, या अखबार में कहीं पढ़ा? कैसे आपका खेलों के प्रति रुझान बढ़ा?
1: ये तो नहीं पता सर कैसे हुआ, पर एक अंदर से होता है ना कि हाँ हमको खेलना है। जैसे स्कूल में रेस होती थी, ग्रुप वाइज हम डिवाइड होते थे, और वहाँ पे मैं हमेशा चैंपियन निकलती थी अपने स्कूल में।
0: अच्छा।
1: यस सर, कंपटीशन होते थे उधर, तो मेरे को अच्छा लगता था कि हाँ मेरे को खेलना है, पर ये नहीं पता क्या है क्या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं पता था। और अभी मैं मतलब उधर खेलती, फिर सर बोलते, हमारे PTI सर थे उधर, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग देते थे उधर हमें स्कूल में, तो ट्रेनिंग का भी कोई ये नहीं पता था। और फिर गांव में मेरे को तो बस ये था कि हाँ मुझे भागना है भागना है भागना है। और सुबह उठती थी, कभी 4 बजे उठती थी, कभी 3 बजे उठती थी, सड़कों पे निकल जाती थी गांव की भागने के लिए। और फिर डॉगी होते हैं, डॉगी पीछे पड़ जाते थे, भागती थी फिर भी भागती
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: तो नेहा, भागने में आपकी दिलचस्पी जैसा आप बता रही हैं शुरू से रही,
1: यस
0: उसके
1: सर,
0: अलावा भी खेलों में रही,
1: यस
0: मारने
1: सर,
0: में भी आपकी दिलचस्पी
1: हाँ
0: थी।
1: यस।
0: तो नेहा, ये जो भागने से कबड्डी का जो सफर है, ये तो तय है कि आपके अंदर जो एथलेटिसिज्म है, जो एक खेल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, वो
1: यस
0: सब
1: सर।
0: आप में मौजूद रही, आपने बताया। तो वो कबड्डी की तरफ जब पहली बार सोचा, वो किस तरीके से सोचा, कौन ऐसे शख्स थे या कौन सी ऐसी इवेंट थी जिसने आपको प्रेरित किया?
1: सर एक टाइम था कि मुझे एथलेटिक्स से कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने बिजनौर डेली अप डाउन किया है, यहाँ से डेली अप डाउन करना गांव से तो पूरा दिन निकल जाता था। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, घर भी मतलब कि मैं क्या करूं उस चीज को लेके परेशान रहती थी। फिर मामा जी से बात की, मामा जी ऐसे ऐसे बात है, तो मामा जी ने पापा जी से बात की, क्योंकि घर पे कोई स्पोर्ट्स को इतना वैल्यू नहीं था। तो फिर उधर काफी लोगों ने टोका कि तू एक मतलब एथलेटिक्स छोड़ के कुछ और पकड़ ले, कि जिससे मतलब तू अपना खर्च भी उठा सके, तू खेल सके, क्योंकि एक कबड्डी गेम ऐसा है कि गरीब का बच्चा भी आराम से खेल लेता है, और एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा इंडिविजुअल गेम है सर, और बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए खेलने के लिए, मेरे मानने में तो ये है सर। और उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं था, तो ये चीज सर सबसे ज्यादा मैटर करती है।
0: बहुत बड़ी बात है नेहा, क्योंकि केवल इस वजह से कि आपके पास संसाधन नहीं थे
1: यस
0: एथलेटिक्स में, हो सकता है कि अगर आपके पास संसाधन होते तो आप एथलेटिक्स में भी
1: यस सर,
0: नाम रोशन कर रही होती देश का, लेकिन केवल इसलिए कि संसाधन नहीं थे।

0: आपने एक ऐसे गेम को चुना जैसा कि आपने बताया कि गरीब का बच्चा भी इस खेल को खेल सकता है।
1: यस सर।
0: तो नेहा, जब आप कबड्डी में आई, आपने खेल को समझा, सबसे पहले कोच कौन थे आपके?
1: मेरी कोच अंशु मैडम रही है, जो राहुल चौधरी की भाभी है। जब मैंने स्टार्ट किया था, उसके वो 6 मंथ बाद आई थी, क्योंकि उस टाइम कोई कोचेज उस स्टेडियम में नहीं रहे थे। तो बस धीरे धीरे खेलते, बच्चे हंसते थे मेरे ऊपर कि ये क्या कबड्डी खेलेगी, इसको तो खड़ा होना ही नहीं आता है। तो वो चीज मेरे दिल को लगी सर। तो मुझे नहीं पता था कबड्डी जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, पर हाँ, बस एक था कि इंडिया खेलना।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: नेहा, अंशु जी का आपने जिक्र किया, तो अंशु जी
1: यस
0: आपकी पहली कोच साबित हुई।
1: यस सर।
0: अंशु जी की कोई बात जिसने आपको झकझोरा हो, जो आज भी आपके कानों में गूंजती हो, या जिस बात ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो, कोई बात याद आती है?
1: सर, ऐसा तो मैम को मुझ पर ट्रस्ट था। वो कहती थी कि वो मेहनत करती, क्योंकि सर जब कोच नहीं था ना कोई, तो मैं बॉयज के साथ प्रैक्टिस करती थी। लड़कों में ही खेला है स्टार्टिंग से, लड़कियां पसंद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को सर ऐसा होता है ना कि टाइम पास नहीं करना। अगर हमको 2 घंटे देने हैं, तो वो 2 घंटे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के लिए देने, क्योंकि ये मेरा कर्म है, मैंने चुना है। तो मैम ने मेरे को प्रेरित किया। मैम बोलती थी कि हाँ ये करेगी, मेरी बेटी इंडिया खेलेगी, ऐसा बोलती थी। तो सर उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया, फिर मेरे साथ मुझे प्रैक्टिस कराने लगी थोड़ा धीरे धीरे ऐसे।
0: अंशु जी ने आपको शुरू कराया,
1: यस
0: फिर
1: सर।
0: उसके बाद अंशु जी के बाद कोई और व्यक्तित्व, कोई और आपके साथ में आया जिसने आपको और आगे बढ़ाया?
1: यस सर। फिर उसके बाद मेरा गुजरात साई में हुआ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर। तो मैं सर अभी लास्ट 4 ईयर से उधर ही हूँ। 2019 में मैं उधर गई गांधीनगर सर।
0: जी
1: और जी सर, और फिर उसके बाद उधर जा करके मैं थोड़ा इंजर्ड हो गई, मेरे को पेट की इंजरी हुई। मैं 2 साल से मतलब पूरा बीमार उधर ही रही। ये भी होता था कि खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी, क्या करेगी, तो थोड़ा सर बहुत प्रॉब्लम हुई सामने।
0: आपकी इंजरी के बारे में भी बात करेंगे नेहा,
1: यस
0: उससे
1: सर।
0: पहले हम जान लेते हैं आपका जो साई का, जो जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप जिक्र कर रही
1: यस
0: हैं,
1: सर।
0: गांधीनगर की आपने बात की, तो जो गांधीनगर में ओवरऑल आपको माहौल मिला, जो आपकी जो कोशिशें हैं उनको किस तरीके से बल वहां पर मिला जाकर?
1: सर उधर जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल देने गई थी, तो उधर मेरे को मैं एकदम ऐसे कुछ होता है, चकाचौंध होती है, एकदम से कुछ सामने आता है कि इधर ये भी है, इधर खाने का भी है, इधर रूम भी कितने अच्छे हैं, सब कुछ। मैं देख के मैंने कहा हाँ, अब तो मैं करूँगी उस चीज़ को सर।
0: अच्छा,
1: यस
0: और
1: सर।
0: कोचिज का कैसा वहां पर था, जो जो वहां पर कोच थे उनका लेवल, और जो आपके अंशु जी का लेवल है, उसमें उसमें आप किस तरीके से दोनों में भिन्नता पाते हैं, कैसे आपको डिफरेंट लगा?
1: अंशु मैडम जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर की कोच भी हैं और भाभी भी हैं। राहुल भैया हैं, राहुल चौधरी, तो
0: जी
1: वो उनकी कोच रही हैं, कोच भी हैं और उनकी सगी भाभी हैं। तो वो भी अच्छे से ट्रेन करती थी। और फिर उधर जा कर के तो सर मैं स्टार्टिंग फेज मैंने बहुत प्रॉब्लम सही है, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग फेज से ही मैं थोड़ा डाउन हो गई थी सर।
0: इंजरी की वजह से आप?
1: यस
0: अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पर प्रॉपर कंडीशनिंग हुई, प्रॉपर आपको कोचिंग मिली, और
1: यस
0: उसके
1: सर।
0: बाद आज हम रिजल्ट देख ही पा रहे
1: यस
0: हैं।
1: सर।
0: नेहा, अभी आपने जिक्र किया अपने मामा जी का, क्योंकि इस जर्नी में जैसे आपने हमें बताया, तो हम ये मानते हैं कि शायद वो एक ऐसे शख्स हैं जिसने आपको ऐसे समय पर संबल दिया, ऐसे समय पर सपोर्ट दिया। अगर वहां पर सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद आज भारत ने ये जो एशियन चैंपियनशिप जीती है, शायद भारत नहीं जीत पाता, क्योंकि आप उसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं।
1: यस सर।
0: तो नेहा, आपके मामा जी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का उनका आपके लिए सपोर्ट रहा है?
1: सर वो हर तरीके से मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने। मेरे को माइंडली मैं डिस्टर्ब होती थी, तो मेरे को गीता का ज्ञान सिखाते थे, मेरे को बैठ करके बुला करके पास मुझे सिखाते थे, क्योंकि मैं उनके पास रही हूँ जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। और वो मेरे को खाने पीने के लिए भी खुद से ला के देते थे कि नेहा इतनी मेहनत करती है, कोई लड़का भी मेहनत नहीं करता है। तो वो मेरे बारे में बहुत सोचते थे, बहुत बोलते भी थे कि हाँ, मेरे को सामने से ऐसा नहीं कि हाँ ये नहीं कर सकती या कुछ भी, तो वो बोलते थे कि हाँ हमारी बेटी करेगी।
0: नहीं, आपके खेल की तरफ वापस आते हैं, कबड्डी की तरफ वापस आते हैं, इस खेल में सबसे ज्यादा पसंद आपको क्या है?
1: सर मैं वैसे तो ऑलराउंडर प्लेयर हूँ, पर मेरी मेन पोजीशन भी है सर, मैं राइट कवर खेलती हूँ सर, और मैं डिफेंडर हूँ।
0: डिफेंडर हैं, तो
1: यस सर।
0: डिफेंडर में ये माना जाता है कि आपकी जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
1: सर मैं राइट कवर में मैं डैश ज्यादा अच्छा करती हूँ,
0: अच्छा,
1: रेडर को बाहर फेंकने का काम करती हूँ।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद ये जो आपने बताया कि शुरुआती दिनों में आपने ट्रेनिंग जो मेल
1: मेल
0: काउंटर पार्ट्स के साथ की, उसने कहीं ना कहीं आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, ताकत को बढ़ाया होगा,
1: यस सर।
0: तो आपके खेल में डिफेंडर का रोल आपका रहता है। उसके अलावा इस खेल ने और क्या आपको दिया है, अगर हम आपकी शारीरिक क्षमता की बात करें, हम आपकी मानसिक क्षमता की बात करें, और क्या कबड्डी ने आपको दिया है?
1: सर कबड्डी

0: एक बॉडी टच गेम है जिसमें हमें कभी भी इंजरी हो सकती है, कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें और हमेशा प्लेयर कोई भी रहेगा इंजर्ड हमेशा रहता ही है, कुछ ना कुछ पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है सर।
1: अच्छा,
0: यस सर।
1: अभी आपने अपनी इंजरी की बात की थी नेहा, हम आपसे जानेंगे, तो जो इंजरी आपको हुई वो किस तरीके से हुई, कैसे आप फ्यूचर में उससे बचने के लिए क्या करेंगी, या जो इस समय उदयमान खिलाड़ी हैं कबड्डी के, वो आपके अनुभव के आधार पर ये जान पाएं कि उन्हें क्या नहीं करना होगा इंजरी से स्पेशली बचने के लिए।
0: तो एक चीज होती है, मैं जाती थी दो पैर को भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने जाती थी, तो मेरे को मैम ने मुझे रोका कि बेटा तू 3 टाइम प्रैक्टिस कर रही है, 3 टाइम प्रैक्टिस करेगी तो बॉडी को रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, और तू उतना प्रोटीन वगैरह कुछ यूज नहीं कर रही है, कि डाइट भी इतना अच्छा नहीं ले रही है, तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिकवरी प्लेयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं नेहा के साथ हमारी बातचीत, नेहा दक्ष जो कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की खिलाड़ी हैं, और क्या क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल रही हैं और क्या क्या उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं, इसके बारे में नेहा से हम जान रहे हैं। नेहा, हमें ये बताइए कि इस पूरे सफर के दौरान कई मोड़ आते हैं, तो ऐसा कभी आपको लगा हो जब आप सबसे ज्यादा हतोत्साहित हुई हो, आपको लगा हो कि नहीं ये अब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आगे नहीं करना, ऐसा कभी महसूस हुआ?
0: सर ऐसा काफी बार महसूस हुआ है मेरे को, पर मुझे समझाने वाले बहुत मिले सर, क्योंकि ऐसा ऐसा इंजरी हुई है। मेरे को लास्ट जब इंजरी हुई थी सर, तो मेरे को एंकल फ्रैक्चर हुआ था, तो उस टाइम मेरे जूनियर था, मेरा जूनियर फेडरेशन था, तो सिलेक्शन भी था, तो मैम बहुत गुस्सा भी किया, फिर मैं वो गई, फिर 6 मंथ मेरा सर उसमें वेस्ट हो गया। तो एक चीज होती है कि हाँ नेहा नहीं, एक मोड़ आ जाता है कि गिव अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर मैंने हिम्मत रखी कि नहीं, भगवान में विश्वास रख, सब होगा। ये मोड़ सर अभी भी आया, लास्ट टाइम मेरे को नी इंजरी हुई, अभी दोबारा से, अभी मैंने 1 ईयर से कुछ कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं खेला था, और लास्ट अभी यही कंपटीशन खेले सर।
1: नेहा, निसंदेह ऐसे मोड़ आते हैं, आपने बताया कि जो आपकी अपनी विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, वो आपको हमेशा अच्छा करने के लिए
0: यस सर।
1: प्रेरित करती रही है, और यही कारण है कि आज आप यहाँ पर हैं। नेहा, आपके टूर्नामेंट पे वापस चलते हैं,
0: यस
1: एशियन
0: सर।
1: चैंपियनशिप की तरफ चलते हैं,
0: यस सर।
1: इस पूरी चैंपियनशिप के बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए किस तरीके के मैचेस, आपका ड्रॉ कैसे रहा, कौन से मैचेस हुए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही?
0: हमारे मैचेस सर बहुत अच्छे रहे उधर, और हमने सभी टीमों को वन साइड मारा, पर हमारा जो ईरान के साथ मैच था वो थोड़ा टक टू टक चला, ऐसे टफ, कभी इधर कभी इधर, थोड़ा फर्स्ट हाफ में, पर लास्ट में हम 7-8 पॉइंट से हम बिन रहे इंडिया टीम सर।
1: सात
0: यस
1: आठ से
0: यस सर।
1: बहुत छोटी सी विक्ट्री रही है
0: यस
1: नेहा,
0: सर।
1: ये आप फाइनल की बात कर रही हैं
0: यस
1: नेहा।
0: सर, ये फाइनल की बात है सर।
1: अच्छा, आपका इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो सबसे यादगार क्षण है उसके बारे में जरा हमें बताइए।
0: सर यादगार सन तो यही है कि मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है,
1: सही,
0: और मेरा फर्स्ट इंडिया कैंप था, और मैं फर्स्ट इंडिया कैंप में ही इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई सर, ये सबसे बड़ा यादगार पल है मेरे लिए सर।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, हम आज इस चीज को सोच सकते हैं कि एक छोटे से गांव से आप सीधा नेशनल के लिए जाते हैं, फिर उसमें सेलेक्ट होते हैं और फिर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में उससे भी बड़ी बात है कि आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते
0: यस सर।
1: हैं। नेहा, आपके जो इस खेल के दौरान जो आपका अपना खेलने का तरीका, खेलने के स्टाइल है, इसमें कोई कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकमिंग है, कोई कमी है जिसको आप दुरुस्त करना चाहती हैं?
0: सर ये तो टाइमिंग की बात होती है, अगर रेडर टाइमिंग पे काम कर जाए तो रेडर सक्सेस हो जाता है, और डिफेंडर टाइमिंग पे मार दे तो डिफेंडर सक्सेस होता है, ये तो सर बस नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो
1: तो
0: गया
1: कैसे इतनी मुस्तैद रहते हैं, कैसे इतनी चुस्ती
0: सर।
1: के साथ काम करते हैं कि रेडर आया और आपने उसको दबोच लिया, क्या चीज काम करती है उस समय?
0: सर उस टाइम हमें रेडर की आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ता है, और उसके फुटवर्क चेक करने पड़ते हैं, उसका फर्स्ट मूवमेंट किधर जा रहा है और सेकंड मूवमेंट किधर जा रहा है, फिर एक होता है स्ट्रांग कि हाँ खुद को ट्रस्ट होना चाहिए कि अपने ऊपर, कि हाँ हम अभी इस टाइम इसको मार सकते हैं, अगर ये इस मन से हम मारेंगे तो हम सर हमेशा सक्सेस होते हैं, अगर डबल माइंड हो गया मारें या नहीं मारें, अगर मार दिया तो छूट जाएगा, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, कि कोच की भी सुननी पड़ेगी
1: पूरी पूरी टीम की
0: उधर
1: बुराई भी आ जाती है।
0: पूरी टीम की एक गलती सर पूरी टीम को ले डूबती है।
1: सही बात,
0: यस सर।
1: तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हैं कि आपका जो एक जो साइकोलॉजी है, जो
0: यस सर।
1: मनोविज्ञान है, वो भी वहां पर काम करता है।
0: यस
1: कुछ
0: सर।
1: ऐसी कोई ऐसी ट्रिक है जो आप जो नवोदित डिफेंडर हैं उन्हें बताना चाहें कि भाई इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें?
0: सर मैं जब थोड़ा डिमोटिवेट होती हूँ, या फिर मेरे को लगता है ना कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, कैसे होगा, ये चीज हो पाएगी या नहीं, थोड़ा मैं अपने माइंड को फ्री करती हूँ और थोड़ा योगा करती हूँ सर, तो उसे थोड़ा

0: मिलता है, या फिर को अपने जो कोचिस हैं उधर, मेरी कविता मैडम है, जो एस कविता मैडम है जो इंडिया टीम कोच, वो मेरी कोच रही हैं उधर गांधीनगर में। उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया सर, जब कोई मेरे को सपोर्टेड नहीं था तो वो मेरे को माइंडली फिजिकली मेरे को ट्रेन करती थी और समझाती थी, बेटा ऐसा नहीं, तू बहुत आगे जाएगी, तू खेलेगी इंडिया के लिए, वो मुझे समझाती थी इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात सर, उन्होंने फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप ईरान में खेली थी और मैं उनकी स्टूडेंट, मैंने भी फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप ईरान में ही खेली।
1: लेकिन नेहा,
0: और
1: क्या कविता जी भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी?
0: यस सर, वो इन 4 बार इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं सर
1: अच्छा,
0: और अब इंडिया टीम कैप्टन रही हैं सर।
1: बहुत अच्छी बात है। नेहा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो कहानी है ना, ये बहुत स्ट्रगल की है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है छोटी सी जगह से इतनी
0: यस
1: बड़ी
0: सर,
1: जगह जाना, तो क्या संदेश देना चाहेंगी जो स्पेशली जो महिला खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां हैं? क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो काफी इस तरफ अग्रसर है, वो बहुत प्रयासरत है कि जो हमारे ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो पल्लवित हों, वो सामने आए और हमारे लिए मेडल्स लाए, ओलंपिक्स में लाएं। तो अभी आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सर संदेश तो सबसे बड़ा यही, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा मैं ही हो सकती हूँ उनके लिए। मैं चाहती हूँ, मैं निकली हूँ इस छोटे से लेवल से, निकल सकती हूँ तो वो भी निकल सकते हैं। मेरा सर खेलने का मकसद ही यही है कि मैं निकली हूँ, मेरे पीछे और 10 लड़कियाँ निकले और भी इंडिया टीम के ऊपर। सर इधर कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लगातार 2 ईयर से गोल्ड मेडल, आज तक किसी को यही नहीं पता, गांव तक में नहीं पता सर। अभी ये इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है।
1: नहीं, बिल्कुल, हम ये उम्मीद करेंगे कि जो अचीवमेंट आपने हासिल की है, जो मुकाम आपके पास है, उसके बारे में लोगों को पता चले। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जब लोगों को पता चलेगा तो जिस क्रेडिट को आप डिजर्व करती हैं वो आपको मिले, जिससे जो आने वाले बच्चे हैं जो आपको देखकर खेलना चाहेंगे, अभी तो आपका करियर बहुत लंबा है,
0: सर
1: तो उनको भी हौसला मिले, उनका उत्साहवर्धन हो। नेहा, आगे के लिए क्या प्लान्स हैं?
0: आगे सर अभी वर्ल्ड कप का कैंप है और जो जून में होने जा रही है इंडिया में, बिहार में होने जा रही है, तो मेरा अभी कैंप लग जाएगा सर, 1 तारीख से कैंप लगने वाला है। तो मेरा फिर से यही है कि मैं फिर से इंडिया टीम में सेलेक्ट हूँ और फिर से इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ सर।
1: बिल्कुल नेहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले वर्ल्ड कप में गोल्ड लेकर आएंगी और आपकी अपनी जो आपकी टीम की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहेगी। नेहा, ओलंपिक्स के बारे में क्या विचार है?
0: सर ओलंपिक्स में सर कबड्डी अभी नहीं आई है पर सुनने में आ रहा है 36 में आ जाएगी
1: हम
0: बोल
1: उम्मीद
0: रहे हैं।
1: करते हैं कि अगर ओलंपिक्स में कबड्डी आती है और हमारी नेहा अगर खेलती रही वहां पर, तो नेहा अपने देश के लिए कबड्डी में जरूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगी।
0: यस सर,
1: नेहा, कोई और संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी?
0: सर बस मेरे को सिखाया गया है कि अपना जो कर्म और धर्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कर्म है वो हमें कभी उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपने कर्म पे हमेशा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मेरा कर्म है मैं करूंगी। तो जैसे हम भगवान को मानते हैं कि हाँ ये हमारा धर्म है, हम मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं, ऐसे ही ये मेरा भी कर्म है और सभी स्टूडेंट का भी होता है, प्लेयर्स का भी होता है कि हाँ ये हमारा धर्म है, हम अगर सच्चे ईमानदारी से निष्ठा से करेंगे तो एक ना एक दिन हम सक्सेस होंगे।
1: मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ नेहा दक्ष हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी की खिलाड़ी हैं। नेहा से हम बात कर रहे हैं। नेहा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने जब खेल को शुरू किया, आप जिला स्तर पर पहुंची, उसके आगे की कहानी थोड़ी हमें बताइए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ी, कैसे यहाँ तक पहुंची?
0: जिला स्तर पे सर मैंने स्टार्टिंग किया था तो उस टाइम पहले ही साल में मैंने स्टेट कैंप ज्वाइन किया, तो स्टेट कैंप में सर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा पर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं उससे बाहर आ गई थी, मुझे निकाल दिया गया था टीम से। तो सर उसके बाद तुरंत तो मेरा साई का ट्रायल रहा तो मेरा उधर सेलेक्शन हो गया। तो एक चीज़ होती है कि कुछ हमें नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा लिखा है हमारे लिए
1: बिल्कुल,
0: सर।
1: छोटी सी अगर असफलता हमें मिलती है तो उसके पीछे हो सकता है कि हमें बड़ी सफलता मिलने वाली
0: यस
1: हो।
0: सर,
1: तो जब साई का ट्रायल आपने दिया, आप साई में सेलेक्ट हुई, आप गांधीनगर गई वहां
0: यस
1: से,
0: सर।
1: फिर उसके बाद नेशनल लेवल पर आप खेली, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: नेशनल लेवल सर मैं 2021 से नेशनल स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट जूनियर नेशनल वही था मेरा, फिर बैक टू बैक मैंने लगातार नेशनल खेले हैं, यूपी से 2 नेशनल खेले, फिर साई टीम में ने मेरे को लिया, साई से मेरा गोल्ड आया सर।
1: जी,
0: यस
1: तो यूपी से जिन 2 नेशनल्स की बात करें, वो कहाँ कहाँ, वो कौन से खेल थे?
0: सर जूनियर नेशनल था एक यहाँ बिहार में हुआ था और एक हैदराबाद में हुआ था सर, तेलंगाना में।
1: नेहा, जब ये नेशनल गेम्स के दौरान आपकी टीम्स खेलने के लिए जाती थी, आपके साथ में जो टीम के और मेंबर्स होते थे, किस तरीके से उनके साथ बॉन्डिंग होती थी? क्योंकि एक टीम गेम है कबड्डी, इसमें अगर टीम का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या थोड़ा
0: यस
1: सा
0: सर,

0: कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है तो उसमें नुकसान होता है टीम को। तो कैसे आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बॉन्डिंग करते हैं?
1: ये सबसे बड़ी बात है सर। अभी क्या है, मैं मतलब कुछ होता है, कोई प्लेयर शांत रहते हैं, कोई चुलबुले प्लेयर रहते हैं, तो मैं बहुत शांत प्लेयर में से हूँ। मेरे को बस एक ही चीज चलती है, टारगेट, कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर ग्राउंड टाइम ऐसा होता है सर, सबको एक दूसरे की सुननी पड़ती है कि हाँ भाई अभी ये इधर ये करेगी तो हमको मारना है, या फिर तुझे रेड पे जाना है तो ऐसे करना है। ये सब सर टाइम टू टाइम हो जाता है, क्योंकि कैंप में हम कैंप अटेंड करते हैं सर 1 month 15 days का, तो हमें यही सब सिखाने के लिए कि कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन कैसे आए टीम में, तो ये सब चलता है सर।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी आपके साथ रहते हैं, उन खिलाड़ियों के साथ के अपने अनुभव साझा करिए। क्या किसी गैर हिंदी भाषी राज्य के किसी
1: सर
0: खिलाड़ी के साथ आपके कैसे अनुभव हैं, थोड़ा हमें बताइए।
1: सर अधिकतर तो गर्ल्स हमारे हरियाणा की रहती हैं, हरियाणा में, फिर हरियाणवी भी आती है अभी, सब समझते भी है, बोलते भी है। फिर गुजरात में तो गुजराती भी आती है सर, तमिलनाडु, वो तो इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं है, टूटी फूटी है सर, वो एडजस्ट कर लेते
0: तो
1: हैं।
0: जब आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से, बाहर के खिलाड़ी मिलते हैं, तो जैसे आपने कहा आप एक आप शांत प्रवृत्ति की
1: यस
0: खिलाड़ी हैं,
1: सर,
0: आप अपने जोन में रहती
1: यस
0: हैं,
1: सर।
0: लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे चुलबुली भी होते हैं, तो कैसे आप लोग सामंजस्य बिठाते हैं?
1: सर मैं जैसे रूम भी होता है, तो रूम में सबसे पहले मैं तो शांत प्लेयर को रखना पसंद करती हूँ कि हाँ ये शांत है, ठीक है, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अकेले रहना पसंद है, अपने करियर पर फोकस करना, वो सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर गांधीनगर गुजरात में अभी 13 गर्ल्स है, 13, तो हरियाणा और महाराष्ट्र, गुजरात, गांधीनगर और ये सब बिहार से भी है सर, तो ऑल ओवरऑल इंडिया से गर्ल्स उधर हैं, तो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एडजस्ट होता है। अभी मैं उधर सीनियर गर्ल्स में आती हूँ, क्योंकि मेरे जूनियर हैं अभी सर।
0: नेहा, चूंकि आप इस मुकाम पर हैं, आज इतना बड़ा आप टूर्नामेंट जीत कर आई हैं, यहाँ पर आपका स्वागत भी हो रहा है, पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर देखती हैं? नेहा को कैसा लगता है कि नेहा पहले क्या सोचती थी और नेहा आज क्या सोचती हैं?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं घर पे आई हूँ तो इतना अच्छे से स्वागत किया है, जगह जगह फूल मालाएं मेरे को पहनाए गए। मेरा एक यही सपना था कि घर वालों को इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स का सीना गर्व से चौड़ा करते हैं तो उनके अंदर जो खुशी होती है वो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए सर। हम अपने माँ बाप को और उससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकते, एक मान सम्मान से बढ़ के कुछ और होता ही नहीं है।
0: बिल्कुल। नहीं, आपके खेल की तरफ फिर से लौटते
1: यस
0: हैं, क्रिकेट की हम बात करें तो जब कोई खिलाड़ी शुरू करता है तो उसे बताया जाता है, उसके कोचेस बताते
1: यस
0: हैं कि
1: सर,
0: भाई आप बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप एग्रेसिव, आप मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं, आप टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आपने खेल शुरू किया तो क्या शुरुआत से ही था कि डिफेंडर या किसी आपके किसी कोच ने आपको तराशा, उन्होंने आपकी कैपेबिलिटी को देखा, फिर उन्होंने कहा कि आप उसका, थोड़ा सा हमें इस बैकग्राउंड के बारे में बताइए।
1: स्टार्टिंग में जब कबड्डी स्टार्ट किया सर, तो मुझे बस एक लाइन बना के दे दी गई कि तुझे इस लाइन से जाना है और वापस इसी पे आना है, तो मैं उस चीज को करती थी, करती थी डेली डेली करती, पर मुझे ये नहीं पता था ये चीज है क्या, इसका मतलब क्या है सर। लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना होता था, तो जैसे कोई खेलता था इसी पोजीशन पे, बॉयज खेलते थे तो उनको देख देख करके तो मैं उसके पीछे पीछे करने लगती थी, पर उसका ये रीजन ही नहीं पता था कि एक्चुअली है क्या, ये पोजीशन कौन सी है। तो फिर धीरे धीरे पता चला, मैम बोलती थी कि अभी इधर से जब पूरे 7 members खड़े होते हैं, रेडर अंदर आता है, तो मैम बोलती थी मार, तो मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, पेट में सर मारती थी लड़कों। ये नहीं पता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हाँ मार, तो फिर सब डरते भी थे कि नहीं मार, चोट मारती है। और फिर सर उधर स्टेडियम में पेड़ थे, तो मैं पेड़ को ब्लॉक करती थी सामने से, तो सब बोलते थे कि नहीं हाँ पेड़ टूट जाएगा, इतना मारेगी तो पेड़ तिरछा हो गया, पेड़ पे हाथों के निशान तक आ गए थे सर।
0: अच्छा, आप
1: तो
0: पेड़ के साथ ऐसे?
1: पेड़ के साथ प्रैक्टिस करती थी, इंडिविजुअल प्रैक्टिस ज्यादा की अकेले, क्योंकि उधर गर्ल्स तो कोई प्रैक्टिस करती नहीं थी सर, एक दो मुश्किल से आती थी, तो बॉयज के साथ ही लगी रहती थी। बॉयज सब चले जाते थे, स्टेडियम खाली होता था, मैं रहती थी, बोलते अब तो घर चली जा।
0: तो नेहा, जैसे आपने बताया कि आप मारती भी बहुत हैं, तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी कहानी है या कोई किस्सा हो जो आपको याद दिलाता हो, कोई इस तरीके का किस्सा हुआ हो आपके खेल के दौरान कि स्पेशली आपसे डरना शुरू कर दिया हो लोगों ने?
1: यस सर,
0: जी
1: सर जो मेरी पोजीशन है मेन राइट कवर है, तो मैं उससे जब मारती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता मैं मारती परफेक्टली हूँ, सामने वाले को लगती है ये मुझे बाद, मैं तो बोलती हूँ मैं तो आराम से मारे, मुझे तो पता ही नहीं उस चीज का। जी।

0: तो नेहा, आपने बताया कि राइट साइड आप रहती हैं, उसके बाद डिफेंडर का आपका रोल है, इसके अलावा अपने खेल में कोई ऐसी जो सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा आपको दिखता हो कि ये मेरे गेम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत पार्ट है, उसके बारे में हमें बताइए।
1: सर, एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टाइमिंग की. हमें टाइम पे क्या करना है. मैं एज ए रेडर भी खेलती हूँ, एज ए डिफेंडर. जब मेरी ज़रूरत रेड के लिए पड़ती है तो मैं लगातार रेडिंग करती हूँ, और जब डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है तो डिफेंस करती हूँ. सर, ये टाइमिंग पर निर्भर होता है कि अभी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. यस.
0: नेहा, इतने समय से आप खेल रही हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आप खेली हैं, आपकी कोचेज आपके साथ रही हैं, कविता जी का जिक्र किया, अंशु जी का जिक्र किया आपने, हमें ये भी बताइए कि आपकी पसंदीदा खिलाड़ी इतने समय में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आपने सबसे ज्यादा उनके खेल को देख के सीखा।
1: सर, मुझे तो कोई मतलब एक होता है ना कि हाँ, खुद पे फोकस करना है, सामने वाले को नहीं देखना. पर कुछ प्लेयर के होते हैं कि हर प्लेयर में कुछ ना कुछ एक स्किल होती है. तो मैं किस जैसे मैच देखती हूँ कि हाँ, ये इस प्लेयर की परफेक्ट है, तो मैं सर उसको देखती हूँ. तो हाँ, मैं उससे सीखती हूँ कि हाँ, इसकी ये परफेक्ट है तो इसकी इससे ली, और उसकी ये परफेक्ट है तो उसे ऐसे अचीव करती हूँ. जी सर.
0: नेहा, आज के गेम में तकनीक का बहुत इंटरफेरेंस है, तकनीक बहुत हावी है।
1: यस सर.
0: ये देखा जाता है कि आपका मैच, मान लीजिए ईरान से मैच है, आपका फाइनल मैच था ईरान से, तो उससे पहले आप लोग, आपके जो वीडियो एनालिटिक्स होते हैं, वो आपको वीडियोस अवेलेबल करा, तो क्या आपके खेल में, कबड्डी में भी इस तरीके की वीडियोस आपको अवेलेबल कराई जाती हैं कि जिससे कि आप अपने जो अपोजिशन है उसके गेम को एनालाइज कर सकें और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें, ऐसा करते हैं आप लोग?
1: यस सर, ऐसा करते हैं. मैच होने से पहले हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, साथ में सब बैठ के बातें करते हैं. कोचेज होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कि ये देखते हैं ये चीज़ करता है तो हमें इसको कैसे मारना है, या फिर प्लेयर्स स्ट्रांग होते हैं तो उसको कैसे करना है. टीम गेम है सर, अगर एक गलती हुई तो पूरा पूरी टीम जा सकती है. एक एक गलती भी भारी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती
0: तो
1: है.
0: आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल कराए जाते हैं, आप लोग
1: यस
0: बैठ के
1: सर.
0: वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद में उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते
1: यस
0: हैं।
1: सर. वीडियोस तो सर, फोन तो हमारे कंपटीशन से पहले ही जमा हो जाते हैं, पर एक मैम होती है, मैम हमें सबको सजेस्ट करती है, बताती है, दिखाती है कि ये देखो, ये ऐसे कर रहा है. और फिर सर, प्लेयर इस लेवल पे आके खुद भी एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ, ये चीज, ये बंदा भी इस टाइम ये कर रहा है. तो
0: हमारी बातचीत के अंत में नेहा, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि चूंकि आप छोटे से गांव से निकली हैं, उसके बाद आप बड़ी बड़ी जगह पर गई हैं, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, बड़ा शहर है, आप अभी तेहरान से होकर आई हैं, तो जब आप बड़े शहर में जाती हैं, या यूं कहें कि घर से इतना दूर होना, क्या कभी खलता है वो?
1: नहीं सर, मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं गुजरात जाती थी तो 2-3 बार रोई भी हूँ. मतलब रो पड़ती थी, मम्मी भी रो पड़ती थी, चाची भी रो पड़ती थी. तो थोड़ा लगता था कि हाँ, कुछ तो है, कुछ मिस कर रहे हैं. पर जब मैं उधर गई, प्रैक्टिस स्टार्ट किया, फिर तो मैं फोन भी नहीं करती थी. 8-8 दिन तक घर फोन ही नहीं किया. क्योंकि एक लगन होती है किसी चीज की, हाँ, ये ठान लिया तो करना ही है. घर वाले बोलते थे, बेटे तू फोन क्यों नहीं करती. मैंने कहा, फोन करके करूंगी क्या. तो मतलब एक चीज होती है. तो अभी तो सर, आती हूँ जाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती सर. और सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है सर. 15 मेंबर्स मेरी फैमिली में है जो मेरे को अभी पूरा सपोर्ट करते हैं. और मेरी चाची चाचा मतलब इतना प्यार करते हैं. मैं कभी भी जाती हूँ, वो ही मेरा बैग पैक करके देती है.
0: नेहा, आप हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में आई, आपने ये खूबसूरत सा इंटरव्यू हमारे साथ किया और तमाम श्रोताओं को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया, संदेश दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुलाकात कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री नेहा दक्ष से शोभित शर्मा की बातचीत. मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं. कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए.
3: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा की ये आकाशवाणी है. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी. प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट. यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे.
4: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,

0: నౌ క్వశ్చన్ నంబర్ 241 శ్రీమాన్ జీసీ చంద్రశేఖర్ జీ.
1: ప్రశ్న సంఖ్య 241. क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
0: Now I will mention. Speaker sir, they never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, no, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of Vanyan, except the Gargaji. I am always under the pressure of Gargaji, not of anybody else. Honorable Minister, First Supplementary Dr. Lakshmikant Bajpayee. Then First Supplementary G.C. Chandrasekhar.
2: Sir,
0: supplementary Shriman G.C. Chandrasekhar.
2: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
0: Sir, you
2: this
0: please,
2: is my request. Do not off the mic, sir.
0: I am allowing you. Sir. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpayee ji. I
3: want to know from your question, Mr. Offshore energy ke kya fayde hai aur inke liye kya sarkar ne koi rashtriya niti banayi hai.
1: Shripad Yasho Naik, Navin evam Navikaraniya Urja Rajya Mantri.
4: Sabhapati Mahoday, Bharat ke liye offshore wind energy kai strategic advantages pradan karti hai. Usme se air capacity utilization factor Tamil Nadu mein lagbhag 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीवेज उपलब्ध है जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है. माने अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है. तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय. चौथा है तो कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है. सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है. इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है.
0: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी.
5: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस The renewable energy in hydro project, as well as in wind project, how much it is affected? Is there any losses? If it is there, has it been measured? And I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and flood and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
0: Honorable Minister.
4: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है. ये जो प्रश्न है
6: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे. दिस ब्रॉडकास्ट

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का खेल दर्पण आकाशवाणी के ओबरा केंद्र की प्रस्तुति है।
1: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस अंक में प्रस्तुति आकाशवाणी ओबरा की। श्रोताओं, खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन की पहचान भी है। किसी भी खिलाड़ी की सफलता की शुरुआत बड़े मंच से नहीं बल्कि छोटे छोटे अवसरों से होती है। जिला और मंडल स्तर पर आयोजित चयन प्रतियोगिताएं ऐसे ही अवसर प्रदान करती हैं, जहां स्थानीय प्रतिभाएं अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर प्रदेश स्तर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं जनपद सोनभद्र में हाल ही में आयोजित विभिन्न खेलों की चयन प्रतियोगिताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। जिला खेल कार्यालय सोनभद्र द्वारा खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और संबंधित खेल संघों के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जिला एवं मंडल स्तर पर चयन और ट्रायल का आयोजन किया गया। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर महिला बास्केटबॉल की। इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन 21 जुलाई को तियरा स्टेडियम रॉबर्टसगंज सोनभद्र में आयोजित किया गया। इसके उपरांत 22 जुलाई को मिर्जापुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय चयन संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ी ने 27 से 19 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद और मंडल का प्रतिनिधित्व किया। इसी क्रम में सीनियर महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों का जिला स्तरीय चयन 22 जुलाई को तियरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में संपन्न हुआ और इसी दिन मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया। चयनित खिलाड़ियों ने 27 से 29 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। और अब बात करते हैं जूनियर बालक फुटबॉल की। इस वर्ग का जिला स्तरीय चयन 21 जुलाई को आयोजित किया गया और 23 जुलाई को मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ियों ने 1 से 8 अगस्त तक मऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और वहीं जूनियर बालिका फुटबॉल के लिए भी जिला खेल कार्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। 7 अगस्त को तीरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज में जिला स्तरीय चयन और उसी दिन मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल संपन्न हुआ। इन चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ी 10 से 17 अगस्त तक अमेठी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में जनपद सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से जिला खेल कार्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसी चयन प्रतियोगिताएं जनपद के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रदेश स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही हैं। और हमें ये विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल जनपद सोनभद्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित करेंगे। और अब खेल दर्पण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश योगासन

0: स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सोनभद्र के संयुक्त सचिव, साथ ही सोनभद्र योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव के रूप में खेलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा नमस्कार।
0: जी सर। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका जुड़ाव खेल से कब और कैसे शुरू हुआ, क्या दिशा रही, क्या संकल्प रहे, क्या प्रेरणा रही इस बात के लिए आपकी?
1: पहले मैं कंपनी में काम करता था, तो मैं देखता था कि बच्चे खेल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम, मैंने 2014 में मैंने देखा कि उसमें काफी बच्चों ने गोल्ड मेडल लाया, जिसमें भारत का नाम बहुत आगे था। उसमें गोल्ड मेडल में भी काफी बच्चे थे, सिल्वर मेडल में भी थे और हमारे ब्रॉन्ज में भी थे। काफी इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा गेम किया, उनको देख करके मुझे भी लगा कि मुझे भी खेल में जाना चाहिए। उससे ऑब्वियसली क्या है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, एनर्जेटिक रहती है, तो दिन भर बॉडी में एनर्जी रहती है। तो मैंने फिर खेलना फिर शुरू किया। मैं पहले क्रिकेट में मैं रेलवे स्टेडियम की तरफ से पहले मैं खेलता था क्रिकेट, फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर और गेमों में मैंने जुड़ना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि अगर इतना एनर्जी महसूस कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो अभी नई युवा पीढ़ी है, तो उनको आगे बढ़ाने में भी हमें अपना योगदान देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: अपने साथ साथ फिर मैंने बच्चों को भी खेलने के लिए आगे प्रेरित करना शुरू किया। शुरुआत में फिर मैंने योगा में मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने फिर बीपीएड किया। फिर मुझे सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश की, जिससे मुझे योगासन खेल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा गया कि आप बच्चों को जोड़िए, बच्चों को समझाइए। तो उस तरीके से फिर मैंने योग के प्रति जागरूक करने के लिए फिर मैंने स्कूलों में, संस्थाओं में जा जा करके फिर मैंने स्कूलों के प्रिंसिपल से बात करके फिर मैंने बच्चों से फिर बात की। तो उस तरीके से फिर धीरे धीरे करके इसी तरीके से खेल की शुरुआत हुई।
0: यानी कि एक क्रम बनता चला गया, आपने देखा, समझा और अंदर लगा कि नहीं, जो मेरे अंदर है और इस जिसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़े, तो दिशा स्टेप बाय स्टेप मिलती ही चली जाती है।
1: जी, बस मेन क्या होता है कि अगर आप किसी भी काम में अगर लगे, तो अगर उसमें एक बार आपको लाइन मिल जाए, तो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे।
0: बिल्कुल। अच्छा, इतने बड़े पद पर हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे बैलेंस करते हैं सारी चीजों को आप?
1: सर, बैलेंस करें, खेल एक ऐसा बॉडी में एनर्जी फील करता है ना, कि उसमें लगता है कि अब किसी काम में अगर लगो तो ऑफिसली करते चलो।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छा फील होता है खेल के साथ जुड़ने में, और मुझे लगता है कि ऑफिसली सभी बच्चों को खेल से जुड़ना चाहिए, जिससे उनका अच्छा विकास हो सके।
0: जी। और जब नियंत्रण की ही सर हम बात कर रहे हैं, तो आप योगासन और एथलेटिक्स दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, तो क्या सामंजस्य दोनों में आप देखते हैं?
1: सर, खेल और जैसे योगा है और एथलेटिक्स है। योगा क्या होता है कि वो बॉडी में लचीलापन आ जाता है, बॉडी में मजबूत आ जाती है। अब जैसे योगासन की भूमिका में अगर हम देखें, तो उसमें मानसिक शांति जरूरी होती है। योग में क्या होता है, मन को शांत करने के लिए होता है, दिखाया जाता है, तनाव को दूर भगाता है वो। अब एकाग्रता भी जरूरी होती है, अगर हम ध्यान को लगाएंगे तभी तो शक्ति को बढ़ाता है वो।
0: बिल्कुल।
1: उसमें आपका पढ़ाई और काम दोनों चीजें होती है, तो उसमें सुधार होता है काफी।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आंतरिक स्वास्थ्य भी जरूरी होता है। योग जो होता है वो हमारे अंदर जो अंग होते हैं उनको स्वस्थ रखते हैं। योग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है वो, या जीवन में संयम और नियमितता को लाना सिखाता है। एथलेटिक की भूमिका में क्या होता है कि बच्चे उस शारीरिक फिट रहते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, तो उसमें शरीर में शक्ति होती है, गति और सहनशीलता को बढ़ाता है एथलेटिक्स। उसके बाद इसका एक दूसरी भी पहलू है कि टीम भावना। एथलेटिक जो होता है वो समूह में रहना सिखाता है, क्योंकि जब एक टीम बनती है तो ऑब्वियसली उसमें एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है, क्योंकि क्या, अगर हम टीम भावना से नहीं खेलेंगे तो टीम आपकी कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये चीजें जरूरी होती है एथलेटिक्स में। फिर संघर्ष क्षमता होती है, कि वो हार जीत को दोनों तरह समान भाव से वो देखें। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार हार गए तो आपने खेलना छोड़ दिया। अब आज की डेट में हारने की डिफिनेशन ये होती कि आप हारने से सीखोगे, ऐसा नहीं होता कि आप हार गए तो आप दोबारा नहीं खेलोगे। आप उसमें सीखो कि आपने क्या गलतियां की, ताकि हम जिससे हम आगे जाकर के हम उस गलतियों को अपनी हटा सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को हम पा सकें।
0: बिल्कुल सही बात कि अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा ही होगा, और अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अच्छा सर, एक लंबा समय आपको खेल प्रशासन से जुड़े हुए हो गया, तो आपके अनुभव में किसी भी जनपद में, या अपने जनपद सोनभद्र की ही हम बात करें, तो खेल संस्कृति को विकसित करने में प्रशासन, विद्यालय और समाज, इन तीनों की भूमिका किस प्रकार से एक दूसरे

0: जुड़ी हुई है, क्या कहते हैं इस बारे में आप?
1: मैं जब से खेल में जुड़ा हूँ, आज मेरे पास उत्तर प्रदेश के 47 जिले ऐसे हैं जिनमें बच्चे, उनमें योग और एथलेटिक्स दोनों खेल में बच्चे भाग ले रहे हैं। आज मैं अभी इस समय 437 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ। जो बच्चे हर खेल में आगे निकल रहे हैं, खो खो में हो गया, योगा में हो गया, रेस में हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, बैक थ्रो हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो काफी खेलों में बच्चे अब इस समय आगे निकल रहे हैं। खिलाड़ियों में अब जैसे कहे कि सोनभद्र हमारा पिछड़ा है, यहाँ पे आदिवासी लोग ज्यादा हैं, ग्रामीण अंचल में क्या है, संभावनाओं का बहुत अभाव है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है कि खेल में संस्थाओं, विद्यालयों और समाज को बेहतर समन्वय की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसमें युवाओं को सही मंच और सहायता नहीं मिल सकती। इसमें इनके संसाधनों को दूर करने के लिए इसमें विद्यालयों और खेल संस्थाओं को मिलकर बुनियादी ढांचा को इसमें तैयार करना होगा, जिससे कि ग्रामीण के बच्चे भी आगे आकर के अपनी अपनी प्रतिभा को आगे पहचान दें अपनी। उसमें आर्थिक सहयोग भी बहुत जरूरी है, समाज और स्थानीय खेलों को मिलकर खिलाड़ियों को उसको स्पॉन्सर करें जिससे बच्चे हमारे आगे जाकर के खेलें। सोनभद्र क्या है, हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे खेल को लेकर के अब जो अब मतलब जैसे कहें कि जो सोच है वो थोड़ी कम है यहाँ पे। मेन यहाँ पे क्या होता है कि खेलों को ये लगता है कि अरे खेलेंगे कूदेंगे तो यार हम पढ़ाई कब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में जितना पढ़ाई आपके लिए जरूरी है उतना आपके लिए खेल भी जरूरी है। आपका पढ़ाई से भी विकास होता है, आपका खेल से भी विकास होता है। खेलना भी इसलिए जरूरी है कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप खेलोगे कैसे, और बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए आपको खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें विद्यालयों का भी योगदान बहुत जरूरी है। विद्यालय अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें, उनको भेजें कि बच्चों को खेलो तुम लोग, ताकि उसमें तुम लोग आगे निकलो। इस तरह की संभावना यहाँ पे बहुत कम है, तो इसमें प्रशासन को मिलकर के, स्कूलों के साथ मिलकर के ऐसा आगे मतलब कोशिश करें कि जिससे हमारे बच्चे खेल में भी आगे निकले।
0: अच्छा सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग भी माना गया है, तो आपके हिसाब से इस सोच को व्यावहारिक रूप देने के लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है?
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे जो खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, अब सोच को लेकर के जितने भी स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक रूप में देने की जमीनी स्तर से इनको खेल के लिए बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। खेल के विद्वानों का अच्छा विकास हो, स्थानीय कोचों की नियुक्ति हो, स्कूल और पंचायतों के बीच सहयोग हो, और सामुदायिक खेल आयोजनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक बच्चों में आगे खेल की भावना जागरूक नहीं होगी। उसमें बुनियादी ढांचे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे हर पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, वहाँ पे खेल का मैदान बने जिससे बच्चे उसमें खेलें जा करके। उसके बाद स्कूलों की बुनियाद में भी खेली उपकरण की बहुत ज्यादा सुरक्षित भी रहना चाहिए। और अब जैसे क्या होता है, कुछ बच्चों को चोट लग जाती है, अब उनको लगता है अरे अब हम आगे नहीं खेल पाएंगे, तो इस तरीके से उनको ऐसी चीजें बताई जाए या उपलब्ध उनको कराई जाए जिससे बच्चों को अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो वो आगे जाकर के खेल के लिए ऐसा ना हो कि उनका अंदर से विकास कम हो, मजबूत हो जाए, जिससे वो अंदर वो आगे देश का नाम रोशन कर सके।
0: बिल्कुल सर। और जैसे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि हमारा जनपद सोनभद्र जो है काफी पिछड़ा हुआ है, अभी भी यहाँ से बहुत सी कमियां हैं, बहुत ही संसाधनों की कहीं ना कहीं बाधक बनती है एक अच्छे खिलाड़ी के प्रदर्शन में, जबकि हमारा सोनभद्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं अगर उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है या पहुंच सकता है वो खिलाड़ी, तो सबसे बड़ी बाधा आपको क्या लगती है इस बारे में?
1: मेन देखिए सबसे क्या होता, सबसे जरूरी चीज होता है पहले जो भी बच्चा होता है वो पहले घर से शुरुआत करता है। जैसे युवा खिलाड़ी जितने भी होते हैं, अब उसमें क्या होता है जब तक उनके माता पिता उनको प्रेरित नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा आगे कैसे निकलेगा। तो उसमें खिलाड़ियों के लिए भी सबसे पहले माँ बाप उनके होते हैं जो उनको खेल के लिए प्रेरित करें कि बेटा तुम खेलो भी, पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो भी। पहले होता था ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो ऐसा ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चों को उनको प्रेरित करें कि रोज वो डेली अभ्यास करें खेलों के लिए। अगर आप हार भी जाते तो ये मत सीखो कह रहे हम हार गए तो हम दोबारा नहीं खेल पाएंगे, आप उससे और अच्छा करने की कोशिश करो, अनुशासन में रहो, समय पर आए और अपने कोच की बात सुने, जो भी आपको कोच बता रहा है उसको सीखो किस तरीके से नियम होते हैं, उसके बाद हमेशा ईमानदारी से खेलने के लिए सीखो।
0: अच्छा सर, इतने साल का आपका अनुभव है और आप खेल के साथ जुड़े हैं, खिलाड़ियों के साथ जुड़े हैं और अभी आप सोनभद्र में हैं, तो यहाँ की जो स्थिति परिस्थितियों को समझते हुए अगर आपको खेल के विकास के प्रति एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करनी हो तो उसमें आपकी क्या प्राथमिकता होगी?
1: देखिए आज भी खेल का

0: समय समय पर करवाएं ताकि बच्चे उससे ट्रायल में छट करके वो आगे जाएं। आर्थिक सहायता भी बच्चों को बहुत जरूरी है, जैसे बच्चों को कहीं जाना है खेलने के लिए, अब गरीब बच्चे हैं तो उनको कहीं से कोई सहायता मिल नहीं पाती, वो बच्चे अपने प्रतिभा को वो दिखाई नहीं पाते, तो उस कारण से बच्चे आगे जा ही नहीं पाते हैं। अब उनका खर्च उठाने के लिए भी उनको चाहिए ना, जब तक उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा या प्रशासन उनका साथ नहीं देगा तो कैसे बच्चे आगे जाएंगे।
1: बिल्कुल, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें विचार करना होगा और यही प्राथमिकता होगी।
0: खिलाड़ियों को निखारने के लिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो खिलाड़ी कैसे आगे निकलेगा।
1: बिल्कुल, और अब सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनपद में जो भी हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनकी आगामी क्या तैयारियां हैं, कहां कहां उनका प्रदर्शन है और क्या इस बारे में तैयारी हो रही है, सर इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर
0: अभी हमारे सोनभद्र में क्लस्टर चल रहा है जिसमें हर तरह के गेम उसमें रखे गए हैं, जिनमें खो खो है, योगा है, चेस है, वेट लिफ्टिंग है, टाइकांडो है, डिस्कस थ्रो है, शॉटपुट है, तो इन खेलों को लेकर के अभी क्लस्टर शुरू हुआ है। तो अभी सारे बच्चे इस समय खेल में, कोई यहाँ पे है सोनभद्र में है, कोई बाहर जा रहा है खेलने के लिए, तो उस तरीके से अभी सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं 1 तारीख से। तो अभी सब गेम इस तरीके से चलाया जा रहा है, जैसे अभी आगे आने वालों में अभी योगा का गेम होने जा रहा है, योगा के बाद ताइक्वांडो है, ये अभी क्लस्टर शुरू होने जा रहा है। बाकी सरकार की तरफ से भी, जिला खेल अधिकारी की तरफ से भी फुटबॉल के लिए इसमें शुरुआत की गई है बालिका के लिए। अभी इसके पहले जो खेल हुआ है वो बास्केटबॉल का ट्रायल किया गया 21 जुलाई को, जिसमें ट्रायल के बाद हमने इसमें मंडल स्तर पे बच्चों को भेजा है। 22 तारीख को इनका मंडल पे ट्रायल था क्योंकि इनका प्रदेश स्तर पे खेल होना था 27 से 29 जुलाई के लिए
1: जी।
0: तो हमने बच्चों का चयन करके फिर हमने वहां पे भेजा। इसी के साथ हमने हैंडबॉल में भी सेम यही प्रोसेस हमने किया जिसमें 21 को ट्रायल करवाया, ट्रायल के बाद मंडल, मंडल के बाद फिर हम प्रदेश स्तर पे बच्चों को भेजते हैं। इसी प्रकार हमने बालक में भी फुटबॉल के जूनियर बालक को भी हमने तैयार किया है जिसमें हमने यहाँ पे ट्रायल करवाया जिसमें बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं। अभी हमारा कल से एक ट्रायल शुरू हो रहा है जूनियर बालिका के लिए। बालिका में भी हमने मंडल स्तर पे पहले रखा है, पहले ट्रायल होगा जिला स्तर पे, फिर वो जिला स्तर से वो मंडल स्तर पे ट्रायल लेने जाएंगे, तब उनका प्रदेश स्तरीय में उनका सिलेक्शन होगा जो कि 10 से 17 अगस्त में होना है।
1: बच्चों के अंदर कैसा जज्बा दिख रहा है, किस तरीके की उनसे उम्मीद आप लोग कर रहे हैं?
0: बच्चे बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है कि बच्चे जब एक दूसरे को देखते हैं कि अरे उसको आज गोल्ड मेडल मिला, उसको आज सिल्वर मेडल मिला, तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है।
1: बिल्कुल,
0: कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी मिलेगा। तो इस समय बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, क्लस्टर में भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें बच्चे हमारे आगे में बहुत अच्छे निकलेंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे भी सर कि जनपद के जो बच्चे हैं आगे आएं और देश का नाम रोशन करें। चूंकि आपने ये बात कही कि जनपद सोनभद्र काफी पिछड़ा है, बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध नहीं है, बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका बच्चे सामना करते हैं, और ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर जज्बा है और आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ जो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये भी हमारे लिए, हमारे जनपद के लिए खेल प्रेमी के तौर पर बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: ये तो देखिए, जब तक हम बच्चों के साथ लगेंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे निकलेंगे, बच्चों को मार्गदर्शन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अब अंत में सर आकाशवाणी के माध्यम से आप सोनभद्र के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं जिस वक्त आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको और उनके अभिभावकों और जो हमारे खेल प्रेमी हैं जो इस कार्यक्रम से भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप?
0: मैं अपने युवा खिलाड़ी और अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप बच्चों के देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस खेल में भाग ले रहे हैं, वो किस चीज में वो रुचि कर रहे हैं जिससे कि उनको आगे बढ़ने में उनको उनको अच्छा लगे।
1: बिल्कुल,
0: आप उनका हौसला बढ़ाइए, खेल में संतुलन रखिए, ऑब्वियसली दोनों चीजें ही जरूरी है क्योंकि आज की डेट में दोनों ही बराबर हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: कभी भी बच्चे पे दबाव मत डालें कि नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, खेलते नहीं हो, खेलते नहीं हो, ऐसा नहीं है। बच्चों को आराम से उनसे बातें करें, उनको चीजों को समझें। जब तक आप बच्चों को जानेंगे नहीं उनको क्या चाहिए या वो किस चीज में आगे जाना चाहते हैं, तब तक बच्चे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों की पहली सीढ़ी उनके माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि माँ बाप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे ही आगे जाएंगे। वो
1: बहुत अच्छा संदेश रहा सर आपका कि बच्चों के साथ लगे रहिए क्योंकि ये वही उम्र है जब उनका हाथ थामने की आवश्यकता होती है, और निश्चित एक हार कभी न कभी एक जीत में जरूर परिवर्तित होगी, ये बात समझने और समझाने की आवश्यकता है। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको मिलवा रहे हैं जनपद सोनभद्र के अंतर्राष्ट्रीय ताई

0: क्वांडो खिलाड़ी श्री रवि सिंह से, जिन्होंने थाईलैंड, नेपाल और हाल ही में रोमानिया में आयोजित विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक पद अर्जित कर जनपद और देश का नाम रोशन किया है। रवि जी, कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सबसे पहले आकाशवाणी ओबरा के सभी श्रद्धालुओं को मेरा सर नमस्ते, जय हिंद। मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के बॉयलर को जनरेशन विभाग में कार्यरत हूं और पिछले कई वर्षों से मैं ताइक्वांडो के माध्यम से भारत का नाम रोशन कर रहा हूं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में स्टेट खेला था, तभी मैंने यह फैसला कर लिया था कि कठिनाइयां कितनी भी आए पर लक्ष्य मेरा एक ही रहेगा, कभी न कभी विश्व स्तर पर मैं भारत का नाम रोशन करूंगा और तिरंगे को लहराऊंगा।
0: बिल्कुल, और ईश्वर ने आपको वो मौका भी दिया। और कहते भी ना कि जहाँ सच्ची लगन हो वो चीजें, वो मुरादें जरूर पूरी होती हैं। और जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी मेहनत भी शामिल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो गुरुजन हैं, जो कोच हैं, उनका भी आशीर्वाद है। तो बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ताइक्वांडो से आपका जुड़ाव कैसे हुआ।
1: स्कूल टाइम में जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ने के लिए गया था, तो स्कूल में हमारे पीटी टीचर ने बोला कि आज सभी बच्चों जाओ, आज मार्शल आर्ट सीखना है। तो हम लोग पीटी टीचर भेजते हैं पीटी करने के लिए, तो हम लोग कि बोले कि आज चलो आज सीखेंगे मार्शल आर्ट, उड़ उड़ के मारना सीखेंगे। तो बस एक उसी लक्ष्य से हमने गए कि मार्शल आर्ट में उड़ उड़ के मारना सीखने जाएंगे। पहले दिन गए तो सर ने केवल एक वार्म अप करना सिखाया, दूसरे दिन गए तो वार्म अप करना सिखाया, मतलब ऐसे ही करते करते उसमें कब वो रुचि बन गई, कब एक अनुशासन में बंध गए और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला।
0: और जैसा कि आपने बताया कि हिंडाल्को में आप बॉयलर कॉर्पोरेशन में एक ऑपरेटर के पद पर आप कार्यरत हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रति इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपने खेल को लेकर के साथ चलना, तो इन दोनों का बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया?
1: सर, चुनौतियां तो बहुत बड़ी है। कहते हैं कि दो नाव पे चलेंगे तो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन है, बार बार आती है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए 8 घंटे आप जॉब को भी देना है, फैमिली को भी साथ में देना और अपने खेल को भी रुचि रखना है। पर मैं कहता हूं कि दो नाव पे चलना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। आप अगर आपके अंदर एक लक्ष्य हो तो आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। तो मैं जिसके प्रति मैं 8 घंटे जॉब करने के बाद जब भी मुझे समय मिलता था, जैसे मेरी ए शिफ्ट ड्यूटी रहती थी तो मैं रात में प्रैक्टिस करता था, और जब मेरी नाइट ड्यूटी रहती थी तो मैं दोपहर में प्रैक्टिस करता था। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था तो वहां का मौसम बारहों मास ठंडी रहता है, उस ठंडी को माहौल को ढलने के लिए मैं रात में 1-2 बजे जग के रनिंग करता था कि अब मेरी इंड्रेस उस माहौल में ढल सकूं मैं। तो घर में मम्मी भी बोलती थी कि मेरा बेटा पागल हो गया है क्या कि रात में जग के ये 1:30-2 बजे जॉगिंग कर रहा जा रहा है। तो वो सब चीजें को मतलब मेरे लिए वो ताकत रही, और जो आज मैं इतने देश का नाम रोशन कर पा रहा हूं यही मेरे लिए बहुत बड़ी
0: यही होता है ना कि जीत के पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है। अगर हम उस कड़ी मेहनत को देखें, उस जज्बे को समझें, तभी हम कुछ करने का हौसला अपने अंदर रख पाते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो युवा खिलाड़ी इस वक्त आपको कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जीत इतनी आसान नहीं होती, नींद हारनी पड़ती है, समय हारना पड़ता है, तब जाकर के गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेडल्स हम देश के लिए ला पाते हैं।
1: पिछले कई वर्षों से लगातार मेरी मेहनत थी, आज वो मेहनत मेरे हकीकत में बदल चुके हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा, अभी मैं कुछ अपने रिसेंट का अगर मैं बताऊं तो मेरी नेपाल देश में मेरा गोल्ड मेडल था, रोमानिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल था, और अभी हाल ही में थाईलैंड में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये सब मेरी अपॉर्चुनिटी रही, मेरी अचीवमेंट रहे, और इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए मैंने कड़ी मेरी कई वर्षों की मेहनत थी और माता पिता का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये चीज संभव नहीं था।
0: बिल्कुल सही बात, और वो आप पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हमारी जो क्षमता होती है प्रदर्शन की वो और भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की जर्सी पहनकर उतरने का जो ये अनुभव था कैसा रहा, उसके बारे में बताइए, वो जो फीलिंग थी वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सर, भारत का जर्सी पहनकर खिलाड़ियों का एक पहना एक सपना होता है, बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, और जब तिरंगे का सीने पर जब हमारे होता है तो हमारी जज्बा होती है, वो बहुत ही एक ही उम्मीद रहती है कि आप हमको भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करना है, और देश के प्रति वो अनुभव में वो शब्द बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सर एक खिलाड़ी का ना एक हर सपना होता है कि वो इंडिया पीछे लिखा हो और आगे हमारा तिरंगा हो, और बस अपना वेस्ट करना है और देश का हमें बस परचम नहलाना है और तिरंगे को लहराना और अपने मेडल तालिका में भारत को आगे ले जाना है।
0: बहुत अच्छी बात, आप बोल रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातें सुनकर की। ये जो जज्बा आपकी बातों से झलक रहा है कि आपने मतलब बोला तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने वो सारा दृश्य चल रहा है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है और आप देश का नाम अपने सीने पर महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है।

0: सच में एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़े गर्व की बात भला क्या ही हो सकती है। अच्छा, आपने, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदक अपने नाम किए और आपने बताया भी, लेकिन अगर इनमें से किसी एक उपलब्धि की बात करें जो आपको हमेशा यादगार रहेगी, तो वो कौन सी उपलब्धि होगी?
1: रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड क्वान किलो चैंपियनशिप जो कि यूरोप के देश में हुआ था, वो मैंने वहां पर रजत पदक जीता। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा वो मोमेंट रहा, क्योंकि मेरी फरवरी में ही मेरे पापा की देहांत हुआ था और उसी समय मुझे पता चला था कि मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। एक तरफ पापा का वो दर्द था और एक तरफ पूरे भारतवर्षों का जो एक जज्बा था कि देश के लिए भी कुछ करना है। तो मैं वहां जब गया था तो मैं बस एक ही लक्ष्य था कि मैं देश के लिए पदक जीतूं। और जब मेरी फाइट जब जर्मनी के साथ हुई थी तो मैं वहां पर मेरे इंजर्ड भी हो गया था, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। जब मैं गिर गया तो मेरे कोच ने बोला कि बस रवि, तो मैं उधर देखा तो बस तिरंगा, तो मैं बस एक ही, मेरे अंदर में एक अलग सी एक एनर्जी आ गई और बस मैं यही बस देखा कि अब कुछ भी हो जाए बस मुझे वेस्ट करना। मेरे हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी कहते ना सर कि अगर रेस में आगे बढ़ना है या तो उससे तेज दौड़ जाओ या तो बगल वाले को लंगी मार के गिरा दो। तो उन्होंने भी वही सेम कंडीशन किया, मेरे को उन्होंने इंजर्ड किया, अपने पॉइंट्स एक उन्होंने खोए, पर मैं इंजर्ड होने के बाद भी मैंने रोमानिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि वहां पर 37 देशों के खिलाड़ी आए थे। उस बीच में मैंने तिरंगे को लहराया, वो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण वो रहा सर।
0: गिर कर उठने का हौसला आपने जो आगे बढ़ करके दिखाया और वो भी अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज देखा, जज्बा और ज्यादा 100 गुना हो गया। उस वक्त आप इंजरी भूल गए, लगा कि नहीं बस यही मौका है और करके दिखाना है।
1: जब भी सर एक वानकीडो की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड खोला जाएगा तो अपने जनपद सोनभद्र का भी नाम वो जरूर आएगा, तो मुझे बहुत खुशियां होती है और सदभाव से भरा रहा सर। इतनी मतलब कि कहते ना सर, क्योंकि इस बीच में जनपद सोनभद्र से आगे बढ़ना, क्योंकि खिलाड़ियों को सर ना जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये सच्चाई है सर। जब आप जीत जाते हैं तो आपको हर वो खुशियां मिलती है।
0: बिल्कुल, उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। और जिस समय आपका संघर्ष का समय था, आपने संयम रखा और जैसा कि आपने बताया कि आप ऐसे विकट परिस्थिति में थे जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, फिर भी आप लड़े, हिम्मत बनाए रखे, घर वालों का विश्वास जीतने का प्रयास किया और इन सब के बीच आपने देश का नाम रोशन कर लिया, अपने जनपद का नाम रोशन कर लिया। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने माता पिता का नाम रोशन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे की आपकी खेल यात्रा और उसका क्या लक्ष्य है, क्या प्लानिंग है आगे की?
1: आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कहते ना स्वर्ण पदक जीतेंगे तो एक धुन बजती है, वो राष्ट्र का सर धुन बजती है। तो बस मैं अपने पूरे हिंदुस्तान का वो राष्ट्र धौन में सुनना चाहता हूँ और देशवासियों को सुनाना चाहता हूँ, और आने वाले समय में वो जरूर मैं अपने पूरे देशवासियों को वो राष्ट्रीय ध्वज सुनाई देगी। और मेरा लक्ष्य भी आगे है, मैं इतने से हार नहीं मानूंगा और मैं बस एक ही बस मैं अपने इस आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से बस यही कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी महिलाएं हैं, युवाएं हैं या लड़कियां हैं जो अपने इस मेरे सुन रही है, तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अब लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दे।
0: बहुत ही अच्छा संदेश भी आपने दिया कि लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान दें और एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर जो भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जहां और जिससे भी आप अपना, अपने घर परिवार का, अपनी जगह का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी।
1: धन्यवाद सर।
0: खेल दर्पण कार्यक्रम में ये था आज का अंक। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी ओबरा की।
2: दर्पण।

मीडियम वेव 314.467 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को रेणु कोटनाला का प्यार भरा नमस्कार और बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आपके पसंदीदा गीतों को लेकर हाजिर हैं हम, और आइए शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों को पढ़ने का सिलसिला। तो ये जो पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है, ये है मोहल्ला हलवायान शेरकोट ज़िला बिजनौर से। मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया,

साजरानी और हिना कौसर। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नियमित आहूजा। परिमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम, सैफी मास्टर, जाहिद अली, मीरा सराय। बदायूं से श्रोता हैं आफरीन खान और जमीर खान। जसपुर रोड दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी और इनके सभी साथी। ग्राम फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूटी, प्रमोद कुमार डूटी और पुष्पेंद्र कुमार डूटी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई, मीराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, नक्की नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा ने फरमाइश की है लाल कुर्ती रोड के कैंट से। और कवाई बारा राजस्थान से श्रोता हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रमिला श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षित, अभिषेक श्रीवास्तव। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। और इसी गीत को सुनना चाहे राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। और एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है, जसपुर उत्तराखंड से श्रोता है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत जिसे हमने लिया है फिल्म नूरी से, आवाज लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है, शब्द रचना है जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम का।

लगातार हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए फरमाइश आई है विलेज और पोस्ट राहु नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंगल का चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का चौहान और भव्या चौहान की, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, राफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी, शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद मंसूरी, अरशद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, सिंधौली बरेली से हमारे श्रोता हैं जिशान वारसी, मारहारा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी, चांद वाली मस्जिद मुरादाबाद से मेराज अंसारी, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। नांदेड़ महाराष्ट्र से श्रोता हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवा गाविया मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जसपाल यादव, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम फरमाइश करते हैं ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, और ये फरमाइश हम तक पहुंची है मोहम्मद फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान की, गणेशपुर, गंजुडवारा, एटा उत्तर प्रदेश से, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान, आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मुक्ति से। आवाज़ मुकेश की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का जो अगला मैसेज हमें मिला है वो आया है दीदार रेडियो श्रोता संग बिलराम गेट कासगंज से, मोहम्मद असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सदाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान का, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी के साथ हैं शमशुल यासीन गंज डिंडवारा से। ये फरमाइश हम तक पहुंची है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा और ऊपर कोट बुलंदशहर से श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा आबासी परिवार, इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशा खान फरमाइश करते हैं गनगोला दाता गंज जिला बदायूं से। और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी डांडा से ये फरमाइश हम तक पहुंची है। बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके सभी साथियों की, संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से हैं जयराम सिंकर, दिशांत कुमार और अर्पिता, सबा अंसारी, शकील अंसारी।

हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदनी और अंजलि फरमाइश करती हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से। गीत सुनना चाहे कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और इनके सभी साथियों ने। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी। और लक्सर रोड ग्राम सुआईडी कस्बापुर गाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब कहकशा और इनका पूरा परिवार। दाऊद सराय सहारनपुर से श्रोता हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। शेरवानी स्कूल गंजडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने फरमाइश की है। वीरेंद्र भयाण, सुरेंद्र भयाण, शमशेर भयाण और मनोज भयाण फरमाइश करते हैं कि सुनने के लिए गांव जेवरा हिसार से। और हमारी श्रोता लगातार दोबारा दोबारा भी फरमाइश कर रहे हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दो दिलों की दास्तां से। गीतकार अंजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

0: कार्यक्रम के इसी गीत के लिए फरमाइश की थी यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, मामा सादिक अंसारी, रजिया बेगम। बहादुरगंज गाजीपुर से श्रोता हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और इनके सभी साथी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। ये फरमाइश हम तक पहुंची है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके सभी साथी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीता कुमार वर्मा। और पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल ने फरमाइश भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। तो श्रोताओं, ये था आप सभी की पसंद पर गीत और अब आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की रेणु कोटनाला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2000

0: 24 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business.